शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुने योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही

जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपनी स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं,
कभी ये होता है

कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से हर समय और अपनी सुविधा अनुसार जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से वसंत ऋतु, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सोच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें, ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से
हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका, जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना, या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है, किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की, तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी

सुप्रभात, आप सुन रहे हैं रेडियो कैनेस्टली 89.6 एफएम पर भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई प्रेरणा लाती है। मैं हूं आरजी आकांक्षा, आपके ऊर्जावान सुबह की साथी। और आज है दिन सोमवार, हफ्ते की पहली किरण, नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई ऊर्जा का दिन। और हर नई शुरुआत में छिपा होता है एक नया मौका, तो उठिए, मुस्कुराइए और इस सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। हर दिन एक नया चांस है खुद को बेहतर बनाने का।

हार है मन के जीते जीत, यानी मन की शक्ति। मानव को परमात्मा ने जो अनेक विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक है मन की शक्ति। मनुष्य का मन वायु और प्रकाश की गति से भी अधिक गतिमान रहता है। उसमें भांति भांति के विचार आते हैं, उनमें अच्छे विचार बुरे विचार सभी निहित है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन मन के इन विचारों से ही संचालित रहता है। मानव का मन बहुत अशांत और चंचल प्रकृति का होता है। इस अशांति के मूल में मुख्य

हमारे ग्रंथों में उल्लिखित है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही उन बंधनों से मुक्ति दिलाता है। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देता है तो पल भर में हमें पतन की गहराइयों में भी धकेल देता है। ऐसे में अशांत एवं चंचल मन को स्थिर और नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कबीर जी के दोहे के अनुसार, मन ही स्वरूप देव निरंजन, तू है लाख भरमाए, हे हंसा तू अमर लोक का

जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि मन की साधना से बड़ी कोई साधना नहीं, अंतर्मन से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। मनुष्य के मन में यदि दुर्बलता व्याप्त है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। कमजोर मन वाला व्यक्ति आसान काम करने में घबराता है। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शक्ति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। तो आज हम बात कर रहे हैं मन की, इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। बहुत पुरानी बात है, एक युवक एक ऋषि के पास गया और बोला, महाराज मैं जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए निम्न स्तर से शुरुआत करना मेरे लिए नागवारा है। अगर आपके पास कोई मार्ग हो तो कृपया मुझे सुझाएं। ये सुनकर ऋषि बोले, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मेरे आश्रम के बगीचे से गुलाब का सबसे सुंदर फूल लाकर मुझे दो। युवक बोला, अभी लेकर आता हूँ बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऋषि बोले, बड़ी बात तो नहीं है, पर एक शर्त है, जिस गुलाब को तुम पीछे छोड़ जाओगे उसे पलट कर नहीं तोड़ोगे। युवक बात मानकर बगीचे में चला गया। बगीचे में एक से बढ़कर एक सुंदर गुलाब लगे हुए थे। जब भी वह गुलाब के एक फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता, कुछ ही दूरी पर उसे उससे भी अधिक सुंदर फूल नजर आ जाता, जिसके कारण युवक आगे बढ़ जाता। ऐसा करते करते वह बगीचे के किनारे तक पहुंच गया। यहाँ उसे जो फूल मिले, जो बाकी फूल थे उनसे मुरझाए हुए थे। ये देखकर युवक निराश हो गया और बिना किसी फूल के आखिरकार वो खाली हाथ ही लौट आया। उसे खाली देख ऋषि बोले, क्या हुआ, गुलाब का फूल नहीं मिला। युवक बोला, बाबा मैं बगीचे के अंदर गया, वहाँ बहुत सारे सुंदर और ताजे फूल खिले हुए थे। मैं हर एक फूल को छोड़ता गया और अंत में केवल एक मुरझाया फूल ही बचा। आपने मुझे पलट कर फूल तोड़ने के लिए मना किया था, इसलिए मैं गुलाब के ताजे फूल नहीं ले पाया। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन भी इसी तरह से है, इसमें शुरुआत से ही हमें जो अवसर मिलते हैं यदि हम उसका त्याग करते जाए तो कई बार सफलता शुरू के कर्मों और अवसरों पर ही निहित होती है। सर्वोच्च पाने की लालसा में आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में हम खाली हाथ रह जाते हैं। तो यहाँ साफ होता है कि हमारा मन ही हमारे लिए शत्रु भी है और हमारा मित्र भी। इसको हम जैसा मार्ग दिखाएंगे ये हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा।

0: चलिए आपको ले चलते हैं मन के आध्यात्मिक स्वरूप और सकारात्मक परिणाम की तरफ। भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसका नाम विश्वरूप दर्शन योग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन कराते हैं, जिसमें ब्रह्मांड, सभी प्राणी और समय भी समाहित है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाते हैं, जिससे वो अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराते हैं, जिसमें सब कुछ समाहित है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर भय और आश्चर्यचकित हो जाता है। इस विश्व रूप यानी ब्रह्मांड रूप अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप का दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वो श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन कर पाए। ये रूप संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी प्राणी और समय को समाहित करता है, जो सृजन और विनाश दोनों को साथ साथ दिखाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में स्वयं को काल के रूप में प्रकट करते हैं, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। यहाँ काल का अर्थ है श्री कृष्ण स्वयं समय और परिवर्तन के स्वरूप है। वे कहते हैं कि वे तीनों लोकों के संहारक और उनके विराट रूप में वे संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। समय परिवर्तन और विनाश से है काल का अर्थ। श्री कृष्ण ने खुद को महाकाल के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है बड़ा समय या विनाश का स्रोत। इस अध्याय में श्री कृष्ण का काल के रूप में प्राकट्य का कारण हुआ है। कारण ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वे काल के रूप में आते हैं, जो कि विनाश का स्रोत है और जो युद्ध का कारण है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि वे केवल एक साधन मात्र हैं और जो युद्ध है उसकी व्यवस्था पहले से ही तय है। अर्जुन को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस तरह अर्जुन का समर्पण होता है और कुछ इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा और शक्ति को देखकर अपने कर्मों और कर्तव्यों को समझने और उन्हें सही ढंग से करने की प्रेरणा पाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा और अध्याय का सार। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका यह विराट रूप केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, शक्ति और शक्ति की प्रशंसा करता है। ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान का रूप सर्वत्र विद्यमान है और हमें उनके ज्ञान, शक्ति और भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए।
1: अथ एकादशो अध्याय।
2: जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता के इस 11वें अध्याय में अर्जुन श्री भगवान के ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त विश्व रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य विश्व रूप का दर्शन कराया है और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया तथा संजय को पहले ही महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया था। इसलिए अर्जुन और संजय भगवान के इस परम दुर्लभ तेजोमय विश्व रूप का दर्शन कर सके। प्रिय भक्तजन, इस अध्याय में अर्जुन एवं संजय श्री भगवान के विश्व रूप का विस्तार से वर्णन करते हैं और इसी अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस प्रभाव को नहीं जानते थे। वे भगवान को अपना सखा मानकर साधारण ढंग से हे यादव, हे सखे कहा करते थे। अर्जुन विहार करते समय और भोजन करते समय और विश्राम करते समय श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा समझकर असत्कार पूर्वक उपहास कर दिया करते थे, परंतु आज विश्व रूप देखने पर उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। क्योंकि वे श्री कृष्ण भगवान की ऐसी महिमा नहीं देखे थे। अर्जुन युद्ध और भाषण में कभी किसी से पीछे नहीं हटते थे। आज जब श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, तब अर्जुन तत्काल प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे पिता पुत्र का अपराध क्षमा करता है, मित्र मित्र का अपराध क्षमा करता है और पति पत्नी का अपराध क्षमा करता है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना समझकर मेरे सभी अपराध क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि मैं आपकी ऐसी महिमा नहीं जानता था। मुझे आप अपना शंख चक्र गदा पद्म युक्त अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दीजिए। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और पुनः श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण रूप धारण करके व्याकुल और भयभीत अर्जुन को धीरज दिया और श्री कृष्ण भगवान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योगो नाम है। जय श्री कृष्ण।

ग्यारहवें अध्याय यानी विश्वरूप दर्शन में भक्ति का महत्व बताते हुए ये दर्शाया गया है कि भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से व्यक्ति को ज्ञान और मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख श्लोक हैं। अर्जुन उवाच, मन्यसे यदि तम शाक्यम मया दुष्टमिति प्रभु यतो मे त्वं दर्शम आत्मनम वयम्। यानी अर्जुन कहते हैं कि यदि प्रभु आप यह मानते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देख सकता हूँ तो कृपया मुझे अपना वह रूप दिखाइए। श्री कृष्ण उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि सत सो अथ सहस्त्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना स नाना वर्णाकृति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण वाले दिव्य रूप देख। तो इस तरह अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने कहा था कि सारी सुंदरता महिमा और शक्ति उनके अपार तेज की एक चिंगारी मात्र है। ये सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गए श्री कृष्ण के उस विराट रूप के दर्शन को जो उनसे पहले और उनके बाद दूसरे किसी को भी प्राप्त ना हुए, जिसका ना कोई आदि था ना ही अंत। इस अध्याय में वे भगवान से अपने विश्व रूप यानी अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं, जिसमें असीमित भुजाएं, मुख और उदर हैं। इसका ना तो कोई आदि है ना ही अंत, और ये सभी दिशाओं में अथाह रूप से फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हुए हजारों सूर्यों के समान है। ये दृश्य अर्जुन को चकाचौंध कर देता है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तीनों लोकों को भगवान के नियमों के भय से कांपते हुए और स्वर्ग के देवताओं को उनकी शरण में जाते हुए देखते हैं। वे कई ऋषियों को प्रार्थना करते और भगवान की स्तुति करते हुए भजन गाते हुए पाते हैं। तब अर्जुन कौरवों को अपने सहयोगियों के साथ इस विराट रूप के मुख में भागते हुए देखते हैं, जो भस्म होने के लिए अग्नि की ओर तीव्र गति से भागते हुए पतंगों के समान दिखते हैं। इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन ने स्वीकार किया कि यदि उसका हृदय और मन भय से अस्थिर है, यद्यपि इस रूप से भयभीत होकर अर्जुन भगवान के इस अद्भुत रूप की पहचान जानना चाहता था, जिसका उसके गुरु और मित्र श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान ने घोषणा की कि काल के रूप में वे तीनों लोकों में संहारक हैं। उन्होंने कौरव योद्धाओं का विनाश कर दिया है और पांडवों को जीत निश्चित है, इसलिए अर्जुन को अब और भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे बस उठकर युद्ध करना चाहिए। अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगता है, जो अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और उनके भव्य रूप को अनेक बार नमस्कार करता है। वह श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से अपराध या अनादर के लिए क्षमा मांगता है, जो उसने अज्ञानता में उन्हें मात्र मनुष्य समझकर किया हो। इसके बाद अर्जुन भगवान से उनकी कृपा की याचना करता है और उनसे एक मन भावन रूप धारण करने का अनुरोध करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल धारण करते हैं। इसके तुरंत बाद वे अपने सौम्य और प्रेममय दो भुजाओं वाले आकर्षक श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। फिर वे अर्जुन से कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी भगवान को इस आदिमयी ब्रह्मांडीय रूप में

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: एक सवाल पूछ लूं डायरेक्टली
1: जी,
0: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूं ना? एज इन कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम उससे शादी कर रही हो?
2: एहसास की जो जुबान बन गए।
1: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक

0: खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोडा में. आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन. सो आइए आपसे बातचीत स्टार्ट करते हैं. और बातचीत का जो आज वक्त है वो बहुत ही अहम होने वाला है. क्यों? क्योंकि भाई साहब आज जो है वो हम आपको बताने वाले हैं कि आज थर्सडे मॉर्निंग का स्पेशल क्या है थॉट. जी हाँ, तो थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या है ये हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं. और साथ ही साथ चूँकि आज बहुत सारी बातें लाए हैं, साथ ही साथ आज आपकी लाए हैं सिटी अपडेट.

0: यानी आपको जो बहुत पसंद है, जिससे कि पता चलता है कि भाई आपके शहर में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए बताते हैं भाई आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कहता है। आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि दुख के दिनों में, यानी दुख के दिन हम जिनके साथ काटते हैं, सुख के दिन आते आते हम उनसे बिछड़ जाते हैं। जी हाँ, दुख के दिन जिनके साथ हम काटते हैं और सपना देते हैं सुख के दिनों में उनका साथ देने का, उनके साथ होने का, लेकिन जब वक्त आता है तो हम बिछड़ चुके होते हैं। और ऐसा महसूस किया गया है किसी एक शख्स के ज़रिए नहीं, कई सारे शख्स के ज़रिए। उनकी लाइफ में भी जो दुख के वक्त साथ थे, जब सुख का वक्त आया तो वो जा चुके थे। वो कैसे जा चुके थे, कैसे भी जा चुके थे, नहीं थे। ये शायद एक थॉट नहीं, एक बहुत बड़ी फीलिंग है। और ये फीलिंग जब हम फील करते हैं तो इस बात को समझते हैं कि हाँ, ऐसा एक बार नहीं कईयों बार हुआ है। जब वक्त आया कि अब चीज़ें बेहतर हो गई है, अब बेहतरी से चीज़ें होंगी, आगे बढ़ेंगी, करेंगे, तब तक के लिए साथ फिर नहीं होता है। क्या आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि आज का थॉट ऑफ द डे तो यही याद दिला रहा है। शायद आपने भी किसी से वादा किया होगा, लेकिन जब तक वक्त आया होगा आपके हाथ से भी चीज़ें निकल गई होंगी और वो शख्स नहीं रहा होगा। किसी भी वजह से उस आपकी लाइफ में नहीं रहा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो शायद आप इस बात को जरूर रिलेट करने वाले हैं, राइट? चलिए, फिलहाल थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल जो थॉट था ये, इसने फीलिंग्स में आखिर जो बताया है वो कितना सच लगा है आपको और कितना आपने इस बात को अपनी लाइफ में खुद फील किया है, इस बात को ज़रा बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ही रिलेट करने वाला है और इसको जिसने जिसने फील किया है बहुत अच्छे से जानता है। मतलब एक तो होता है कि किसी चीज़ को हम समझते हैं, लेकिन एक होता है कि नहीं, हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर चुके हैं। सो अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं अपने मॉर्निंग जॉक आज इतना को। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ और देखते हैं कि भाई नेक्स्ट सॉन्ग क्या आ रहा है जो आपकी मॉर्निंग को और भी ज़्यादा हसीन बनाने वाला है ना? चलिए तो भाई इस गाने को एंजॉय करेंगे और वापस से आएंगे। आने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ होने वाला है आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हम अपने संग ले करके आए हैं और वो सब बातें आप तक पहुंचानी, और साथ ही साथ आपका सिटी अपडेट, यस, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी आपको मिलने वाला है। सो ये सब कुछ होने वाला है आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आपको बने रहना अपने 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान। स्टे ट्यून्ड।

0: तो पहला पहला प्यार, और भाई पहला पहला प्यार जब भी याद आता है आप तो बिल्कुल पीछे ही चले जाते हैं और वापस से उसी दुनिया में खो जाते हैं। खैर ये खो जाना अच्छा होता है। जी हाँ, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा FM 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। 9:31 हो चुके हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं लाइव आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपने ट्यून किया हुआ है रेडियो गार्डन से दुनिया के अलग अलग कोनों से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ सीधे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हुए हमारे 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से जुड़े श्रोताओं का भी हम स्वागत करते हैं। और अगर आप सुनते हैं अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम को उसकी एप्लीकेशन से, सो फिर आपको चैट में आने का ऑप्शन मिलता है और जो कुछ आप लिखते हैं वो हम तक डायरेक्ट आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आज चैट में कौन कौन मौजूद हैं और क्या कुछ लिख भेजा है आपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास। सबसे पहले मैसेज का वहाँ से शुरुआत करते हैं। सो कमल नयन जी हैं और लिखा आरजे अदनान से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में कमल नयन जी। एंड शैलेंद्र जी खजुराहो मध्य प्रदेश से हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। मनीष शर्मा मौजूद हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू मनी। आशुमिष जी हैं लखनऊ से, आपने लिखा है सुबह सुबह जिंदगी की शुरुआत होती है, किसी अपने से बात हो तो खास होती है, हंस के प्यार से अपनों को गुड मॉर्निंग सर जी। क्या बात है, आपको भी बड़ा ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग टू यू। एंड अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग टू यू, और आपका दिन भी बहुत प्यारा हो ऐसी हम कामना करते हैं। पूर्णिमा भी मौजूद हैं गोंडा से, ही लिखा है गुड मॉर्निंग अर्जित नाथ सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू पूर्णिमा, मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे उम्मीद है आप और पूरी फैमिली आपकी ज़रूर अच्छी होगी। प्रीति जी हैं बहराइच से, लिखा है सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। साथ ही साथ आप लोगों ने रिएक्शंस भी दिए हैं और धर्मेंद्र मोहन जी भी आ गए हैं, आवास विकास गोंडा से ही सुनते हैं। चैट पर आपने लिखा है गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग मेरे शहर की धड़कन, अदनान सर गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, पुरानी यादों से चाहे जितनी उम्र हो जाए आदमी करो तरो ताज़ा हो जाता है। क्या बात कह दी आपने, बिल्कुल सही, बेशक बहुत उम्दा बात कही आपने। सो तरो ताज़ा होने के लिए कई बार हम अपनी यादों में चले जाते हैं, कहने को वो पुरानी यादें होती हैं लेकिन उन यादों में इतनी ताजगी होती है कि जब भी आप उनको याद करते हैं आप भी फ्रेश फ्रेश से महसूस करते हैं खुद को। इसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं थॉट पर लेकर के, यानी आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर चलते हैं। प्रीति जी ने कहा ऑसम थॉट, थैंक यू सो मच। अनुष्का जी लिखती हैं वेरी नाइस थॉट ऑफ दैट इज, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया। पूर्णिमा ने लिखा है बहुत ही प्यारा सा थॉट, थैंक यू। एंड आशु जी ने लखनऊ से लिखा है बहुत ही प्यारा सुविचार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा। पूर्णिमा ने लिखा है जिंदगी गुजर जाती है, यादें साथ रह जाती है, कुछ बिखरा हुआ समेटने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है। वाह, कितनी सच्ची बात लिखी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं रोज़ ताज़े हो जाते हैं, क्या बात है। सो अगर ऐसी यादें हैं तो आप ज़रूर याद करते रहिए जिससे आप अपने अंदर की ताजगी को महसूस कर पाते हैं। एंड आशु जी लिखती हैं जीवन अकेला ही है, कुछ लोग समय के लिए आते हैं आपको हंसाते हैं और अंत में आप बेहद ख़ास महसूस करा कर चले जाते हैं। किसी से रोज़ बातें करना या उस इंसान की तलब आपको कहीं नहीं छोड़ती है। अटैचमेंट्स से बचिए या आपके मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी की तैसी कर देगा। आय हाय हाय हाय। सो ये एडवाइस जनित में जारी किया है आशु मिश्र जी ने फ्रॉम लखनऊ। एंड इसके बाद शैलेंद्र जी लिखते हैं रिएक्शन खजुराहो मध्य प्रदेश से, आप लिखते हैं कि नाइस थॉट सर, थैंक यू सो मच। आगे आप लिखते हैं कि हम सभी परिस्थिति के अधीन होते हैं, ज़रूरी नहीं जो हम चाहे वही हो, पर साथ निभा सके तो बड़ा अच्छा है। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात कही आपने। जैसा कि आज का थॉट कह रहा था कि भाई जिनके साथ हम बुरे वक्त को गुजारते हैं और सपना देखते हैं अच्छा वक्त साथ में गुजारेंगे, अच्छा वक्त आते आते वो हमारी लाइफ से जा चुके होते हैं। ऐसा हर बार नहीं लेकिन कई बार ज़रूर हो जाता है। और इस पर आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में अपनी बात को कहा कि अगर हो सके तो भाई साथ निभाए, लेकिन अब जब जो चीज़ होना है जाहिर सी बात है उसको फिर आप कहाँ तक रोक पाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत दूर दूर से आप लोग जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, न जाने कहाँ कहाँ से। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना बड़ा परिवार करने का और साथ ही साथ 89.6 एफएम के मॉर्निंग शो में आकर के एक साथ जुड़ने का। इसका एक अपना अलग ही फ्लेवर है, इसका अपना एक अलग ही मज़ा है
और वो मजा वही जानता है जो आता है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में और एंजॉय करता है ये सारी बातें, है ना, बहुत बढ़िया है। चलिए फिलहाल लेकर चलते हैं आपको अपने अगले सॉन्ग की तरफ, और इस सॉन्ग को सुनने के बाद आकर के आपको हम बताने वाले हैं सिटी अपडेट। जी हाँ, सो सिटी अपडेट में भी आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है अपने शहर गोंडा में। जानने के लिए सुनते रहिए, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपना काम करते रहिए और लगे रहिए 89.6 FM पर दिल से।

0: the legends, and we out.
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
3: हाँ जी, वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक अर्जित नान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए भाई, हमने वादा किया था आपको सिटी अपडेट की तरफ ले चलने का, और बताते हैं कि आज गोंडा में आपके लिए सिटी अपडेट्स में क्या है।
0: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite, Ajay Khan.

सो फिलहाल पहली जो अपडेट आ रही है वो बिजली की प्रॉब्लम से रिलेटेड आ रही है। सो ऐसा ये है कि भाई गर्मी में लगातार जो है बिजली की प्रॉब्लम्स बनी हुई है। धानेपुर बिजली उपकेंद्र पर कल भी इसको लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया और कई गांव में अभी भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो सकी है। सो इसको लेकर के लगातार लोगों में जो है वो शिकायतें देखी जा रही है, जिसको लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वैसे बिजली की समस्या होने पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कटरा में बड़ी प्रॉब्लम है। सो कटरा के जो लोग सुन रहे हैं 89.6 FM, वो अवर अभियंता राकेश पाल जी ने बताया कि कस्बे में मौजूद जो उपकेंद्र है बिजली से जुड़ी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए नया CUG नंबर दिया गया है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। कंज्यूमर्स लाइन में फॉल्ट होने पर या कोई भी जानकारी इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। नंबर क्या है? जी हाँ, 9151551445, 9151551445, यानी 9151554145, 9151554145, 9151555445, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और ये जैसा कि बताया कि कटरा बाज़ार के जो उपकेंद्र है वहाँ का ये नया CUG नंबर है। बिजली में यानी लाइन में कोई फॉल्ट है या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो आ रही है वहाँ हम आपसे से रूबरू कराते हैं। सो अगली जो अपडेट है वो है कि भाई 2312 कैंडिडेट्स ने TGT का एग्ज़ाम दिया है। जी हाँ, सो फिलहाल आपको बता दें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित की गई प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT भर्ती परीक्षा जो है कल ज़िले में 5 केंद्रों पर संपन्न हुई है। और दोनों मीटिंग्स में 2312 जो कैंडिडेट्स थे वो इसमें शामिल हुए। एग्ज़ाम देने के लिए लखीमपुर खीरी सिद्धार्थ नगर समेत गोंडा के कई आसपास के ज़िलों से लोग पहुँचे और जो सेंटर्स थे यहाँ सुबह से ही कैंडिडेट्स की भीड़ देखने को मिली थी। इसके अलावा आपको हम बता दें 23 छात्र छात्राओं को राज्यपाल पुरस्कार दिया गया है। तहसील सभागार में कल ही फातिमा इंटर कॉलेज के स्काउट गाइड और 23 स्टूडेंट्स को राज्यपाल पुरस्कार का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगली अपडेट है टीकाकरण को लेकर के। मुजहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर HPV वैक्सीन आज सुबह 10 बजे से लगाई जा रही है, यानी अब से 15 मिनट बाद वैक्सीन का जो कैंप है वो शुरू हो जाएगा मुजहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। इसके अलावा आज शाम 5 बजे गांधी पार्क में ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अब अपनी अगली अपडेट की तरफ से। सो व्यापारियों की जो समस्या है उस पर भी चर्चा की गई है। राम जानकी धर्मशाला में राज्य कर विभाग की व्यापारी संवाद कार्यक्रम हुआ है। सो राज्य कर विभाग गोंडा खंड की तरफ से बुधवार को यानी कल के दिन रानी बाज़ार में मौजूद राम जानकी धर्मशाला में व्यापारी संवाद कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम के जो अध्यक्षता है संयुक्त आयुक्त संभाग राजकर विभाग गोंडा ने की है। इस दौरान व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच में GST संबंधों की जो प्रॉब्लम्स हैं या व्यापारिक चुनौतियां हैं उसको लेकर के इस पर चर्चा की गई है, ताकि इन प्रॉब्लम्स को वक्त रहते दूर कर लिया जाए। सो फिलहाल ये अगली अपडेट थी। इसके बाद हम बता दें कि स्वरोजगार की तरफ एक प्रशिक्षण किया जा रहा है, यानी सुभागपुर प्रशिक्षण केंद्र पर 40 महिलाओं को सिखाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कई सारे क्षेत्रों में हुनरमंद बनकर के महिलाएं स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाएं, इसको लेकर के महिलाओं को रोजगार लेकर के काफ़ी तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है। और इसी को लेकर के प्रशिक्षण भी लगातार दिया जा रहा है, जिससे कि लोग इस तरफ बढ़ें और साथ ही साथ इसमें तेज़ी आए।
इसके अलावा 31,46,000 रुपये और मिले हैं सड़क सुरक्षा काम को गति देते हुए लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने चौराहों और टी जंक्शंस के सुधार के लिए 31,46,000 रुपये जारी किए हैं। पिछले साल 1.04 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, इसमें 68 लाख रुपये जारी किए गए थे। अब बाकी के जो काम हैं वो 31,46,000 रुपये जारी किया गया है, इसमें जो बचे रह गए काम हैं उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ अधिशासी अभियंता ने बताया कि कटरा दुबहा जो रास्ता है बहराइच फैज़ाबाद राज्य मार्ग और बाकी जगहों पर चौराहों और टी जंक्शंस के जो बचे हुए काम हैं उसमें सुधार किया जाएगा, इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके अलावा ज़िले के वेयरहाउस से आंगनवाड़ी केंद्रों तक सीधे कराई जाएगी आपूर्ति, यानी अब नई रेसिपी वाला मिलेगा पुष्टाहार। तो ज़िले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो पंजीकृत बच्चे हैं और गर्भवती और धात्री महिलाओं को अब नई रेसिपी के बेस पर पुष्टाहार अवेलेबल कराए जाने की बात कही जा रही है। वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पुष्टाहार की आपूर्ति को सीधे ज़िले के वेयरहाउस से आंगनवाड़ी केंद्रों तक कराया जाएगा और पारदर्शिता के लिए वितरण के वक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड यानी OTP का जो वेरिफिकेशन है वो ज़रूरी होगा। सो ये कुछ ज़रूरी जानकारियां थीं जो कि आप तक पहुंचा दी गई। आई होप कि भाई आपके काम की भी इसमें ज़रूर जानकारी रही होगी। और फिलहाल अब चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, वापस से आएंगे तो आने के बाद बहुत कुछ है जो आपसे हमें साझा करना है, बताना है आपके मॉर्निंग वाले ही शो में। सो आइए अब चलते हैं, अगला जो सॉन्ग है वो आपको ले आने वाला है सफ़र में। जी हाँ, सफ़र में अक्सर लोग सुनते हैं और बड़ा मज़ा आता है। सो बिना सफ़र के भी जब सफ़र करिए तो उसका मज़ा अलग से आता है। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए अपने गुड मॉर्निंग गुंडा में मॉर्निंग जॉकर जदनान के साथ। आपने ट्यून किया रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

भाई साहब अभी भी 10:01 हो गए हैं और मुझे लगता है ऐसे कई सारे लोग हैं जो सुबह उठ के अभी ऑफकोर्स आंखें भी नहीं खोले हैं। सो ऐसे लोगों के लिए एक सवाल है कि अगर सुबह की अलार्म क्लॉक इंसानों की तरह बात करती आपसे तो आज सुबह वो आपको क्या ताना मारती। चलिए, जो लोग देर से उठते हैं वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर सुबह की अलार्म क्लॉक इंसानों की तरह होती, यानी हमारी आपकी तरह मनुष्य होती, तो आज सुबह सुबह आपको क्या ताना पड़ने वाला था। ऐसा क्या किया था जिससे कि आपको आज के दिन ये अलार्म क्लॉक जो है वो ताना मारती, और मारती तो क्या मारती। फिलहाल आने के बाद बताने वाले हैं कि किस तरह से करियर माइंड सेट से आप अपनी आगे की ऑफकोर्स राह चुन सकते हैं, अपने आगे के लिए कुछ प्लान्स तैयार कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं ये हम बताने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को या किसी को भी सोचने में दिक्कत आती है कि भाई आगे अब क्या किया जाए। सो किस तरह से अपनी राहें बनाई जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसको लेकर के आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये इस बात से आपको बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है, यानी आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऐसा हम भी कह रहे हैं क्योंकि ऐसा होने वाला है। फिलहाल आइए अब आपको ले चलते हैं सॉन्ग की तरफ, वापस से आते बताते हैं। जब तक के लिए आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अगर अलार्म क्लॉक इंसानों की तरह आपसे बात करती, जो हम लोग अलार्म सेट करते हैं, तो आज सुबह सुबह आपको आखिर कौन सा ताना पड़ने वाला था। ऐसा क्या किया था जिसका ताना आज आपको का मिलने वाला था उस अलार्म क्लॉक से। फिलहाल बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, अपने मॉर्निंग जॉक आरजे नान के साथ, और सुनते रहिए सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: मैं हूँ फेसबुक और मैं सबको जानता हूँ।
2: मैं हूँ गूगल और मेरे पास सब कुछ है।
3: मैं हूँ व्हाट्सएप और मैं हूँ सबकी जान।
4: मैं हूँ इंटरनेट और मेरे बगैर तो तुम सब कुछ भी नहीं हो।
1: मैं हूँ चार्जर, आवाज नीचे।
5: भाई साहब आने के बाद बताया था कि हम आने के बाद बात करने वाले हैं करियर माइंड सेट की, क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो सोचा करते हैं कि आगे अपनी लाइफ में अब क्या करना है। सो जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं वहाँ पर अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं सो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, और ये फ़ायदा आपको सीधे सीधे तौर पर होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्वेल्थ के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आज हम ये बात बता रहे हैं। तो अगर आप खुद सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप पेरेंट हैं और आप सुन रहे हैं तो अपने बच्चों तक ये बात ज़रूर पहुंचाइएगा, और अगर गार्जियन है तो ऑफ कोर्स अपने फैमिली मेम्बर्स तक ये बातें ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि ट्वेल्थ के बाद उनके लिए उनके करियर की राह चुनना जो है वो हो जाए आसान।
6: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद सबसे पहला ये भाई स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि अपने फ्यूचर को लेकर करियर से जुड़े कई सारे सवाल, उसके फैसले लेने होते हैं। ऐसे में सही करियर माइंडसेट का होना ज़रूरी हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप एक बेहतर सोच के साथ और बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आप एक सही डिसीजन लें। इसलिए ज़रूरी होता है यहाँ पर सोच समझ कर, अपने स्किल्स को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट एरियाज़ को देखते हुए, उन स्टूडेंट्स का अपने ट्वेल्थ के बाद का क्या करियर राह होने वाली है उसको चुनना। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना होगा। स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट यानी जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसको हम रुचि भी बोलते हैं, और अपनी क्षमता को पहचानना होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर सोसाइटी के दबाव में आकर कर करियर चुन लेते हैं। भैया पड़ोस वाले बता देते हैं इसको भैया कर लो, इससे तुम्हारे माता पिता का नाम बड़ा रोशन हो जाएगा, बड़ा पैसा छापोगे इससे। इस तरह की बातें सुन करके उन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे उनका इंटरेस्ट भी नहीं है और उनकी कैपेबिलिटी कितनी है इन लाइंस को लेकर, इन सब्जेक्ट्स को लेकर के, ऐसे करियर को लेकर के उनको भी नहीं पता होता है। अब इसके बाद में जब अगर चुन लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए करियर का जब आप चयन कर रहे हों तो अपने फ्यूचर की संभावनाओं को ध्यान में रख कर आप करिए। स्टूडेंट्स को सीखने की जो मानसिकता है वो डिवेलप करनी चाहिए। उन्हें नई जो टेक्निकल और जो ज्ञान की बातें हैं उसको हमेशा अपनाना चाहिए, और हमेशा सीखते रहने की आदत ना सिर्फ उनका जो व्यक्तित्व है यानी उनकी जो शख्सियत है उसको डेवलप करती है, बल्कि उन्हें बदलती दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने में भी उनको सक्षम बनाती है। कॉन्फिडेंस के साथ में ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें करना है। स्टूडेंट्स को बहुत ही इत्मीनान और कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की सफलता प्राप्त करने का जो वक्त है वो अलग अलग होता है। अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिले तो उसे ज़िंदगी का अपना आखिर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपकी असफलता से सीख लेकर के आपको आगे जाना होता है, यही आपकी पहचान होती है। और प्रॉब्लम्स के टाइम में अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही तो वो वक्त होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना ही करना होता है। अगर आप कोशिश करते जा रहे हैं और एक बेहतर सोच के साथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके इरादे कुछ ज़्यादा ही दृढ़ संकल्प के बल पर आप ज़रूर उन चीज़ों को कर ले जाएंगे। इसके अलावा जो है जो आपके व्यवहारिक कौशल हैं उस पर ज़ोर देना होता है। स्टूडेंट्स को अपने करियर के लिए, अपने क्लियर गोल के लिए, उसको बनाने के लिए छोटे छोटे जो आपके लक्ष्य हैं उसको पूरा करते हुए बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना ज़्यादा प्रभावी बताया गया है। अक्सर सीधा होता है कि हम इसको सीधे हम क्रैक करेंगे, हम इधर सीधे जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें उसको जब ब्रेक करते हैं कि पहले हम इतना अचीव कर ले, फिर हम इतना अचीव कर ले, तो माइंड भी जो है वो साथ देता है। लेकिन हम एक साथ अगर हम बना देते हैं कोई बड़ी चीज़ को कि ये हमारा गोल है और एक साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हम एक साथ चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, उससे हम दूर भागने लग जाते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके साथ ही साथ वक्त यानी टाइम मैनेजमेंट, आपका जो भी अनुशासन है और आपकी अपनी मेहनत है, ये करियर को चुनने में, उसको बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर हम आज की बात करें डिजिटल युग में, तो स्टूडेंट्स को जो है वो कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम लिखते हैं अक्सर सीवी या रिज्यूमे में कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी आती है, बट एक्चुअल में होनी चाहिए। इसके अलावा हम लीडरशिप स्किल लिखते हैं, टीम वर्क लिखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो हमारे स्किल्स हैं ये हम लिखते हैं, साथ ही साथ इस पर ध्यान भी देने की ज़रूरत है। ये क्या है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही एरियाज़ में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट करने के लिए आपको बेहतर बनाते हैं। चाहे लीडरशिप की कोई ऐसी बात हो, आपको हो सकता है इंटरव्यू में अचानक पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लीडरशिप क्वालिटी, चलिए बताइए। तो ऐसे कोई वक्त में जब आपने पूरे टीम को लीड किया हो या पूरे ग्रुप को आपने अपना आइडिया बताया हो, या कम्युनिकेशन स्किल की किस तरह लोग गुस्सा हो गए थे और आपने उनको कैसे मनाया, अपने पॉइंट्स बताएं या पॉलिसीज़ बताइए, जिस तरह की भी चीज़ें हैं,
या इसी तरह टीम वर्क की बात होती है कि भाई आप अकेले वाली अपने वाली करते हैं, कहते ना मैं अपनी वाली करता हूँ, ये कोई बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफिस में या कार्यस्थल पर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सबको लेकर के ही चलना होता है। सो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा सीखने के लिए जो है वो हमेशा आप बहुत ज़्यादा उत्साही हैं अगर हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट्स का करियर माइंडसेट हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में अपने सीखने की जो एक चाह है वो होता है तो बहुत बेहतर होता है। सो आज का अगर हम बात करें, जहाँ इतने सारा कंपटीशन है, इस वक्त में सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना उतना ज़रूरी होता है। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अनुशासन और लगातार अपनी जो अभ्यास है उसको करें, सो ये जीवन का हिस्सा बना ले, तो किसी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं गोल को अचीव कर लेना बहुत मुश्किल तो नहीं हो पाता, यानी आप कर सकते हैं। सो इसी तरह से आपको अपने करियर माइंडसेट को बनाना होगा, यानी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। बहुत सीधी सी बात है कि आपको कहाँ किन कामों में मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको फिर वही करना है, तो आप उस तरह से देखिए कि जिसको आप लॉन्ग टर्म में ले जा सकें। और दूसरी बात ये कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अब आपकी जो कैपेबिलिटी वो अलग है और आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए किसी और की राय पर जाने से पहले आपको ये देखना और समझना होगा कि भाई आपके लिए चीज़ें बेहतर क्या है, आप किन चीज़ों को कर सकते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो चलिए, हमारी दुआएं, हमारी जो ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इस वक्त 12th कर चुके हैं और अब परेशान थे, लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद उनको कुछ

0: सुबह ही मैंने कहा था कि अगर मॉर्निंग क्लॉक यानी आपकी अलार्म क्लॉक बात करती इंसानों की तरह, तो आपसे आज मॉर्निंग में क्या कहती। जिस पर रिस्पॉन्सेज आ गए हैं तो किसने क्या कुछ लिखा है, आइए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो का आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, तो भाई कई सारे मैसेजेस बाद में भी आए हैं। अनिल वर्मा जी हैं सैदापुर से, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी। और साथ ही साथ हमारे शैलेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और अनिल जी ने कुछ बताया है। अनिल जी ने कहा कि अपने मनपसंद के काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, वो काम काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। बहुत सही बात कहा, थैंक यू सो मच। बेशक आपने सही कहा कि जब आपके मनपसंद का काम होता है तो उसको करने में मज़ा आता है। देखिए, काम काम वर्ड ऐसा है जैसे सुनने के बाद हम लोग की जान सूख जाती है। अरे यार, काम है, इसको निकालना पड़ेगा, इस धारणा को तोड़ना है। क्योंकि अगर देखा जाए, चाहे काम आप जिस वर्ड को कहते हो या जो भी कहो, आप काम से जो भी आप समझते हो, उसको करना ही करना होता है, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना है, रोज़ करना है, तभी सब कुछ चल पाता है, राइट। तो जब रोज करना है तो बोरिंग चीज़ कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं जिससे कोई वास्ता ही नहीं हो और हम बस करते चले जा रहे हैं। यानी जिंदगी में उन चीज़ों को हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जिसमें हमारा कोई मन ही नहीं लग रहा है, राइट। सुबह से लेके शाम तक के बीच में, सुबह से लेके शाम तक की हमारी जॉब होती है, हमारा काम होता है, बिजनेस होता है, जो भी हम करते हैं। रात का कुछ टाइम होता है जो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, खुद के साथ बिताते हैं, राइट। अब उसमें से ज़्यादा वक्त तो हमारा जो काम कर रहे हैं उसमें जाता है। तो काम अगर ऐसा रहा बोरिंग, तो फिर आधे ज़्यादा लाइफ तो हम ऐसे ही गुजारने वाले हैं। सो उससे काफ़ी बेहतर है कि हम वो चीज़ें करें जो हमारे लिए सच में हमको अच्छी लगती हो करना। सो ऐसी चीज़ों में अगर हम जाते हैं तो हम इन चीज़ों को एन्जॉय करेंगे। यानी अगर मान लीजिए किसी की शिफ्ट 10 से 5 है या 10 से 6 है, तो ज़िंदगी का 8 से 9 घंटा तो वो तो ऐसे चीज़ को करने में कर रहा है जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, और उसके बाद की बची हुई लाइफ कहीं वो जाकर जी पा रहा है फैमिली के साथ, अपने लिए, या कुछ भी कर रहा है ऐसा। तो ये जो सुबह से लेकर शाम तक का वक्त है जिसको करना ही करना है, रोज़ करना है, कम से कम 6 दिन करना है हफ्ते में, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के हम बोरिंग तो चूज़ कर ही नहीं सकते। ये आज की जनरेशन हालांकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही है, और ये जनरेशन अब डिनाई करती है उस ओवर टाइम को, उस काम को जो अच्छे बनने के लिए बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और ये आज की जो जेन जी है वो बहुत अच्छा है इस मामले में, बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उनको अपना मेंटल पीस चाहिए, यानी स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य, वो प्रिय है। सो इस जनरेशन की ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, और ये कहीं ना कहीं हमको भी समझना चाहिए, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने जस्ट 12th किया है, जैसा कि हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको लेकर के, अलार्म क्लॉक को लेकर के लिखा है, सबसे पहले धर्मेंद्र जी ने लिखा है, और लिखा है कि अलार्म क्लॉक अगर बातें करती लोगों को सुबह सुबह यही कहती तो यही सुनने को मिलता, उठ जाओ भैया, क्यों शरीर में जंग लगवा रहे हो। क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने कि अगर अलार्म क्लॉक बात करती होती तो ये कहते भैया शरीर में क्यों जंग लगवा रहे हो ना, राइट। लेटे लेटे जंग ही लगेगा, जाहिर सी बात है। शैलेंद्र जी बोलते हैं कि यदि ऐसा होता कि अलार्म क्लॉक बोलकर जगाती तो शायद सुबह 5 बजे से 7 के बीच प्यार से जगाती, उठ जाओ, उठ भी जाओ, चलो उठ जाओ। 7 के बाद थोड़ा सा माँ की तरह गुस्सा करके उठ रहा हो कि नहीं, और 9 के बाद तो मुझे लगता है उसमें पिताजी आ जाते हैं, और फिर आप सभी जानते हैं क्या होता है। सो उसके बाद बचने का कोई चांस ना होता जब पिताजी आ जाते हैं उस अलार्म क्लॉक वाले नेचर में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था कि भाई अगर अलार्म क्लॉक जिसको हम रोज़ सेट करते हैं इतने बजे उठ जाएंगे, अगर वो इंसानों की तरह बातें करती होती तो हमसे क्या बोलती, जिस पर धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास गोंडा एंड हमारे शैलेंद्र जी फ्रॉम मध्य प्रदेश खजुराहो से आप लोगों ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष शर्मा को भी ये बात अच्छी लगी, थैंक यू। योगेश शुक्ला जी पंजाब से हैं, आपका स्वागत करते हैं योगेश। एंड उस्मान खान जी आप भी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है उस्मान जी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो योगेश लिखते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियाँ आपके लिए सीढ़ी हैं। बेशक सही फरमाया आपने कि अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो ये एक सीढ़ी की तरह काम करने वाली है। और फिलहाल चलिए एक और सीढ़ी लगाते हैं जो हम अगले सॉन्ग की तरफ पहुंचने वाले हैं, और ये सॉन्ग तो आपको भाई साहब बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज तो आप बहुत क्लियरली नहीं समझ पाते पूरे पूरे वर्ड्स, लेकिन वो सुनने में आपको एक सेंस देते हैं,
एक फील देते हैं, एक मज़ा देते हैं, एक राहत देते हैं, कुछ ऐसी ही राहत लेकर आया ये सॉन्ग, सुनिए ज़रा।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: डिलीशियस
7: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
6: और क्या क्या है खास?
7: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
6: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
12: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: मेरी कैसे दे।
1: सो भैया कल हम गए थे शॉपिंग करने, यानी थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर ख्याल आई जब बात किया दुकानदार से, तो ऐसा लगा कि यार सारे ही दुकानदारों के अपने कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं चलिए बता रहे हैं।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई सारे दुकानदारों के कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं। अगर आप जाते हैं शॉपिंग करने, चौक बाजार जाइए, चाहे ठठेरी बाजार जाइए, चाहे रानी बाजार जाइए, गोंडा के किसी भी एरिया में जाइए, मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, बस बात छेड़ने का अंदाज होता है। यार हम सब कभी ना कभी देखिए शॉपिंग करने जाते ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो हर दुकानदार बोलता है, जैसे अरे भाई साहब मार्जिन नहीं है, जितने में लाया था उतने में ही आपको दे रहा हूँ, या फिर दर्जी का अगर हम बात कर चुके, सो बस आपके कपड़े कट चुके हैं कल शाम को ले जाना। हाँ हाँ हाँ, दर्जी तो अक्सर ही करते ना कि आपका कट चुका है कपड़ा, बस आप कल शाम में ले जाओ। सो इस तरह के कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, और कहीं कोई फीमेल अगर होती हैं शॉपिंग कर रही होती तो उनको बताते, अरे मैडम आपके ऊपर तो इतना ज़्यादा जच रहा है जैसा लग रहा है बस आपके लिए ही बनाया गया है, अरे आप तो हमारे घर के हैं, हम तो आपको महंगा करा देंगे, आपको तो जितने में लाए थे उतने में हम दे रहे हैं। तो ज़रा हमें ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ये दुकानदार जो है दुकानदारी कब करते हैं, जब अगर ये जितने में लाते हैं उतने में दे देते हैं। खैर ये कुछ कॉमन से वर्ड्स हैं जो आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ दुकानदार आपको बोलते हैं, चाहे गोंडा की किसी मार्केट में आप निकल जाइए या राजधानी दिल्ली की भी किसी मार्केट में आप जाइए, तो वहाँ लगभग मिलते जुलते कुछ ना कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं। अच्छा कुछ तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि भाई ऐसी ऐसी आवाज़ें लगा करके बुलाते हैं कि लोग जो है उसको काफ़ी फ़न में लेते हैं, यानी काफ़ी फ़नी अंदाज़ होता है उनका मार्केटिंग का, लोगों को बुलाने का, और उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सब्जियों बेचने वालों को देख लिए भाई, वो टमाटर को जब लाल बताते हैं तो बताते हैं गुस्से में है लाल टमाटर, गुस्से में है लाल टमाटर। भाई ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट में सुनाई देते हैं और बरबसी हमको हंसा देते हैं। वैसे ऐसे कोई ना कोई शब्द आपने भी सुने होंगे मार्केट में जब आप शॉपिंग कर रहे होंगे, राइट? सो अगर ऐसे कोई भी वर्ड सुने हैं तो आप हमको बता सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ धर्मेंद्र जी को गाना बहुत फीलिंगफुल लगा, थैंक यू सो मच। और पूर्णिमा ने लिखा है सर मम्मी मुस्कुरा रही हैं और पूछ रही हैं आपका हालचाल बता दें। ओके, सो सबसे पहले तो माता जी को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत अच्छा हूँ उनकी दुआओं से, और उनका हालचाल भी बता दें कि वह मुस्कुराहट के साथ साथ कैसा महसूस कर रही हैं। ज़रूर, और हाँ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, मुझे ये अच्छे से पता है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा उनका मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ अब आप भी ज़रा बताइए कमेंट करके कि भाई ऐसे कौन कौन से दुकानदार हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, वो कुछ ऐसा वर्ड जो आपको बड़ा अलग लगता है शॉपिंग के दौरान, जब आप जाते हो अपने खुद से शॉपिंग करते हो या वाइफ के साथ, बहन के साथ, या अकेले जा कर के करते हो, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो दुकानदार बोलते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं आपके एरियाज़ में, क्योंकि आप अलग अलग जगह से सुन रहे हैं, तो हो सकता हो आपके शहर में, आपके स्टेट में कुछ अलग ही तरह से बात किया जाता होगा दुकानदारों के ज़रिए, तो वो भी आप चैट बॉक्स पर आ करके बता सकते हैं। और अब हम लेके चल रहे हैं आपको एक ऐसे गाने की तरफ जिससे आपकी धड़कनें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके गाने की लिरिक्स में भी धड़कनों को बढ़ा दिया गया है। यस, सो चलिए भाई सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम। फिलहाल 10:47 हो गए, वापस से आते हैं और जानते हैं क्या कुछ ऐसा होता है आपके साथ जो दुकानदार आपको भी बरबसी हंसने पर मजबूर कर देते हैं।

0: देखिए भाई साहब, हमने कहा था कि आपकी धड़कनों को बढ़ाने वाला ये गाना है, और देखिए ना, फिलहाल आप लोगों ने बता भी दिया है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और बात याद आ रही है, और वो क्या है सुबह ही चलिए बताते हैं। देखिए, कई सारी जो ज़िंदगी की गलियां होती हैं, उसमें अलग अलग मोमेंट्स हमें हमेशा के लिए हम छोड़ के जाते हैं। इस तरह से कई बार हमारे अनोखे सफ़र भी होते हैं। ट्रेन, बस या ऑटो में सफ़र करते वक्त हमें बड़े ही दिलचस्प लोग कई बार मिल जाते हैं, और बिना पूछे ही अपनी पूरी ख़ानदान की हिस्ट्री भी इवन बता देते हैं। तो कोई ऐसा होता है जो कंधे पर सिर रख कर सो भी जाता है अगल बगल वाला। आपका सफ़र का कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा भी ज़रूर रहा होगा मेरे साथ, चूँकि आते जाते ऐसा होता रहता है, और मुझे लगता है आप भी जब निकलते होंगे तो यही होता रहता होगा। फ़िलहाल जो हमने सवाल पूछा था कि भाई दुकानदार हर जगह के कुछ ना कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपके यहाँ क्या करते हैं, आइए हमारे पास धर्मेंद्र जी ने और अनिल वर्मा जी ने बता दिया है इसका आंसर, कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है मार्केट में। लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई अनिल वर्मा जी ने कहा है कि ये कहते हैं ये रंग आप पर इतना ज्यादा जच रहा है भाभी जी कि आपसे दोबारा प्यार हो जाएगा। अरे तो साड़ी से या जो भी कपड़े हैं उनसे प्यार हो जाना तो लाजिम है, लेकिन जिस तरह दुकानदार करा देते हैं, ये मोहब्बत के ठेकेदार लगते हैं कि उसी कपड़े से दोबारा प्यार करा देते हैं और बोलते हैं कि मैडम ये ड्रेस आपके लिए ही बनी है, अगर आपने इसे नहीं लिया तो ये कपड़ा रात भर रोएगा। वाह क्या बात है, बहुत परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है अनिल जी आपका। और उन्होंने लिखा है कि बताते हैं कि अगर इससे कम दाम में आपको ये पूरे बाज़ार में कहीं मिल गया तो अगली बार आकर मुझसे मुफ्त ले जाना। ये बात तो बिल्कुल सटीक कही आपने, ये शब्द तो इस्तेमाल करते हैं, मतलब दुकानदार ये तो कहते हैं कि इससे कम में अगर मिल जाए तो मतलब मुफ्त में ले जाना, ये बात ये तो एकदम सच है, फैक्ट है, ये तो कहते ही कहते हैं। एंड हमारे धर्मेंद्र मोहन जी ने बोला है इसको लेकर के कि दुकानदार सिर्फ ये फीलिंग करता है कि ले जाइए बहुत बढ़िया, और फिर बाद में ये कहता है कि हम है ना, हम बैठे हैं ना, हम है ना। बेशक सही कहा आप लोगों ने। सो दुकानदारों का अलग ही एक अंदाज़ होता है, इनका एक तरीका होता है जो बड़ा ही चार्मिंग सा होता है और अक्सर लोगों को पसंद आता है। इवन मुझे भी लगता है कि यार क्या ज़बरदस्त मार्केट स्ट्रेटजी है, मतलब किस तरह से ये कन्विंस करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। कई बार आप कितने भी कॉन्फिडेंस में जाएं लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं बिल्कुल आराम से, कि अगर गारंटी की बात करते हैं तो जिस पे गारंटी देते हैं उसमें कहते हैं अरे आप इसको 50 साल पहनिए कोई दिक्कत नहीं है, और अगर गारंटी नहीं देना होता कहते हैं भैया आपकी जान की गारंटी है, आप घर तक ऐसे ही जाएंगे हैं, नहीं बताए ना तो फिर इस कपड़े की क्या गारंटी। और ये योगेश ने भी बहुत सही बात कही है कि पूरे स्टॉक में ये सिर्फ दो लास्ट ही बचे हैं, ये तो बहुत बड़ा डरावना सपना दिखाते हैं। अरे मैडम यही एक पीस है, इसके बाद ये आएगा नहीं मार्केट में, बड़ा ही खूबसूरत आया, अब समझ लीजिए बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया, आप पे तो जचेगा एकदम, जिस तरह की मतलब आप हैं ये बड़ा सूट करेगा। भाई साहब ये आपके लिए ही है और इसको तो हम अपने घर के रेट पर दे रहे हैं, समझ लीजिए घर पर दिया है, एक आपको दे रहे हैं, बाकी तो मार्केट में है ही नहीं, ले जाइए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बड़ा ही खूबसूरत है। सो इस तरह की बातें जो हैं वो करते रहते हैं, वो बातें चलती रहती है, और इसी तरह से हमारे दुकानदार भाई जो हैं वो अपनी दुकान कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड ये अच्छी बात है, हर जिस भी फील्ड में हो आपको उसकी कला तो आनी ही चाहिए, उसी तरह ये कला आती है हमारे दुकानदार भाइयों को। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो आप सब लोगों का जिस तरह से आप इस पूरे शो के दौरान बने रहे, इस शो को एंजॉय किया। आई होप कि जितनी भी आज बातचीत हुई थी वो ज़रूर आपके लिए वैल्यू ऐड करने वाली रही होंगी और काफ़ी आपने भी एंजॉय किया होगा। अब वापस से कल के मॉर्निंग शो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप बैक टू बैक गोंडा FM के शोज ज़रूर सुनते रहिए, और साथ ही साथ आज का गुड मॉर्निंग गोंडा शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और इस शो में मौजूद सभी श्रोताओं का हम बहुत दिल से, बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेलकम करते हैं। एंड एक बार वापस से कहते हैं कि भाई खुश रहिए आप सब, और जाने से पहले इस गाने को ज़रूर एंजॉय करिए।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद में हम सभी मिलकर एक फिर से नया एपिसोड ला रहे हैं, जिसके अंदर मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वो श्रीमती किरण पांडे जी की आवाज में, और उनका साथ देने आ रही हैं श्वेता जी, जिमी जी। और आज की हमारी नए एपिसोड की जो थीम है वो है श्रावस्ती। तो आइए हम सभी मिलकर के एक नए एपिसोड की ओर चलते हैं। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे आज सूरज किधर से निकला है, सब हमें लेने आ गए हैं, और देखो कितने खुश हैं सब।
5: हाँ समता मैम, हम सब श्रावस्ती घूमने चल रहे हैं।
6: मौसम कितना प्यारा है और बदली छाई हुई है, हवा भी कितनी ठंडी ठंडी चल रही है।
7: हाँ, पिकनिक के लिए बिल्कुल मस्त मौसम है। लो, हम दाल भरे पराठे लाए हैं तुम सब के लिए।
4: मम्मी ने कॉफी भेजी है गर्मा गर्म। भैया बैंगलोर गए थे तो वहाँ से फिल्टर कॉफी लाए हैं।
5: काले बादल हम लोगों के साथ चल रहे हैं। अरे लगता है आज तो पानी जोर से बरसेगा।
6: अरे नहीं श्वेता मैम, दादी ने बचपन में बताया था, काला बादल जी डरवावे और भूरा बादल पानी लावे।
7: ड्राइवर भैया एसी धीरे रखिएगा, श्वेता अभी भी खांस रही है। श्वेता शाल ओढ़ लो।
4: आप बरसात पर गाना सुना दीजिए, श्वेता ठीक हो जाएगी।

0: हम लोग रज्जो बुआ से भी मिलेंगे। अरे किरण दीदी, उनकी दोस्त कहाँ है?
1: रज्जो बुआ कौन है और उनकी कौन दोस्त?
2: रज्जो बुआ, कम्मो बुआ, मुन्नी बुआ और कुक्कू बुआ, ये चार बहुत अच्छी दोस्त हैं।
3: राधा कुंड में जो सफेद घर है ना, उससे थोड़ा आगे इन चारों का घर है।
0: अरे किस्मत तो देखो, चारों की शादी कटरा श्रावस्ती में ही हुई है।
2: जब इनकी शादी तय हुई तो सब लोग गुइयां गाना गाकर खूब चिढ़ाते थे।
1: कौन सा गाना, हमें भी सुनाइए ना।

0: इटिया थोक आ रहा है, कौन कौन शुक्ला के दही बड़े खाएगा?
1: हम भी खाएंगे।
2: बुआ लोगों के लिए भी ले चले क्या? अरे ये तो बहुत टेस्टी है,
3: लौटते समय हम भी पैक करवा लेंगे, बहुत ही यमी है ये।
4: केवल रज्जो बुआ मिलेंगी तुम सबको, कम्मो बुआ बेटे के पास रहती हैं और मुन्नी बुआ फैजाबाद में रहती हैं और कुक्कू बुआ टीचर है तो उनकी पोस्टिंग बहराइच में है।
0: जल्दी गाड़ी में बैठो, बहुत तेज पानी बरसने वाला है।
2: अरे बच गए सब, नहीं तो बहुत ज्यादा भीग जाते सभी लोग। हाँ हाँ भैया सुनो, धीरे धीरे गाड़ी चलाना,
4: बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा है।
3: किरण दीदी और बातें बताइए ना रज्जो बुआ की।
4: कुक्कू बुआ जब शादी हुई तब जॉब कर रही थी, अरे स्कूल टीचर थी तो बहुत बिजी थी।
0: हम भी उनको जानते हैं, सबको डांट लगाती थी, ये करो ये मत करो।
2: फिर तो उनके पति देव को भी डांट पड़ती होगी।

0: की शादी में कितना मजा आया होगा। मम्मी बताती है कि पहले जब किसी की शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला तैयारी करवाता था।
1: सही कह रही हो जिम्मी, मुन्नी बुआ के हस्बैंड थोड़े डार्क थे।
2: अरे DTH, टॉल डार्क एंड हैंडसम, सच में बहुत हैंडसम।
3: तो क्या वह कहती थी कि

0: बिल्कुल सही कहा श्वेता मैम, रज्जो बुआ के बारे में और भी बताइए ना।
1: रज्जो बुआ बिल्कुल टॉम बॉय हैं। मम्मी दादी चाची सब नाच रहे थे उनकी शादी की तैयारी में।
2: उन्होंने कभी भारी साड़ी गहने कुछ पहने ही नहीं थे, तो कुछ भी पहना दो सब में नखरे करती थी।
3: सब कैसे पहन लेते हैं, अरे आजकल की दुल्हन के लहंगे ही देखो कितने भारी होते हैं।

0: जिम्मी को कितना मजा आ रहा है। उन चारों की शादी में हमको बहुत मजा आया था।
1: हमें थोड़ा थोड़ा याद है, एक महीने के अंदर सबकी शादी हुई थी।
0: एक गाना और था जिसे हम लोग खूब गाते थे।

0: हे भगवान, कितनी तेज पानी बरस रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज हम पूरा श्रावस्ती घूम पाएंगे।
1: कोई बात नहीं, एक दिन फिर आएंगे श्रावस्ती घूमने हम लोग। आज तो चारू बुआ की कहानी सुनकर लग रहा था कि कोई पिक्चर देख रहे हैं।
2: नदिया के पार जैसी ना जिमी। लो, हम लोग पहुंच गए।
3: ये है रज्जो बुआ, फूफा जी, आजी और बाबा। ये बुआ की बेटी है डिम्पी।
2: अरे डिम्पी, तुम श्रावस्ती में रहती हो? हम लोग योगा कैंप में मिले थे।
0: समता मैम, आपने बताया था कि ये लोकगीत बहुत अच्छा गाती हैं।
1: बाबा बता रहे हैं कि भारी बारिश के कारण अंगुलीमार की गुफा, सहेत महेत, थाई टेंपल, ये सब बंद है। तो कम्मो बुआ के बारे में बताइए ना।
3: कम्मो बुआ के ससुराल वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जो लाल घर देख रही हो ना, वो उन्हीं का है।
2: पहले खाना खा लेते हैं, फिर बताइएगा। बहुत भूख लग रही है।
0: चलो चलो, पहले कम्मो से गाना सुनते हैं।

0: आज तो गाना गाइए, बरसते पानी में मैं तो ना जाऊंगी।
1: वाह भाई वाह।
2: आजकल के बच्चे ना बहुत बदमाश होते जा रहे हैं। अरे कम्मो बुआ की शादी में सबने गाना गाया, सैया बड़े कठोर हैं।

0: याद आया, उनकी बुआ सास बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने बोला था बारात वापस लेकर चलो।
1: अरे फिर क्या हुआ? उन लोगों ने तो बुआ को बहुत परेशान किया होगा।
2: कम्मो बुआ भी कम शैतान नहीं है। शादी के बाद जब उससे गाना सुनाने को कहा गया तो उन्होंने गाया।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12, यानी आपके अपने शो ज्ञानस्त्री लाइफ का। आज है भाई दिन बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार को हम इंजॉय करते हैं कुछ बॉलीवुड खबर। आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव, और आज हम सुनेंगे कुछ बॉलीवुड की चटपटी खबर। जी हाँ, चटपटी खबर, क्योंकि हमें मज़ा आता है चटपटी चीज़ों में। देखिए, अगर हम अपनी जीभ को, अपनी चटोरी जीभ को जो है फ़ायदा पहुँचाएंगे तो हमारे पेट में बड़ी समस्या होने वाली, लेकिन अपने चटपटे मन को अगर हम जो है चटपटी चीज़ें दे दें तो हमें ना तो हमारे पेट को नुकसान होगा, ना ही हमारे दिमाग को। भाई, और इसी चुगली को, इसी न्यूज़ को, इसी हॉट गॉसिप को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। अभी आप इंजॉय कर रहे थे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग जिसका नाम है आदत से मजबूर, जिसमें स्क्रीनिंग हुई है हमारे रणबीर सिंह की। हालांकि भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे रणबीर सिंह जो है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है आजकल। जी हाँ, देखिए, धुरंधर रिलीज़ होने के बाद इन पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है कही जा रही हैं, यहाँ तक कि इन पर बैन भी लग गया है। दोस्तों, बॉलीवुड में जो हुआ वो सुनकर आप भी बोलेंगे कि यार फिल्म बना दो इस पर, क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ें भी चल रही हैं बॉलीवुड में। तो हुआ ये कि भाई रणबीर सिंह, जी हाँ, हमारे वही रणबीर सिंह जो हर फ्रेम में आग लगा देते हैं, फरहान अख्तर की डॉन 3 में अचानक से वो बाहर चले गए। बस यहीं से शुरू होती है असली ड्रामा का सीक्वेंस। देखिए, फॉइस यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने में जो है ये ऐलान कर दिया गया कि रणवीर सिंह के साथ कोई भी काम नहीं करेगा, सीधा उन पे बैन लगा दिया गया। अब रणवीर जो है वो रणवीर बाबू चुप बैठने वाले में से तो है नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं वो चुप बैठ सकते। उन्होंने सीधे कोर्ट का रुख किया और लीगल नोटिस से धमकाया और कहा ये मेरा निजी कॉन्ट्रैक्ट मामला है, आप बीच में ना आए, आप बीच में आने वाले होते कौन है। और अरे भाइयों बहनों, देखिए बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। लीगल नोटिस मिलते ही फॉइस ने कहा और वही किया जो सब करते हैं, जी हाँ, पलटी मार ली और बैन को वापस ले लिया। बातचीत की अपील की और फॉइस ने सलाहकार अशोक पंडित ने खुद माना कि हमारे पास बैन का अधिकार है ही नहीं जो उन्होंने रणवीर सिंह पर लगा दिया था। भाई, इंडस्ट्री इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैरान है, और इतनी जल्दी पीछे हटने वाला फॉइस का इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, और आज रणवीर सिंह को बैन से बचाने वाला कानून है। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें इंजॉय करेंगे और आज की न्यूज़ को बहुत ही अच्छे समझेंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारी चटपटी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ देखिए भाई, हमारे रणवीर सिंह का जो काम है ना, कहते हैं कि जब कोई इंसान दिल लगा के काम करता है तो उसका नाम कोई नहीं पहचानता, उसके काम से ही उसकी पहचान होती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से साल के स्टार्टिंग में रिलीज़ हुई एक बहुत ही धुआंधार मूवी जिसे हम कहें धुरंधर, वो रिलीज़ हुई, और धुरंधर रिलीज़ के बाद रिलीज़ हुई धुरंधर द रिवेंज। अब भाई, धुरंधर द रिवेंज को लेकर के क्या न्यूज़ है इसको जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। जी हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए हम सुनते हैं धुरंधर से ये सुपर हिट सॉन्ग लुट ले गया।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान एसी लाइव। और आज हम एंजॉय कर रहे हैं फिल्मी न्यूज को, जी हाँ, जो कि हमारे बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और हमारे फेवरेट स्टार से भी जुड़ी हुई है। फिलहाल चैट बॉक्स में हमारी तन्वी शुक्ला जी आ चुकी है और लिख रही है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून तन्वी शुक्ला जी, आई होप हमारे सभी लिसनर शोज को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए एक शो को लेकर आने के लिए। और अपना फीडबैक जरूर दें कि आप को ये जो है शो कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ आपका इस न्यूज़ को लेकर के क्या विचार है वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। चलते हैं हम हमारे धुरंधर के न्यूज़ की तरफ। भाई देखिए, 4 जून को होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, ऐसा हमें पता चला है। अब ये धमाका कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, बल्कि भाई हम सबके दिल में ब्लास्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस हफ्ते कोई भी काम करना है तो वो मतलब आपको एक ही काम करना है, मुझे लगता है कि आपको थिएटर जाना चाहिए। जी हाँ, थिएटर जाना चाहिए। और आपको जो है सभी जो है नई नई न्यूज़ का जो है आपको बिल्कुल से इंतज़ार करना चाहिए। भाई हमारे धुरंधर जो है काफ़ी सारी न्यूज़ लेके आने वाली है। आज यानी कि 4 जून को ये रिलीज़ हो रही है प्रीमियर पे। जी हाँ, प्रीमियर पे धुरंधर दी रिवेंज, रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की एक ज़बरदस्त कॉम्बो वाली मूवी है। और डायरेक्शन में है ये आदित्य धर की। जी हाँ, वही जिन्होंने उरी में हमें हाउस द जोश वाला जोश दिया था। आप सुनिए कि भाई 3 घंटे 50 मिनट की ये सुपर एक्शन थ्रिलर मूवी का भाई रिव्यूज़ तो एकदम भर भर के आ रहे हैं। रणवीर सिंह का विस्फोटक अंदाज, तेज़ रफ्तार वाली साजिशें, राजनीति, बदला और मोहब्बत की एक कहानी जो कि वो लिखते हैं पाकिस्तान में। और ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ है जो कि धुरंधर से लेकर के आने वाली है। और एक नाम जो सबकी महफिल लूट ले गया वो है अक्षय खन्ना। जी हाँ, हमारे अक्षय खन्ना जिनकी एंट्री बिल्कुल धमाकेदार है, उनकी एंट्री का जो गाना है वो आज लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे काफ़ी सारे सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्होंने धुरंधर में काम किया है, और धुरंधर के बाद जो एंट्री, जो मेन मूवी थी उसके बाद जो रिवेंज रिलीज़ हुई उसने दिल पे कहते ना कि बिल्कुल मौके पे चौका मारने वाला काम कर दिया है। भाई ये थी न्यूज़ धुरंधर की। लेकिन आपको बता दूं कि भाई धुरंधर पे और हमारे रणवीर सिंह पे काफ़ी सारी बातें बन रही हैं। अगर हम बात करें तो हमारी बॉलीवुड क्वीन यानी कि कंगना रनौत के तरफ से रणवीर सिंह के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सामने आया है। जी हाँ, उनकी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी रिलीज़ होने वाली है, वो कौन सी वो आपको मैं बाद बताऊंगी, लेकिन बताती हूँ कि भाई कंगना रनौत ने रणवीर सिंह के लिए क्या किया। भाई रणवीर सिंह के लिए कंगना रनौत ने अपनी एक मूवी रिलीज़ करते वक्त जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें उनसे पूछा गया कि आप रणवीर सिंह के बैन को लेकर के आपके क्या विचार है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपकी औकात बढ़ती है, आपकी हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। तो आज रणवीर सिंह को भी यही सोचना चाहिए कि उनकी हैसियत और उनके औकात बढ़ रही है। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि खुद कंगना रनौत के हैं, जिन्होंने सबके सामने रणवीर सिंह के सपोर्ट में अपनी आवाज़ उठाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को सच की तरफ बढ़ना चाहिए और ऐसे ही सही को सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल चलते हैं कंगना रनौत की एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग की तरफ जो कि है घनी बावरी। और साथ ही साथ हम इंतज़ार करते हैं कि कंगना रनौत की तरफ से हमारे पास क्या खबर आ रही है। जी हाँ, खबर बहुत ही धमाकेदार है। क्या है उसको सुनने के लिए इस गाने को एंजॉय करना पड़ेगा।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुके हैं कंगना रनौत के एक बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग के बाद लेके आपका अपना प्रोग्राम ग्यारहसी लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड न्यूज की। जी हाँ, खबर ऐसी जो आपके दिल को एकदम हिला देगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है कंगना रनौत की तरफ से और हमारी प्यारी क्वीन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, दो खबर है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो दोनों हीरोइनों के से जुड़ी हुई है। पहली की कंगना रनौत 2 जून को आया, जो उनकी एक मूवी आई है भारत भाग्य विधाता की, ट्रेलर और 2 मिनट 24 सेकंड की एंटरटेनमेंट का तूफान बिल्कुल उन्होंने ले आया। जी हाँ, उनका भी ट्रेलर रिलीज़ हुआ है भारत भाग्य विधाता की, जिसमें उनके जो एक्टिंग है उसकी सब बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और उनकी तारीफ भी खूब सारी हो रही है। ट्रेलर शुरू होता है मुंबई 2008 के आतंकी हमले से और कंगना एक नर्स के किरदार में ऐसी दिखी कि लोग बोल रहे हैं कि भाई नेशनल अवार्ड तो अब की पक्का है कंगना का। फिल्म 12 जून को थिएटर में आएगी और डायरेक्टर हैं मनोज तापड़िया जी और साथ ही गिरजा ओके, स्मिता तांबे जैसे दिग्गज का भी हाथ इस मूवी को बनाने में है। तो भाई अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं तो भाई आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि इनकी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी सामने आई। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 2026 है ना, इसमें आतंकी हमले एक्शन मूवीज़ बिल्कुल एकदम भर भर के स्टॉक में आ रही हैं। आपका क्या मानना है इस पर जल्दी से आके चैट बॉक्स में बताइए। फिलहाल चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। जी हाँ, दूसरी खबर है हमारी बहुत ही प्यारी सी अदाकारा माधुरी दीक्षित की तरफ से। जी हाँ, माँ बहन एक मूवी का नाम है, जो कि माधुरी दीक्षित, तृप्ति डमरी और रवि किशन की ये एक मूवी है, जो कि 4 जून को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ हो रही है। यानी आज के दिन एक नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी रिलीज़ होने वाली है। फैमिली ड्रामा, इमोशनल स्टोरी और घर बैठे बैठे इसका मज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, माधुरी दीक्षित का OTT डेब्यू यानी कि स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में अब वो अपना कदम रख चुकी है। तो आज रात भाई नेटफ्लिक्स खोलिए और माधुरी जी को वेलकम कीजिए। फिलहाल चलते हैं हमारे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, जो कि है हमारी प्यारी माधुरी जी का बड़ी मुश्किल। जी हाँ, बड़ी मुश्किल एक ऐसा गाना है जिसमें माधुरी दीक्षित एक नए अंदाज में नज़र आ रही हैं। उनके जो मूव्स हैं, उनकी जो डांस स्टेप है, कहीं ना कहीं उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया है। चलिए सुनते हैं उनका ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानसी लाइव। आप इंजॉय कर रहे हैं लज्जा मूवी का एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग जो कि है बड़ी मुश्किल, क्योंकि भाई अभी हम बात कर रहे थे माधुरी जी के बारे में, और माधुरी जी के बारे में बात हो और हम उनका कोई गाना ना सुने ऐसा कैसे हो सकता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ जो कि है हमारी रवीना जी और सलमान खान की तरफ से। जी हाँ, दो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भाईजान की जो कि है सलमान खान। देखिए, सलमान खान एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है काला हिरन, जो सलमान खान के ब्लैक बैग विवाद से इंस्पायर्ड होकर बताई जा रही है। हालांकि ये खबर उड़ती है या फिर सच है ये तो खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही बताएंगे, लेकिन ये खबर जोर से फैल रही है जिसके लिए लीगल एक्शन तक हो चुका है। सलमान खान की लीगल टीम ने एक्शन ले लिया है इस खबर पर और फिल्म रोकने की डिमांड कर दी है। सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ी हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति को आज़ादी है कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की, तो कुछ बोल रहे हैं कि इज्जत की रक्षा का हक भी हमें है। और भाई अगर दूसरे मामले की बात करें हमारी रवीना जी की तरफ से, तो भाई रवीना जी यानी रवीना टंडन, उनकी माँ के घर से करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई है और कीमती सामान भी उसके साथ साथ चोरी हुआ है। इनके घर पे एक बहुत बड़ी चोरी हुई है जिसकी खबर हर जगह फैली हुई है और ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। जी हाँ, जो भी न्यूज़ आपको मिल रही है आज वो बिल्कुल रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। पुलिस का शक है कि घर में काम करने वाले जो नौकर हैं, जो ड्राइवर हैं, जो वर्कर्स हैं, उन पर पूरा शक उनका जा रहा है और उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। रवीना ने खुद इंस्टाग्राम पर ये जानकारी दी है कि जो दिखता है वो कितना ट्रांसपेरेंट है कितना नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। भाई अगर आप भी अपने घर में कोई नौकर रख रहे हैं तो याद रखें कि उनके बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जानें और रखने से पहले उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर अपने पास रख लें, क्योंकि आजकल के ज़माने में भाई ये छोटी मोटी खबरें जो है वो बहुत बड़ा रूप भी ले लेती हैं और आपके घर का सामान आपकी मेहनत की कमाई का है तो अपनी रक्षा अपने ही हाथ में होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जो कि है हमारी रवीना जी की तरफ से। कौन सा है? अरे भाई वही गोली मारने का। अरे मैं बिल्कुल वॉयलेंस के खिलाफ हूँ, लेकिन अखियों से गोली मारना कहीं भी वॉयलेंस का काम नहीं करता है। चलते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, अखियों से गोली मारे, जिसमें हमारे रवीना टंडन जी हैं और गोविंदा हैं।

हाँ जी भाई, राजकुमारी का बनूंगा मैं तो सपनों का राजा। भाई देखिए, आजकल गले लगने की, सपनों के राजा की और कपल्स की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारे जो विराट कोहली जी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लड़कियों की जो डिमांड्स हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा के रख दिया है, स्टैंडर्ड बिल्कुल बढ़ा दिया है। अब लड़कियाँ बेयर मिनिमम में सेटल होने वाली नहीं है। जी हाँ, खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, दो हफ्ते से एक ऐसी खबर चल रही है जो कि दिल को सुकून देती है। जी हाँ, देखिए न्यूज़ जो होती हैं वो बहुत कम ऐसी होती हैं जो आपके दिल को सुकून देती है, लेकिन आज मेरे पास खबर है जो आपके दिल को बहुत ही बड़ा सुकून देने वाली है। भाई पहली बात करते हैं हम विराट कोहली जी की। जी हाँ, विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद पूरे देश को एक्सपेक्ट कर रहा था कि पार्टी में जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, फोटोशूट होगा, लेकिन इस जोड़ी ने क्या कर दिया भाई, मैं आपको बताती हूँ। सीधे निकल कर गए वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज जी के आशीर्वाद लेने के लिए। इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि ये जोड़ी अलग ही मिट्टी की बनी है, और सच में ट्रॉफी, सबसे पहले ट्रॉफी का जो शुक्रिया अदा था वो भगवान को किया, और ये देखकर लोगों ने, लोग जो उनके फैंस हैं उनका दिल बिल्कुल कह सकते हैं ना गदगदा आ गया, जो हमारे अवधि में कहते हैं कि दिल बिल्कुल गदगदा आ गया, ऐसे ही फैंस का भी जो है दिल बहुत ही अच्छे से एकदम इन्होंने खुश कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रॉफी जीतने के बाद हमारे कोहली साहब ने अनुष्का को गए और ज़ोर से गले लगाया। हालांकि ट्रॉफी जीतने के बाद अनुष्का और विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखे हैं इंटरनेट पर, और इसका एक रीज़न आईपीएल ट्रॉफी तो है ही है, साथ ही साथ जीतने के बाद उनका जो बॉन्ड था अनुष्का शर्मा के साथ ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है, और साथ ही साथ अनुष्का शर्मा अपने लुक्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। हालांकि एयरपोर्ट पे और साथ ही साथ स्टेडियम में भी देखा गया कि अनुष्का शर्मा पूरे कह सकते हैं पूरे हिंदू धर्म में ऐसी लीन है, भक्ति में ऐसी लीन है कि उनको तुलसी माला के साथ देखा गया, और फैंस ये कह रहे हैं कि अब हमारी अनुष्का शर्मा जी अनुष्का शर्मा ही नहीं रही बल्कि एक इंस्पिरेशन भी हो गई हैं हम सभी के लिए कि कैसे हमें हमारे रिलीजन से, हमारे रूट्स से टच में रहना चाहिए। उसके बाद दूसरी खबर पर चलते हैं हमारी माधुरी दीक्षित जी की। जी हाँ, अभी हमने बात की माधुरी दीक्षित की एक मूवी के बारे में, अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ जो कि हमारे दिल को कहीं कहीं बहुत ज्यादा खुश कर देती है। देखिए जी, माधुरी दीक्षित जो कि 25 साल से ज़्यादा शादी के, जो उनका उनके शादी को 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इस लंबी चलने वाली शादी में देखिए उसका इन्होंने बहुत बड़ा राज भी खोल दिया है, और कहा कि रिश्ता मुश्किल वक्त में मजबूत बनता है, दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए, और इसी इतनी सिंपल बात को इतनी गहराई इसमें छुपी हुई है, और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर किया कि आज जो कपल्स हैं कहीं ना कहीं इनकी जो टिप है उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे भी। क्योंकि भाई देखिए, बॉलीवुड की कोई इंसान हो, कोई सेलिब्रिटी हो और उनका रिश्ता इतना लंबा चल जाए, ये बहुत हैरानी की बात होती है, और आजकल के ज़माने में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि कोई भी आम इंसान है उसका रिश्ता अगर 25 साल से ज़्यादा चलता है या इतने सालों तक खुशहाली से बीता है तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो जाता है, और हम सभी का टारगेट हो जाता है कि बस इन्हीं की तरह। लेकिन याद रहे कि रिश्ते जो होते हैं वो तभी चलते हैं जब उसमें दोनों लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हों, ना कि एक दूसरे से अलग होने का विचार बनाए। चलेंगे हम नेक्स्ट जो है न्यूज़ की तरफ, जो कि है हमारे हनी सिंह जी की। जी हाँ, हमारे योयो पाजी की तरफ से क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अनुष्का शर्मा का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग राधा।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड की न्यूज। अभी आप एंजॉय कर रहे थे ब्लू आईज, जो कि हमारे हनी सिंह जी का गाना है। जी हाँ, हमारे यो पाजी का, अब इन्हें तो सभी जानते हो, स्पेशली ये इनका गाना सबसे पहले और सबसे ज्यादा हिट होने वाला गाना था। देखिए भाई, इनकी तरफ से भी हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, यो हनी सिंह जी ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर बताया कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने उन्हें ड्रग्स से दूर रहने की वार्निंग दी थी। देखिए भाई, अच्छे इंसान की किसी भी इंडस्ट्री में कमी नहीं होती, बस फर्क ये पड़ता है कि आप अच्छे इंसान की पहचान कर पाए, जैसे कि हमारे शाहरुख खान जी और साथ ही साथ अक्षय कुमार जी हैं। हनी सिंह ने ये माना कि वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे और इन दिनों में जो है दोनों सितारों ने अपनी जो फिक्र दिखाई वो उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। जी हाँ, अगर कोई इंसान एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है और आप स्ट्रगलिंग हो, तो अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंसान एक दूसरे को गिराना जानता है, सपोर्ट कौन जानता है। लेकिन अच्छे इंसान अगर जो है कोई आपके पास, वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ हनी सिंह के लिए नहीं, बल्कि इस इंटरव्यू के बाद जो भी ड्रग एडिक्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आप जो कह लें वो साबित हुआ। क्योंकि भाई, जब हनी सिंह जैसे इतने बड़े, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो बहुत बड़े ड्रगिस्ट बन चुके थे, उनकी हालत, उनकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी, और जब वो छोड़ सकते हैं तो कोई भी छोड़ सकता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट खबर की तरफ, यानी कि हमारे वरुण धवन जी की, जिन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं हर प्रोजेक्ट को ईमानदारी और दिल के साथ काम करता हूँ। उन्होंने चुनौतियों की बात की, संघर्ष की बात की और यंग एक्टर्स को सीधा मैसेज दिया कि काम से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए और काम के लिए ही हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम काम को टाइम देंगे तो हमारे पास टाइम भी उतनी ही अच्छी तरीके से आएगा। दोस्तों, ये दोनों कहीं ना कहीं न्यूज़ हमें रिमाइंड कराती है कि स्टेज चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान बने रहना सबसे बड़ी बात है आजकल के युग में। क्योंकि हम सब कुछ तो बन जाते हैं, हम आरजे बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, कोई एडिटर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, लेकिन इंसान बने रहना एक बहुत बड़ी बात है आजकल के युग में। और इंसान के साथ साथ आप में काइंडनेस ज़रूर होनी चाहिए, कि आजकल वो तो देखने को ही नहीं मिलती मार्केट में। फिलहाल न्यूज़ यहीं तक थी, आशा करती हूँ कि आपको इन्जॉय आपने किया होगा, आपको समझ आई होगी और आपके विचार भी कहीं ना कहीं बदले ज़रूर होंगे, आप भी इन सभी चीज़ों से इंस्पायर भी हुए होंगे और नेक्स्ट आने वाली मूवीज़ के लिए रेडी भी हो गए होंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि घड़ी ने कर दिया इशारा। आई होप आप ठीक होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। आपको छोड़ जाती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग के साथ, सुनो गणपति बप्पा मोरिया, जो कि है हमारे वरुण धवन जी का गाना।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
0: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
1: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है, जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, किशोरियों में ज़्यादा होती है, कारण बच्चों में ज़्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की ज़रूरत उनके शरीर को ज़्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है।
1: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
0: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
1: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
0: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
1: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि ज़रूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
1: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हों, CHCs हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
0: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
1: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है।
0: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
1: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
0: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी 7-6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो ख़त्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो हैं वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जाँच कराना।
0: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से?
1: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज़ अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीज़ें आप, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
1: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहाँ जाकर आप ये जाँच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
0: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
1: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो जाएगी,
0: बच्चे भी काले
1: हो जाएंगे, शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफ़ी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएँ उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM, एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
0: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है?

0: किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग
1: गर्भवती महिलाओं
0: गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत हो तो, मैंने एक बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSC PSC पर उपलब्ध है वो
0: बिल्कुल
1: सिरप?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है। साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और आज हमारे साथ में फिर से आप सभी की चहेतियां, यानी हमारी नई नवेली दुल्हन नहीं, नई नवेली सहेलियां हमारे साथ में आई हैं और आप सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई उनका इंट्रोडक्शन तो हम बाद में देंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये बताएं कि आज ये सप्ताह इतने दिन से नहीं थी तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब किसी ने मिस किया कि बस ऐसे ही यूं ही चल रहा था कि अच्छा हुआ नहीं है? क्योंकि अंशिका ऐसा कहती हैं कि जब प्रिंसिपल नहीं होते हैं तो किसी भी स्कूल की, किसी भी विद्यालय में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, हुड़दंग होता है। तो क्या ऐसा ही हुआ कि मेरे आने से वो मुझे प्रिंसिपल बोलती है? तो मतलब ऐसा हुआ कि हुड़दंग हुआ या फिर सब केवल मौज मस्ती में ही, या बहुत साइलेंटली आप लोगों ने शो को इंजॉय किया? तो मैं आ गई हूँ पूरे पूरे चार दिन के बाद, तो आप सभी ने मुझे मिस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन झूठ मूठ में यार बता देना, कि ऐसे बोल भी देना कि हाँ मैंने आपको मिस किया। तो मैं चैट बॉक्स में आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपनी नई और एक बार और आप सभी से मिली जुली सहेलियों से। तो आप सभी लोग जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उनकी आवाज़ को भी पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो संध्या एन सुहानी, मैं आपको बता दूं कि आपकी आवाज़ को ना सभी लिसनर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। अगेन एंड अगेन वेलकम टू माय शो सुन सहेली।
7: हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या और मेरे साथ है मेरी एक और सिस्टर सुहानी।
6: सुहानी की आवाज़ नहीं आ रही है, सुहानी की आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो
8: हेलो मैम,
6: हाँ
8: आ गई,
6: अब आ गई आवाज।
8: मैं बोल रही थी मुझे सब जान गए,
6: सब जानते हैं, पहचानते हैं, जाना पहचाना नाम सा है, संध्या एन सुहानी।
7: नाम तो अच्छा है ना मैम, थैंक यू सबको।
6: अच्छा एक बात गौर करी
7: क्या,
6: संध्या हा? सुहानी एन समता,
7: हाँ सब SSS
6: टोटल, यानी कि S² 3, यानी 3 S हो गए,
7: S हाँ
6: है ना, संध्या सुहानी समता। तो भाई अगर हम गलत नहीं हैं तो S = 3 जो होते हैं उनकी जोड़ी कहा जाता है कि बहुत धमाल की होती है। एंड हम वाकई में ये हमारे बहुत अच्छे वाली, मैं इनको फ्रेंड्स भी बोलती हूँ, मैं इनको सहेली भी बोलती हूँ, मैं इनको स्टूडेंट्स भी बोलती हूँ। जब मैं इन दोनों से मिली थी ना सबसे पहले, तो मुझे बताओ पहले संध्या एंड सुहानी कि आपको मेरे से मिल करके कैसा लगा था?
7: मैम बहुत अच्छा लगा था, टीचर वाली फीलिंग तो आ ही नहीं रही थी उस टाइम कि आप मतलब? आप मेरी टीचर हो।
6: अच्छा टीचर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी।
8: मतलब जैसे मेरी संध्या दीदी वैसे आप भी दीदी टाइप की लग रही,
6: दीदी टाइप की लग रहे थे। ओके तो मतलब अच्छा वाला फील हुआ था।
8: यस मैम,
6: एक्चुअली वो चार दिन से हमने अपनी तारीफ नहीं सुनी है ना, तो मेरा मन कर गया मैं वो अपनी तारीफ सुनूं। और काफी दिन से मैंने, स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, वरना बच्चे आते हैं और तारीफ वारीफ कर देते हैं तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन हो जाती है।
7: नहीं मैम, वो तारीफ की नहीं बात है, वो नेचुरली आप ऐसी हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार जब मिले थे तो तो वो बहुत अच्छा मतलब मीटिंग हुआ था हम लोग,
6: अच्छी मीटिंग हुई थी। हाँ मुझे भी याद है वो दिन, संध्या सुहानी मेरे पास आई थी, बहुत ही स्वीट सी अभी भी हैं, बहुत ही अच्छे से, एंड कहते हैं ना कि वो इनोसेंट वाला इनका दिल है, और इनोसेंट जब दिल होता है ना तो वो फेस पे अपने आप आ जाता है, क्योंकि जब ईमानदार और जब एक स्वच्छ दिल होता है तो वो चेहरे पे निखर के आ ही जाता है। जिनके दिल में छल कपट होता है और किसी को धोखा देने वाला, किसी को छलने वाला, किसी को परेशान करने वाला होता है ना दिल, तो वो उनके फेस पे भी आ जाते हैं। तो शायद हमारी बॉन्डिंग, हमारे बच्चों की, जितने भी मेरे क्लास के बच्चे हैं उनसे मेरी बॉन्डिंग भी शायद ऐसी ही है कि वो मेरे से अटैच्ड हैं, मैं उनसे अटैच हो जाती हूँ। तो संध्या सुहानी आज के प्रोग्राम को शुरू करें।
7: यस मैम।
6: ओके, तो आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन हम सब सहेलियां मिल करके ले करके आए हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है
5: सुन सहेली।
6: वेरी गुड, सुन सहेली। और आइए सबसे पहले मैं बोलूंगी आपको शुभ दोपहर, या फिर संध्या बोलेंगी, फिर सुहानी बोलेंगी। तो आपको हमारी तरफ से बहुत ही प्यारा सा शुभ दोपहरिया,
7: आपको हमारी तरफ से बहुत अच्छा और प्यारा सा शुभ दोपहरिया,
8: आपको हमारी तरफ से शुभ दोपहरिया,
6: शुभ दोपहरिया। वाओ, मतलब जैसे लग रहा है ना कि हम लोग एक पाठशाला में बैठे हुए हैं और नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री पे बोलते जा रहे हैं। तो संध्या एंड सुहानी, आज है हमारे थर्सडे का जो एक जैसे हम हर दिन का कुछ अलग अलग लेकर के आते, तो आज के दिन का मैं बता दूं कि आज है सीनियर सिटीजन।
7: यस मैम।
6: बड़े बुजुर्गों का दिन। आप मुझे भी कह सकती हैं बड़े बुजुर्ग, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे अंशिका मुझे कहती है, चढ़ाती है मुझे।
7: अच्छा, वो आपको प्रिंसिपल बोलती हैं इसीलिए?
6: नहीं, वो ये कहती है कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक मी, मतलब मुझे बोलती है वो।
7: हाँ, है ना, क्योंकि अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं।
6: हाँ ये तो है, तो वो डिसिप्लिन मुझे ना, मुझे सभी लिसनर्स में भी दिखता है। वो कहती है कि जिस दिन आप नहीं आते ना, उस दिन इतनी बातें होती हैं कि हम लोग चैट बॉक्स में, मैं कुछ किसी को बोल नहीं पाती हूँ, पर जिस दिन आप होते हैं ना तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा सब लोग जैसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन नहीं है, ये एक सम्मान है, और सम्मान के साथ में प्यार भी है, क्योंकि हम किसी को डरा के सम्मान नहीं ले सकते हैं। सबसे पहली बात, हम प्यार से सम्मान ले सकते हैं, हम डरा के सम्मान उतनी देर के लिए लेंगे जितनी देर वो इंसान हमारे आसपास होता है।
7: यस मैम।
6: लेकिन अगर हम प्यार से सम्मान अगर हमें कोई देगा ना, तो वो पीछे देगा, आप हो या ना हो।
7: हाँ हाँ, ये वो नेचुरली निकलेगा,
6: मतलब हाँ। जैसे अगर संध्या एंड सुहानी को से मेरे लिए पूछ लीजिए, आप मेरे बैक में पीठ पीछे पूछिए, तो इनकी तरफ से मेरे लिए फीडबैक बहुत ही अच्छा सा आता है। मतलब अगर कोई बुराई भी करता है ना, तो ये लोग लड़ लेती हैं उनसे।
7: यस मैम।
8: मैम, हम लोग के सामने कोई आपकी बुराई कर ही नहीं,
6: करता ही नहीं होगा। एग्जैक्टली मुझे
7: हाँ, तो ऐसा तो अभी कोई केस नहीं आया जिसमें आपकी बुराई हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
6: हाँ, तो मतलब मैं अपने आप को लकी समझूं कि मैं, मेरे साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी हम लोग हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने उन किसी का भी दिल नहीं दुखाया है। मतलब मुझे लगता है ये तो ये दुआएं हैं ना यार, ये बताओ मुझे, है ना। तो चलिए, आज सीनियर सिटीजन्स का दिन है और हम चैट बॉक्स में भी आएंगे, लेकिन उसके पहले एक प्यारी सी कविता हम सुनाने जा रहे हैं। अंशिका मुंह में आ रही है, तो सुहानी एंड संध्या, तो आपको पोयम सुननी है।
7: यस गुड।
6: चलिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको पोयम कैसी लगी। तो आज की पोयम है बड़े बुजुर्गों को लेकर के, कि बड़े बुजुर्ग घर की शान होते हैं, इनसे मिली हमें सच्ची पहचान, जीवन का अनुभव है इनके पास, दिखाते हैं हमें सही रास्ता और खास, इनका सम्मान करना सीखो, इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ो, इनकी बातें हैं अनमोल खजाना, इनसे ही महकता है घर आंगन सारा।
7: बिल्कुल सही बात मैम, ये जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद के रूप में हम लोग के साथ में।
6: बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी बढ़िया बात बोली है कि वो हमारे साथ में एक आशीर्वाद के रूप में रहते हैं, चाहे वो दादा हों, चाहे वो दादी हों, नाना हों, नानी हों। माँ पिता तो हैं ही हैं, उनके लिए तो कोई वही नहीं है, बट घर के बुजुर्ग यानी दादा दादी और नाना नानी, तो मुझे लगता है कि उनका रहना और उनकी छत्र छाया में काम करना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उनके लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आज मेरे पास मेरे बच्चे बैठे हुए हैं।
7: यस मैम,
6: है ना। तो उसमें क्या राय है आप दोनों की?
8: मैम उनके पास अनुभव सच में बहुत ज्यादा होता है।
6: किस चीज का?
8: हर चीज का, मतलब उनके अंदर ऐसे कुछ भी पूछो सबका
6: आंसर होता है।
8: हाँ, मतलब कहाँ से आ जाता है।
7: हाँ, और आंसर सिर्फ आंसर नहीं, मतलब एकदम सही वाला आंसर हो,
6: समझाने वाला आंसर हो जाता है।
8: एग्जांपल का फैक्ट भी बता देंगी, कोई स्टोरी भी बता देंगी, ऐसे करके समझा भी देंगी।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई अभी। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मतलब मैंने भी देखा है। मेरे भी जब दादू थे तो कभी भी कुछ होता था ना लाइफ में, क्योंकि अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो मैं अपने दादा से बहुत ज्यादा क्लोज थी, अपने फादर से ज्यादा। तो मैं दादा के पास जाऊं और बोलूं कि पापा आज ये बात है और ये कॉलेज में हुआ है, स्कूल में ये है, मुझे यहाँ जाना है, तो मतलब जैसे उनको मना भी करना होता था ना, तो वो डायरेक्टली नहीं डांट के मना करते थे कि नहीं नहीं जाना है, लड़की हो, ये है वो है, बस पहले वो उसकी उस तह तक जाते थे। एक बार मुझे याद है, मुझे बायो के सब्जेक्ट को लेकर के एक जगह पर साइंस का सेमिनार था।
7: हाँ।
6: आगरा साइड में। और मैं अपने टीचिंग लाइन में थी उस समय भी, मतलब मैं बच्चों को लेके जा रही थी वो सेमिनार में। तो मैंने बाऊजी से पूछा, मैंने कहा कि बाऊजी मुझे जाना है, तो बोला कि कितने लोग जा रहे हैं, क्या है, मतलब क्या है वहाँ पे, एड्रेस क्या है, सब बताया मैंने। तो मैंने बताया कि ये जो सेमिनार है ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बहुत एजुकेशनल सेमिनार है। और मैंने ऊपर से ये भी बोला कि अगर आप मुझे खुशी से छुट्टी देंगे ना, मैं तभी जाऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला बेटा नहीं, पढ़ाई के क्षेत्र में तो मैं हमेशा से मोटिवेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ आगे बढ़ो। तो उन्होंने मुझे एक सीख भी दिया कि बड़ों की राय, बड़ों की राय और बड़ों का आशीर्वाद अगर आप मिलजुल के चल रहे ना उनके साथ में, तो आपको उपलब्धि पे उपलब्धि अपने जीवन में मिलती जाती है।
7: यस मैम।
6: और वो एक दिन था, वो आज एक दिन है। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि उनकी उस बात को लेकर के मैंने अपने दिल में घर बना लिया कि बड़े बुजुर्गों का एक आशीर्वाद और एक उनकी राय, ये दोनों ही बना के चलें तो हमें उपलब्धियाँ हमें खुद बुलाती हैं कि तुम इधर आओ, तुम्हें यहाँ सफलता मिलेगी।
8: यस मैम, ऐसे होता है। वो लोग जो कह देते हो जाता है, मैं तो कहती हूँ बोल दे तुम, जाओ अंबानी बन जाओ,
6: अंबानी बन जाओ। एग्जैक्टली।
7: हाँ मैम, ये बात तो एकदम सही है। पता है मेरी मम्मी है, पता नहीं उनके अंदर पता नहीं ममता है या जो भी है, पर उनको पता चल जाता है कि मैं अभी यहाँ जाऊंगी खेलूंगी तो मुझे पक्का चोट लगेगी।
6: हाँ।
7: इधर पता नहीं उन्होंने रोका कि ना जाओ खेलने के लिए, उधर चोट लग के आ गई।
6: हाँ, तो ऐसा होता है।
7: इन लोग के पास पता नहीं क्या एक्सपीरियंस है, सच में
6: एक्सपीरियंस होता है। और ये ना जैसे कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट भी होता है बच्चों से, तो उनको पहले से पता चल जाता है कि बेटा ये काम मत करो, इससे तुम्हें नुकसान मिल सकता है। तो ये थी पोयम। और उस पोयम के बाद आते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, कि एक लाइन में बताऊंगी मैं और उनसे फिर मैं सुहानी और संध्या से पूछूंगी कि उनको क्या आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में समझ में आया। तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में ये है कि पैसा ज़रूरी है लेकिन शांति उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पैसा ज़रूरी है पर शांति जो है उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें वन बाई वन आप बताएं कि आप कितना सहमत हैं।
7: मैम इसमें मैं 110% सहमत हूँ।
6: हाँ,
7: क्योंकि देखो बहुत लोग के पास पैसे तो बहुत होते हैं पर उनके पास शांति नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें पैसों से खरीद ली जाएगी पर शांति और खुशियां नहीं।
6: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना कि आपने देखा होगा, कभी आपने रिक्शे वाले को देखा होगा या फिर स्टेशन के बाहर, मैंने अभी आज ही देखा कुछ लोग ऐसे ही, मतलब इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, तो वो पता है एक पॉलिथीन बिछी हुई थी।
7: Yes, ma'am.
6: और पॉलिथीन पे वो इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि अगर उनके पास में कुछ ऐसी पोटली रखी थी, कोई अगर ले जाए या कहीं पैर से उनको ठोकर लग जाए तो वो उठ नहीं सकते नींद से। इतनी गहरी नींद। तो क्या उनके पास शांति है बट कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। और एक जगह पर मखमल का बिस्तर,
7: yes, ma'am.
6: रूम में एसी लगी हुई, सब सुविधाएं, और नींद की गोली खा रहे।
7: हाँ, ये मैम मोस्टली होता है, बहुत जिनके पास पैसे हैं उनके साथ में तो ये ज्यादातर होता है।
6: ये ऐसा ये रियल फैक्ट्स है। तो इसीलिए शांति जरूरी है और जैसे पैसा तो जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, हम ये नहीं कहेंगे पैसा जरूरी नहीं है, बट सबसे पहले अपने मन की शांति और सुकून सबसे पहला काम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो संध्या और सुहानी के आइडियाज जानेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे कि आखिर हम इतना अटैच्ड क्यों होते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स को लेकर के। तो बस हम यूं आए हम बस यूं आए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, और बस हम छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आएंगे, सीधे चैट बॉक्स में आएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और आज हमारे साथ में है हमारी दो नेक्स्ट सहेलियां संध्या एंड सुहानी। यस, यानी समता, संध्या एंड सुहानी। तो तीनों ने आज तिगड़ी मारी है, यानी डबल एस ट्रिपल एस की। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है भाई मुझे बताने वाली है संध्या एंड सुहानी कि बड़े बुजुर्गों में आखिर ऐसी क्या बात होती है कि सभी बच्चे उनसे बहुत ललायत होते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और ख़ास करके इन छुट्टियों में।
3: मैम, वैसे तो मम्मी पापा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग जैसे हमारे नानी नाना, दादी बाबा, इनकी बात कुछ और होती है। क्या है ना कि हम लोग हमेशा मम्मी के पास होते हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में जब छुट्टी होती है तो एक एक्साइटेड बनी रहती है कि मुझे नानी नाना के पास, या कोई बाहर रह रहा तो अपने दादी बाबा के पास जाना ज़रूर चाहता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा के प्यार में उनके प्यार में बहुत डिफरेंस होता है।
2: वो डिफरेंस ये होता है, मैं बताऊँ, एक फ़नी डिफरेंस होता है कि
3: क्या?
2: अगर हम अपने दादा और दादी से ये कहते हैं कि मुझे दादू मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे चिप्स लेनी है या कुछ करना है, लेना है ये, तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है लो, तुरंत अपने पॉकेट से निकाल के, जेब से निकाल के दे देंगे।
3: yes,
2: और यही अगर मम्मी से अगर दोबारा मांग लो तो वो बेलन और चकला, चिमटा, झाड़ू, मतलब हाथ में हमारे घर के जितने टूल्स होते हैं ना, कुछ भी टूल्स उठा करके वो हमारे धम को दे मारते हैं।
3: अरे मैम, उनका चालीसा सुनना पड़ता है। हाँ सच में, पहले तो उनकी चालीसा सुनो, फिर दे दी तो दीदी कोई
2: अगर वो
3: दे, अगर, दे देंगे।
2: अगर वो दे भी दी, मतलब मुश्किल से अगर उनके हाथ से निकल गया 10-5 रुपया तो बड़ी मेहनत से निकलता है। तो चालीसा क्या होती है, क्या बोल रहे थे आप लोग अभी?
3: चालीसा मतलब वो सुनाएंगे, तुम्हारे पापा इतना मेहनत करके लाए, तुम लोग खाते हो, पड़े रहते हो, बस तुम लोग पैसे खर्च करो, यही सब, मतलब बहुत चीज सुनाएंगे, काम काज कोई करना नहीं है, बस तुम लोग को पैसे चाहिए।
2: ओफो,
3: ये वाला
4: तो हम लोगों ने नाम रखा है कि मम्मी का चालीसा, पापा का चालीसा।
2: यानी मम्मी की चालीसा और पापा की चालीसा। अच्छा वाह, मतलब अभी तक मैंने केवल हनुमान चालीसा ही सुनी थी, बट ये मम्मी पापा की चालीसा भी है। तो आप जब मम्मी पापा जब ना देना, गुस्सा करें, तो आप अपनी चालीसा शुरू कर दिया करिए, हनुमान चालीसा। कहते हैं ना कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर
3: हनुमत बलवीरा,
2: और उसके बाद है संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोलावे। तो संकट जब आता है, जब आप पैसे मांगो और वो नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ा संकट यही है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
3: महावीर जब नाम सुनावे।
2: तो भूत पिशाच आपके इर्द गिर्द छोटे और बड़े भाई बहन होते हैं, अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो भूत पिशाच आ जाते हैं, सुनो हमको अगर अगर इनको दीदी को दिया तो हमें भी चाहिए,
3: हमें भी चाहिए, अगर उनको 10 रुपए दिए तो मुझे भी 10 रुपए
4: चाहिए,
3: तो
2: उनको 20 चाहिए होता है। उनको 20 चाहिए होता है,
4: और दम है कि कुछ ले लो उनको ना दो।
2: हाँ कुछ, अरे नहीं हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर आप अकेले चिप्स का पैकेट खा लेंगे तो वो रैपर डस्टबिन में जाके देखते हैं।
3: यस मैम,
2: है ना, ऐसे मेरे घर में भी होता है, मेरे घर में भी बच्चे हैं ना, तो अगर वो मतलब मैं उसको रैप करके डाल देती हूँ अगर, तो कहेंगे सुनो आज ये डस्टबिन में चिप्स का पैकेट रैपर रखा हुआ है, ये चिप्स किसने खाई है और कब खाई है, कितने बजे खाई है।
3: हाँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं,
2: पूरा जैसे पूछताछ समारोह जो होता है, इंक्वायरी ऑफिस जो होती है ट्रेन स्टेशन पर, वो पूरी शुरू हो जाती है इनकी।
3: यस मैम,
2: है ना। तो मैं कहाँ पे थी, हम लोग की बड़े बुजुर्ग आपको सबसे ज्यादा आप लोगों के करीब रहते हैं, मतलब बच्चों के करीब रहते हैं, तो क्यों रहते हैं बताएं।
3: पता है मेरा क्या है कि मेरी जो दादी थी, जब मेरी मम्मी कभी मारती वारती थी, कभी नहीं, मोस्टली मार पड़ती थी बचपन में, तो जब मेरी मम्मी मारती थी तो मेरे पास यही एक होता, या तो मैं अपनी दादी के पास दौड़ के भाग के जाती थी, या फिर मैं अपनी बड़ी मम्मी के पास जाती थी। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे से बचा लेती थी। मेरी दादी बहुत पतली सी थी, लंबी हाइट, पतली, और उनके मतलब उनका पेट पीठ दोनों चिपका हुआ था।
2: इतनी पतली?
3: हाँ, वो मतलब एक पतली होती है, एक बेहद पतली थी।
2: मतलब मैं फिर सोचती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मतलब
3: हाँ आप अच्छे हूँ, मैं अच्छी हूँ, उनके कंपेयर।
2: अच्छा, ओह माय गॉड,
3: आपकी फिगर तो ललन टॉप है सच में। फिर मेरी मम्मी मारती थी तो वो चिपका लेती थी,
2: मुंह में जो आया बोल दिया ना, ये होती है सहेलियां, मतलब डर नहीं लगा, चलो अच्छी बात है।
3: हाँ, तो मुझे चिपका लेती थी। और पता है उनके पास वो हुआ करता था भूना चना, और वो ये सब लोग क्या खाते,
2: चवनप्राश,
3: वो मुझे पसंद था। हाँ। तो मुझे ये पता था कि मुझे मार मिली है तो चवनप्राश तो मिलेगा ही मिलेगा।
2: मतलब अगर मम्मी ने मारा है तो चवनप्राश मिलेगा ही मिलेगा।
3: हाँ, हाँ। फिर तो दादी के पास 2-4 रुपए होते थे, तो मतलब तब रुपये की, मतलब 2-4 रुपए बहुत कीमती थी, अब जैसे 10-20 का कोई मतलब नहीं, तब 2-4 बहुत हुआ करता था। मुझे मिल जाता था, भैया पूछिए
2: 2 रुपए में मैंने हम लोगों को कितनी सारी टॉफियां मिल जाया करती थी,
3: 8 टॉफी। हाँ, मिलती थी,
2: मतलब वही है ना वो। हाँ। मतलब हम लोगों ने भी वो युग देखा हुआ है, मतलब 2 रुपए मतलब बहुत हो गए। और हम लोगों ने मतलब जब हम लोग छुट्टियों में सब लोग मिलते थे अपने कजिन्स वगैरह भाई बहन, तो एक गेम होता था हौजी। हाँ। हौजी गेम होता था जिसमें वो एक चिट होती है, उसमें नंबरिंग होती है, और नंबरिंग बोल करके वो नंबरिंग काटी जाती है, जिसको तंबोला भी कहते हैं। तो वो हम लोग 1-1 रुपए की खेलते थे, विश्वास करोगे आप लोग, 1 रुपए की, और मतलब जैसे 4 लोग हों तो 4 रुपए, 4 रुपए इकट्ठे हो गए। तो अब 4 रुपए वो होता था कि जिसने जीत लिया तो वो आइसक्रीम में जाते थे 4 रुपए।
3: हाँ, 1 रुपए बर्फ, हाँ,
2: बर्फ वाली 1 रुपए की आइसक्रीम मिलती थी।
3: हाँ, हाँ,
2: तो भैया वो 1 रुपए का जमाना भी हम लोगों ने देखा है, और वो बड़ा ही सुकून वाला जमाना था। जब बाबा से मांगो पैसे, दादी से मांगो पैसे, तो वो झट से दे देते थे, और बड़ा ही मजा आता था। तो मैं सुहानी से जानना चाहूंगी, सुहानी।
4: यस मैम।
2: कि सुहानी, आपके लिए दादा और दादी में, नाना और नानी में सबसे ज्यादा प्यार आपको किसने किया, और आपने किसको किया और क्यों?
4: मैम ये मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि मेरा कोई था ही नहीं।
2: क्यों?
3: मैम मैं बताती हूँ,
2: जब ये आई तब तक कोई नहीं था।
3: हाँ, तब सब लोग निकल चुके थे लॉन्ग ट्रिप पे।
2: ओह गॉड।
3: पर मैंने दादी वाला देखा, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया।
4: नानी नाना और दादी दादा के बारे में कुछ पता?
2: तो संध्या ने देखा हुआ है।
3: हाँ, मैंने देखा, मेरी दादी मुझे गाँव में अपने साथ ले जाती थी घुमाने के लिए। हाँ, अगर उन्हें पता है कुछ खाने को मिलता था तो मेरे लिए बचा के रखती थी कि उसको देना है, उसको देना है।
2: इसीलिए तो अभी तुमने बोला था ना कि दादी लोगों का प्यार जो है वो बिल्कुल असीम वाला प्यार होता है, उस प्यार की कोई तुलना ही नहीं कर सकता।
3: मम्मी अगर डांटे भी तो दादी सपोर्ट में रहती थी।
2: बिल्कुल। तो ये था हमारी अभी दादा और दादी और हमारी सहेलियों की थोड़ी चिट चैट थी। तो सुहानी एंड संध्या, हम लोग चैट बॉक्स में चलते हैं।
3: Yes,
2: और चैट बॉक्स के बाद में हम अपने अगले टॉपिक के तरफ आएंगे, लेकिन उसके पहले हम गाना भी सुनाएंगे। तो प्रबल जी गुड आफ्टरनून, मैम जी गुड आफ्टरनून, एंड तन्वी शुक्ला जी तो बहुत ही खुश हैं आज, बहुत सारे अच्छे गाने लग रहे हैं उन्हें, थैंक यू सो मच। एंड हमारे बीच में आइडियल नाम का कोई एक लिसनर आए हुए हैं जो लिख रहे हैं पैसे से सुकून नहीं खरीदा जा सकता है। मैम एग्जैक्टली
3: एकदम सही मैम, सच में पैसों से सुकून तो बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता।
2: संतोष कुमार जी लिख रहे हैं हाय, एंड तन्वी जी लिख रही है कि आप तीनों की आवाज बहुत बहुत सुंदर है।
3: हम तीनों की तरफ से उनको बड़ा वाला थैंक यू
2: सो मच एंड गुड आफ्टरनून। अनुष्का जी गुड आफ्टरनून, आरजे मैम जी तो गुड आफ्टरनून आपको भी। एंड बाकी हमारी लिसनर्स कहाँ हैं, इतने प्यारे मौसम का आनंद ले रही है मुझे लग रहा है अपने घर में, और ये जब हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो हम लोग को इतनी अच्छी नींद आ रही है। तो आप सोचो, आप तो बारिश वाले मौसम में यार घर में हो, काम काज से बिल्कुल निवृत्त होकर के खाना वाना सब खा पी करके अभी आप लोग कर रहे होंगे आराम। तो आराम करने के साथ साथ अपनी फ़ोन उठाइए, उसको ट्यून करिए, जिसमें बैठी हुई है आज एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सहेलियाँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है सुन सहेली। आइए यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम फिर से सीनियर सिटीजन्स के ऊपर एक बहुत ही उमदा वाला टॉपिक लेकर के, एंड आप सभी को उसमें भागीदारी करनी है। क्या भागीदारी करनी है? कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप देंगे, और फिर हो सकेगा तो आपको सुनाऊंगी आपके पसंदीदा सॉन्ग को। तो चलिए सुनते इस पैसे गाने को, स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-4045-33-95-84। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है हमारे साथ आज बहुत सारी सहेलियां, यानी कि एक नहीं दो और तीन। तो चले संध्या एंड सुहानी, हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर।
1: यस मैम।
0: तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि बड़े बुजुर्ग घर के क्या ये चाहते हैं कि हमारे सामने हमारे बच्चे बैठें, हमसे बात करें, हमें अपना कोई भी दिल का हाल बताएं और हम उन्हें अपने दिल का हाल शेयर करें।
2: बिल्कुल मैम, क्योंकि अक्सर वो लोग अकेले ही बैठे रहते हैं ना, तो उनको भी चाहिए कि हाँ बच्चे आए हमारे साथ में बैठे, हमसे बातें करें, कुछ बातें वो अपनी बताएं, कुछ हम अपने जमाने की उनकी उनको बताएं।
0: तो क्या आपके साथ कभी हुआ है घर के, मतलब मम्मी पापा ही क्यों ना हो, तो कभी हुआ है कि वो अपने जमाने की बातें आपके साथ शेयर करते हैं?
1: हाँ, एक दो बार तो मैंने खुद उनकी लाइफ के बारे में पूछा था कि मम्मी ये बताओ आपकी शादी कैसे हुई, तो फिर उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी मुझे बताई।
0: अच्छा, कैसे?
1: अरे उनकी स्टोरी बड़ी लेंदी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ।
0: हाँ।
1: मेरी मम्मी, कैसे मैं बताऊँ कि मेरी मम्मी की शादी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरे पापा तब के जनरेशन के बहुत हैंडसम लड़के थे।
0: ओह माय गुडनेस।
1: हाँ सच में। और मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ, ये बताओ मम्मी अब तो जनरेशन है तो इतना ओपनली बच्चे बोल लेते हैं। मैं बोलती थी मम्मी ये बताओ पापा भी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कहीं? नहीं, पहले के जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हम कहें अच्छा, तो आप पापा को कब देखी थी? बोली कि मेरी एंगेजमेंट हुई थी, दिखाई हुई थी, तब मैंने तुम्हारे पापा को देखा। मेरे पेरेंट ने कहा कि तुम्हें पसंद है, मैंने बोल दिया हाँ पसंद है, फिर शादी हो गई।
2: अब मुझसे झूठ बताया गया है, मुझसे मम्मी बताती थी कि हम लोग मेले में मिले थे।
0: अच्छा।
1: कभी कभी तो कहेंगी तुम्हारे पापा और हम एक ही कॉलेज में पढ़े थे, तो हम कहें तब तो कॉलेज से होगा। नहीं नहीं, वो पढ़ के निकला था तब मैं गई थी। अरे वो ऐसी ऐसी बातें बताती हैं, मैं सोचती रहूं।
0: तो मतलब कि लव प्लस अरेंज थी कि केवल अरेंज?
1: नहीं नहीं, ओनली
2: प्योर
1: अरेंज थी।
0: पेवर अरेंज मतलब एक दूसरे को देखा भी नहीं था।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं।
0: तो भाई, तो उनसे आपने जब उनके कुछ ऐसे सुनहरे पलों को आपने पूछा,
1: मैंने ये भी पूछा था कि अच्छा ये मम्मी ये बताओ कि आपने पापा को 3 अमेजिंग वर्ड कब बोले थे कहीं? अरे ऐसी पहले बात नहीं होती थी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोले। हम कहें तब अच्छी बात है, मतलब बहुत ही उन लोग की लाइफ में क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा,
0: एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट थी जो आज नहीं है।
1: पता है मम्मी मेरी बताती है,
2: मम्मी लोग मतलब सिचुएशन अच्छा भी ना होने पे भी साथ में रहती हैं, ऐसे ऐसे टाइम पे पापा का साथ नहीं छोड़ी थी। अब मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां ऐसे कर पाएं।
0: हाँ,
1: नहीं कर पाएं। और पहले के जनरेशन में रिस्पेक्ट ऐसा था कि मम्मी कहती है, एक बार मेरी मम्मी मतलब अपने मायके गई, मेरे पापा भी गए थे, गलती से मेरी मम्मी मेरे पापा के बगल चारपाई पे बैठ गई।
0: हाँ।
1: मेरे नाना थे, जो डांट पड़ी मेरी मम्मी को कि
0: अब क्या डांटा?
1: मेरे नाना ने मेरी मम्मी को इतना सुनाया कि पूछो ना, मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, तमीज नहीं है, तुमने मेरी नाक कटवा दी। इवन कि उनकी शादी हो गई थी पापा
0: उसके बाद।
1: हाँ,
0: एक लड़की भी थी, मेरी
1: दीदी भी हो गई थी, मतलब एक बेबी भी था उनका, लेकिन तब भी मेरे नाना ने मम्मी को इतना सुनाया कि तुम्हें तमीज नहीं है, ये है वो है, यहाँ बस पापा के बगल चारपाई पे बैठ गई थी। अब बताओ शादी हो गई थी, मेरी बड़ी दीदी हो चुकी थी,
0: बताओ ये हाल है।
1: हाँ।
0: और आज के जनरेशन का क्या है, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग का जमाना ही पहले अच्छा था।
1: yes,
0: कि कम से कम बिना देखे शादी तो हो जाती थी। आज तो लिविंग रिलेशनशिप जो
1: yes,
0: सबसे खराब और सबसे जानलेवा खतरे वाला जो सीन होता है, जो एक एक जो ट्रेंडिंग चल गया है कि लिविंग रिलेशनशिप, जो बड़े बुजुर्ग कभी कभी भी उस चीज को एग्री नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग क्या है, वो बेचारे चुप हो जाते हैं। आज की जनरेशन के आगे तो चुप होना पड़ता ही है।
1: अब मैम आपने बात ओपन कर ही दी है, तो मैं बता दूं, मेरी दीदी की शादी होनी थी, तो उनकी भी अरेंज मैरिज हुई है, तो उनको ऐसे फर्स्ट दिखाई सबकी होती है, उनकी भी हुई। मेरी फैमिली की तरफ से मतलब सब लोग थे, हम लोग नहीं थे, लेकिन जैसे मेरी मम्मी पापा भैया दीदी मेरी मौसी थी, उनके बच्चे थे, इधर से इतने लोग गए और लड़के की फैमिली आई। तो फिर आज के जनरेशन में होता नहीं कि लड़की लड़का वैसे बैठ कर बात कर लें, मतलब तो फिर ये हुआ कि मेरी दीदी को और जो मेरे जीजा हैं उनको एक कमरे में ऐसे बैठा दिया गया, बेड पे, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था
0: जी।
1: अब मेरे और मतलब उसमें दो 10-20 मिनट दोनों बैठ के जो भी बात की होंगे, क्योंकि वो अरेंज मेरी शादी थी।
0: हाँ तो ये तो औपचारिकता है, हमेशा नॉर्मल होता है, सब जगह पे होता
1: है। अब उसमें ऐसे दरवाजा खुला था, ये भी नहीं था कि मतलब बंद हो एकदम चिपका, हल्का सा मतलब उसमें स्पेस था। मेरे पापा इतना गुस्सा किए उतनी देर में कि कितनी जल्दी सुनैना को कमरे से बाहर निकाला जाए, कितनी जल्दी।
0: ओफो।
1: मतलब उनको ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे
0: कि मतलब
1: हाँ, जबकि वो शादी के लिए गए थे, दिखाई हो रही थी
0: और मतलब फिक्स था पूरा।
1: हाँ हाँ, उन्हीं से मतलब उन्हीं से शादी होनी थी, तो ये होता नहीं आज के जनरेशन में कि लड़की लड़की बात कर ले, दूसरे को जान ले, जो भी है। तो मेरे पापा उतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि जानते थे ये देखो दरवाजा खुला है, झांकी भी थी उस रूम में, लेकिन फिर भी इतना था कि वो नहीं कह रहे थे, उनको गुस्सा आ रही
0: बताओ
1: थी।
0: ये तो यही कह रहे ना कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं वो पुराने ख्यालात के लोग हैं कि हम अपनी बच्चियों को बस खाली पढ़ा लिखा करके और हम शादी कर देंगे, कोई अरेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब लव मैरिज नहीं, कोई मतलब एक दूसरे से बात नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही जो ख्यालात के हमारे टाइम पर जब लोग हम लोग के दादा दादी हुआ करते थे और वो एक, लेकिन एक बार बता दूं सुहानी एंड संध्या कि वो मर्यादित जीवन भी होता था,
1: yes,
0: वो मर्यादित वाला होता। अगर बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश मना कर रहे होते थे,
1: बिल्कुल,
0: और उनके पीछे का एक बहुत गंभीर लॉजिक भी होता था कि मना कर दिया इसका मतलब है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है,
1: है हाँ।
0: या जैसे कपड़ों पे, आजकल कपड़े देख रही हो लड़कियां कैसे पहन रही हैं।
1: अरे मैं तो अपना गेटअप देख के मैं खुश हूँ, भले मुझ पे चार लड़के मुझे नहीं देखते वो बात अलग की है,
0: हाँ।
1: पर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने ड्रेसिंग सेंस।
0: तो ये भी तो सही है ना कि अगर हमें कोई ना देखे तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग मॉडर्न नहीं है, हम लोग मॉडर्न नहीं है, बिल्कुल मॉडर्न है, ऐसी बात नहीं है।
1: देखो
0: जो बच्चे जींस पहन रहे वही लोग क्या कहते हैं मॉडर्न है,
1: हाँ, क्योंकि प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। मैम आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं, आप फुली डेवलप हो, पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपने फुली ढंग से कपड़े पहने हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लड़का कोई देखेगा, अगर आपने क्रॉप टॉप पहन रखा है या फिर
2: लड़का ही नहीं लड़कियां भी गलत कमरे बहन जी आई हैं।
1: फिलहाल अभी तक मुझे किसी ने बहन जी नहीं बोला है, लेकिन
0: एक्चुअली ना नहीं संध्या ये बात नहीं है,
1: हाँ।
0: कोई देखे या नहीं देखे वो तो अपना दूसरा मैटर है, लेकिन मैं मतलब मेरी सोच ऐसी है कि मुझे किसी ने एक बहुत मतलब बहुत पहले की बात है ये कि
1: लेकिन मैम कोई करे या ना करे मैं तो आपकी फैन, क्योंकि आपकी वो आप सूट में कमाल की लगती हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है तब से मैंने आपको ऐसे सूट में ही देखा है।
0: जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहे, शुरू हो गई, मतलब मेरा मतलब मुंह से निकला नहीं गाना और इन लोगों ने शुरू कर दिया। मैं कुछ बताना चाह रही थी,
1: हाँ।
0: तो एक ये शायद मैंने मूवी में देखा था ये इंसिडेंट्स, या फिर मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है ना, बहुत पुरानी बात है कि उसमें आपस में दो लड़के बात कर रहे हैं, दो लड़के बात कर रहे हैं कि यार असली सुंदरता क्या होती है। तो उसमें से एक लड़के ने कहा कि भाई मुझे तो वो ज़्यादा पसंद है जो मिनीस पहनती हैं, शॉर्ट्स स्कर्ट्स पहनती हैं और बहुत ही स्मार्ट सी लगती हैं, हाई फाई बन के घूमती हैं। तो दूसरे लड़के ने ये कहा कि मुझे तो क्या कहते हैं कि साड़ी में लड़कियां और सूट में लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जो पहले वाले लड़के ने, तो दूसरे लड़के ने कहा कि पहले लड़के ने कहा कि क्या तुमको साड़ी में लड़कियां पसंद आती हैं? बोला कि हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो कहा ये इसीलिए कि अगर जो लड़कियां मिनीज पहन करके घूम रही हैं, टांगे दिखा रही हैं, कपड़े ढंग के नहीं पहन रही हैं, तो उन्हें तो सब देख रहे हैं,
1: yes, ma'am.
0: लेकिन जो साड़ी पहन के सड़क पे आ जाती हैं या किसी शादी में जाती हैं तो उनके अगर हल्के से पैर दिख जाते हैं ना तो लोगों को लगता है अरे यार कितनी सुंदर है, इसके पैर कितने सुंदर हैं,
1: yes, ma'am.
0: तो
1: बिल्कुल
0: सोचो कितनी सुंदर ये होगी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो ये कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मतलब सुन करके देख करके मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं मूवी में देखा था, तो बड़ा ये कंपैरिजन एक ना एक आइडियल कंपैरिजन है कि लड़कियों को महिलाओं को अपनी इज्जत को अपने हाथ में वो उनके हाथ में होती है, चाहे आप उन्हें जैसे भी जैसे आजकल बड़े सिटीज में, मैं लखनऊ से आज ही आई हूँ तो मैं वहां भी देखती हूँ कि कैसे कैसे सब उठपटांग सब, मतलब ये और कहो तो कहती अरे आजकल का ट्रेंड है सूट पहन लिया दुपट्टा नहीं है, ये ट्रेंड है।
1: मैम मैं किसी का तो नहीं जानती, पर मैंने जब से मैं थोड़ा मैच्योर हुई हूँ या फिर जो समझने जानने लायक हुई हूँ, तब से तो मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं। मैं हमेशा हमेशा अच्छे कपड़ों में रही, भले वो देखने ना अच्छा लग रहा हो दूसरे इंसान को तो वो बात अलग की है, पर मैं हमेशा ऐसे, और मैं मेरा मानना ये है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे तो मैं जैसी हूँ वैसे करे,
0: मुझे बदल के
1: अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं, वो कुछ और ही है।
0: तो ये तो मोहब्बत मूवी का डायलॉग है।
2: मेरी बात तो ये
0: मोहब्बत मूवी का डायलॉग
1: है। मैं मानती हूँ, पर मेरे पीओबी से ये मेरा भी एक सच में मेरा दिल से ये बात निकलती है कि मैं जैसी हूँ, मुझे कोई ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं ठीक हूँ, अगर नहीं कर रहा यार तुम बदल जाओ तब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगता है कि
1: हम तो सबसे यही कहेंगे कि सब लोग संस्कार में रहो, क्योंकि जो रिस्पेक्ट संस्कार में मिलती है शायद वो ऐसे डिस्प्ले करने, बॉडी डिस्प्ले करने से नहीं आएगी।
0: तो नागेश्वर
1: रियल मिल जाएगी, हाँ तुम्हारे वो फैन बढ़ जाएंगे,
0: पर जो आपकी एग्जैक्टली रियलिटी है
1: पर
0: वो
1: जो एक इंसान अपने मन में एक इमेज रिस्पेक्टिव मतलब रिस्पेक्टिवली बना लेता है वो नहीं बन पाती।
0: तो सबसे पहले तो बता दूं कि तन्वी शुक्ला जी आप क्यों हंस रही हैं इतना मुझे भी बताएं, एंड नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि मैम हमने दो दिन आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ चली गई थी, मैं आ गई हूँ वापस नागेश्वर जी। एंड नागेश्वर लिख रहे हैं कि मेरे हिसाब से शर्म ही औरत का असली गहना और सुंदरता है, अच्छे अच्छे कपड़े से कोई सुंदर नहीं दिखता, सामने वाले की बातें भी अच्छी होनी चाहिए तभी अच्छा वो दिखेगा।
1: इनकी सोच को दाद देना पड़ेगा, सच में बहुत अच्छी सोच।
2: इनके लिए सौतोपू की सलामी
0: सौतोपू की सलामी एग्जैक्टली। नागेश्वर जी आज अंशिका की आवाज़ तो नहीं लग रही है, दूसरी कौन है? आज संध्या एंड सुहानी आई हैं और अंशिका आज थोड़ी सी उनकी तबीयत नासार कहते हैं ना, हाँ तबीयत खराब थी इसी वजह से वो नहीं आई है, और इसी की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है मैम, क्योंकि मैं खुद को बदल नहीं रही हूँ, जैसी हूँ वैसी रहना चाहती हूँ। अरे तन्वी
1: बहन, मैं तुमसे यही कहूंगी तुम कभी खुद को बदलना नहीं, तुम एक्चुअल में जैसी हो वैसी ही रहना, ये
0: जैसी
1: मेरा
0: हो वैसी ही रहना,
1: हाँ
0: जैसी हो वैसी ही रहना, ये बहुत ही प्यारा सा गाना
1: ये था। कोई और गाना है, मैं जैसा चाहा था तुम तो बिल्कुल वैसी हो, कोई सॉन्ग भी ऐसे है,
0: मैंने तुमको जैसे चाहा था तुम पूरी वैसी हो, हाँ। भाई गाना अगर कोई आपको लग रहा है ये कोई गाना है तो गाना लिख करके भेजिए, हम जरूर से प्ले करेंगे। और अभी ना इन लोगों के साथ अगर हम बातें करने बैठ जाएंगे तो जैसे कहते हैं ना कि सहेलियाँ अगर बातें करने बैठ जाएँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, और एग्जैक्टली संध्या एंड सुहानी टाइम बहुत ज़्यादा वाला हो गया।
1: यस,
0: तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर एक ब्रेक की ओर, और ब्रेक के उस पार आएंगे, तन्वी का मैसेज पढ़ेंगे, एंड हम बातें करेंगे कुछ प्लांटिंग को लेकर के, कुछ प्लांट्स को लेकर के।
1: yes,
0: तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और आज हमारे साथ में है हमारी दोस्त सहेलियां यानी संध्या एंड सुहानी एंड ट्रिपल एस वाली। आज हमारी मिस्ट्री चल रही है और ट्रिपल एस मिस्ट्री में टाइम हो चुका है आपसे टाटा बाय बाय करने का, लेकिन आज प्लांटिंग को लेकर के कुछ हम बताने जा रहे हैं आपको कि पौधे धरती के फेफड़े होते हैं, आपको पता है?
4: यस मैम।
3: और हमें वो ऑक्सीजन देते हैं।
4: हाँ ये बात है ना।
3: अब बताओ कितनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कोरोना टाइम पर।
4: बहुत ज्यादा मैम।
3: क्यों हो गया था? क्योंकि सारे पेड़ जो काटते जा रहे हैं लोग, सड़कों के किनारे बड़े शहरों में देखो सब पेड़ काटते जा रहे हैं।
4: यस मैम,
3: है ना। और एक पेड़ अपने जीवन काल में हजारों लोगों के लिए शुद्ध हवा का एक माध्यम बनता है।
4: यस मैम।
3: पौधे वातावरण को ठंडा रखने और प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पौधों की देखभाल करने से मन को शांति, खुशी और सुकून मिलता है। और हर पौधा प्रकृति का अनमोल उपहार है, इसीलिए पौधे लगाएं और अपने जीवन को बचाएं।
4: यस मैम।
5: जितना पानी लोग कूलर में डालते हैं उतना अगर पेड़ पौधों में डाल दे तो ऑक्सीजन की कमी।
3: एग्जैक्टली। और आज लगाया गया पौधा आने वाली पीढ़ियों को लाभ भी देगा, ये भी बिल्कुल 100% है ना।
4: यस मैम।
3: जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक छोटा सा पौधा भविष्य में विशाल वृक्ष बन सकता है, एक छोटा सा पौधा।
4: यस मैम।
3: और हर एक पौधा हमारे लिए, मतलब हम लोग अगर पौधे का उनको लगा रहे हैं, उनको कर रहे हैं, तो वो किसके लिए? अपने लिए ना।
4: Yes,
3: अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। लोग कहते हैं यार अब हम पौधा लगाएंगे तो कब जाके हमें मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो उस पौधे को उनके लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं ना।
4: यस मैम।
3: जी हाँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, और हो सकेगा तो हमारी अंशिका कल वापस आ जाएंगी स्वस्थ होकर के, अदरवाइज फिर से हमारी ये सहेलियां होंगी। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संध्या एंड सुहानी जो आज आप शो में आकर के हमारे साथ में हमारा मान बढ़ाया और हमारे लिसनर्स को इंजॉय कराया।
5: मैम इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, आपके साथ आने का
4: हम लोग को अवसर मिला।
3: हाँ। जी तो अच्छा लगा आप लोगों को।
4: यस मैम।
3: चलिए तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
4: बाय, आई लव यू।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
8: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: जी श्रोताओं, एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का आपके पसंदीदा शो यानी कि फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा में। और मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त आरजू आकांक्षा। वक्त हो चला है बाय स्टूडियो क्लॉक 3:06 और ये वक्त है आप सभी की फरमाइशों को कंप्लीट करने का। फिलहाल आज का मौसम जिस तरह से सुहाना हुआ है, जिस तरह से कल गर्मी उफ तौबा मचा रखी थी, हम लोग यहां तक आइसक्रीम खाने के लिए गए। मतलब इतने जुकाम के बाद भी आप सोच रहे होंगे हम आइसक्रीम खा सकते हैं। हां जी, तो बोलते ना जहर को काटता है। तो हम जो अपने भाई साहब के साथ में आइसक्रीम खाने गए, तो पता चल रहा था भाई, एक तरफ ऐसे लग रहा था मुंह धुल के निकले, लेकिन फिर भी पसीने से जो बुरी हाल थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। और आज जो कुछ ही क्षणों की बारिश ने, जो मतलब 12 बजे अभी दोपहर में हुई है, उसने मौसम को कर दिया है खुशनुमा। मतलब कि थोड़ी सी ठंडक का एहसास आप फिर से कर रहे हैं, राहत पा रहे हैं उस गर्मी से जो कि कल आपने महसूस की थी। फिलहाल आप सबको बधाई हो, मुबारक हो भाई, मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है। धूप होते हुए भी बिजली का कड़कना और बारिश का होना, ऐसा मतलब क्या ही बोले, मौसम का बदलना और आपके दिलों पे ठंडक का एहसास पहुंच जाना। और ये ठंडक का एहसास आपको इस वक्त भी होता है जब आप ट्यून के रखते हैं रेडियो गानस्ट 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर अपना फेमस नहीं, जी हां, अपना पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। और इसमें जब आप अपने डेडिकेशन भेजते हैं, अपने पसंदीदा नगमों को भेजते हैं, अपने हालात को कहीं ना कहीं टैली कर पाते हैं इन जज्बातों भरे नगमों से, सदाबहार नगमों से, और इस शो को बनाते हैं आला। फिलहाल चलते हैं सबसे पहली डिमांड की ओर। भाई मौसम बदला है, रुख बदला है, रुख ने करवट लिया है और हमारे पास में इश्क के नाम एक प्यारा सा पैगाम है, क्या बोलेंगे, नगमा आया हुआ है। और ये सॉन्ग है हमारे अंश जी का भट्टा परेड सरकार से। चलिए आज इनकी डिमांड भाई सबसे पहले नंबर पे आई है, वैसे तो काफी दिनों बाद इन्होंने दर्शन दिया है, तो चलिए ट्यून करते हैं इनके नगमे को, आप एंजॉय करिए। फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके हम अमित कुमार जी की। अमित कुमार जी ने भी बड़ी प्यारी सी डिमांड की है, उसके बाद होंगे हमारे एहसान जी और लगातार आप सभी की डिमांड्स होगी। फिलहाल आज के शो का आगाज करते हैं इस प्यारी सी डिमांड के साथ में, और डिमांड किसी और की नहीं है, ये डिमांड है हमारे अंश जी की फ्रॉम भट्टा परेड सरकार गोंडा। एंजॉय द ट्रैक, आते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक के साथ में।

राजे दोस्तों, वैसे तो मैं जानना चाहूंगी कि ये इश्क का रंग सफेद होता है, लाल होता है या गुलाबी? भाई बोलते हैं कि सारे ही कलर कहीं ना कहीं इश्क के होते हैं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से देना चाहेंगे तो कौन सा कलर बताएंगे? हम आप सभी से जानना चाहते हैं, फिर हम बताएंगे कि एक्चुअल में इश्क का कलर क्या होता है। फिलहाल ये ट्रैक अंश जी की डिमांड पे, और हम ये गाना डेडिकेट करेंगे अपनी मोहब्बत।

हाँ श्रोताओं, जब तक आप जवाब देते हैं हम आएंगे चैट बॉक्स की ओर, तब आप लोग के जवाब जरूर लेना चाहेंगे कि इश्क का रंग क्या होता है, लाल, सफेद या गुलाबी। खास करके इन्हीं तीनों पर फोकस किया जाता है, फिर मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में इश्क का रंग क्या होता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड थी अंश जी की बड़ी ही खूबसूरत सूफी सॉन्ग अभी आपने एक प्यारा सा एंजॉय किया अरिजीत जी की आवाज में। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे पास में आई हुई है अमित कुमार जी की ओर से। फिर एहसान जी की बारी और नेक्स्ट डिमांड देन होगी हमारी ममता कसौधन जी की। एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में आपके अपने फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा को।

बात है भाई अमित कुमार जी, आपने तो हमें थिरकने पे मजबूर कर दिया। मन डोले मेरा तन डोले और ऐसा वाला डोले डोले हो गया और बड़ा मजा आया, एंजॉय किया हमने इस गाने को और आप सभी जवाब देने में मशरूफ हो गए। क्या बात है भाई, हमने तो गाना एंजॉय कर लिया। अभी बढ़ेंगे हम एहसान जी के डिमांड की ओर और फिर आएंगे हम अपने ममता कसौधन जी की डिमांड की तरफ और फिर देखते हैं किसने क्या जवाब दिया। इश्क पे अगर बात आती है तो कौन क्या क्या अपनी तरफ से दिखाना पसंद करता है।

एहसान जी आपके गाने को काफी पसंद किया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्यारे से नगमे को हम तक पहुंचाने के लिए। और हमें लग रहा है सबके सब दिल तोड़ो आशिक हुए पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के फीडबैक का। वैसे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में ममता कसौधन जी की, जो कल रह गई थी और आज इन्होंने हमको फिर से याद दिलाया कि भाई हमारी डिमांड है। तो चलिए ट्यून करते हैं इनकी डिमांड को, आप सभी तक पहुंचाते हैं। अगर किशोर दा की मोहब्बत के नगमों में कोई बात कही जाएगी तो सबसे पहले जुबान पे यही लिरिक्स आपके आएगी, और वो गाना क्या है आइए सुनिए, एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में ये प्यारा सा नगमा।

जी श्रोताओं, और मैं आपको कह दूं कि अगर मुझे भी मोहब्बत के नगमों में अगर किशोर दा की कोई गाने को पसंद करने को कहे तो मेरे जुबान पे सबसे पहले यही गाना आता है, और उम्मीद है कि आप सभी के जुबान पे भी यही गाना आता होगा। फिलहाल बढ़ेंगे हम आप लोगों के मैसेजेस की ओर, और मैसेजेस में जो हमें दिख रहा है वो है हमारे कुमार टेलर साहब जी आ गए हैं गौरा चौकी से। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से। तन्वी शुक्ला जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और साथ ही में हमारे बुलबुले कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और अब्दुल मुजीम साहब जुड़े हुए हमारे साथ में अहमदाबाद से। वो रुला कर गया अब मुस्कुराने की बात करता है, खुद ही आग लगा कर बुझाने की बात करता है। ओहो, जिसने तोड़ दिया मेरा दिल एक पल में, वही अब फिर से दिल लगाने की बात करता है। क्या गजब की लाइन भेजी है, बहुत मजा आ गया पढ़ के, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में है हमारे नागेश्वर धाकर जी, यानी कि बीरबल जी हमारे रतलाम की गलियों से। लिखते हैं रानी साहिबा को बीरबल का नमस्कार आदाब। नमस्कार आदाब, और आपका खैर मकदम बना रहे, बस यही इतना कहेंगे आपसे, शुक्रिया। ममता कशौधन जी हमारे साथ में बनी हुई हैं, और मनी शर्मा जी भी आ गए हैं खुरासा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दरक्षा अंसारी जी हमारे साथ में बनी हुई है सीतापुर से। गुड आफ्टरनून डियर गुलाबो, गुड आफ्टरनून डियर। और साथ ही में इनका जो एक इमोजी का परंपरा रहा है उन्होंने निभाना, बिल्कुल नहीं छोड़ा है, एक हार्ट और एक प्यारा सा गुलाब अपने बगीचे का, थैंक यू सो मच। और मनी जी ने बता दिया भाई ग्रीन कलर का होता है दिल।

जी को ये हरा कलर काफ़ी पसंद आया है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट मैसेज की, तो हमारे पास में प्यार को लेकर के रंग की अगर बात करें तो मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी ने भी भाई बता दिया है, जो मैं एलबीएस चौराहे से सुनते हैं गुंडा से, रेड कलर। ओके, और नेक्स्ट की अगर बात करें तो नीना जी का कहना है इश्क का रंग पानी होता है, क्योंकि इश्क पे सब मिलकर पानी फेर देते हैं। क्या बात है, वाह भाई, ये हमको सबसे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, इतना इतर जाके सोचने के लिए, बहुत खूब। और नेक्स्ट मैसेज की अगर बात करें तो धर्मेंद्र मोहन भारती जी हमारे साथ में बने हुए हैं, आपका भी स्वागत है। मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी लिखते हैं, इश्क या प्यार का कोई एक तैरंग नहीं होता, बल्कि ये भावनाओं के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए इसे अक्सर लाल रंग से जोड़ा जाता है, जो गहरे लगाव जुनून का प्रतीक होता है। इसके अलावा प्यार के कई और रंग भी होते हैं। बेशक, आपने सही फरमाया। और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है हमारे पास में, उसकी मुस्कान पर अगर लाखों आशिक मर जाती है तो फिर बॉर्डर पर आतंकवादी को भी तो मार सकती थी। हाँ बिल्कुल मार सकती थी। और इसी मुद्दे पर कल हमसे और रेनू तिवारी जी से बात हुई थी, और हम दोनों ने बहुत, मतलब बात करने के बाद हम दोनों बहुत मुस्कराए थे, आपने वो पल याद दिला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो आप सभी हैं भाई, ये सुगनवा रंग कौन सा होता है, हमें भी कोई सुझाव दीजिए। और इसी बीच में हमारे बीच में दस्तक दे दिया है योगेश शुक्ला जी ने, पंजाब से, बहुत दिनों बाद इनके दर्शन हो रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज काफ़ी दिनों बाद हमें लग रहा है कि आप गोंडा वापस आए हुए हैं, इसलिए आपने मैसेज किया है। ज़्यादातर हमारे लिसनर काम में मशरूफ रहते हैं और गोंडा आने के बाद हमें ज़रूर याद करते हैं, आपका ये मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। धर्मेंद्र मोहन भारती जी का कहना है गुलाबी रंग होता है, इसलिए गुलाबी मौसम लोग ढूंढते हैं। ओके, सर्दियों में गुलाबी मौसम कहा जाता है और सर्दियों को प्यार का मौसम कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल मैं अपने प्यार के रंग को आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी कि मेरे हिसाब से प्यार का रंग क्या है, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करिए इस ट्रैक को जो हमारे पास में आया हुआ है मोहम्मद अजीज जी की ओर से फ्रॉम मुंबई। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, देन आते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ और अपने जवाब।

चुनिंदा सिलेक्शन में से एक और सिलेक्शन हमारे पास पहुंची अजी साहब की ओर से, और इनकी डिमांड बड़ी ही यूनिक सी होती है, मुझे काफी पसंद आती है। थैंक यू सो मच अजी साहब इतनी प्यारी सी डिमांड के लिए। और बढ़ते हैं कुछ और जवाबात की ओर। अब्दुल मजीद साहब का कहना, भैया काला हुआ है यही खातिर क्यों पहचान नहीं पावत है कि इश्क कहाँ के कहा जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रबल मिश्रा जी लिखते हैं, तुझसे इश्क करके आशिकाना हो गया है दिल, कि ना पूछो ये दीवाना हो गया है, तुझको जब से नजरें भर के देखा है ये मौसम और भी मस्ताना हो गया है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला मैसेज। और नेक्स्ट में है

नीना जी ने हमको कुछ भेजा है। ओके जी, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में, मैं ये नहीं पूछूंगी, आप मुस्कुराई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से लगातार कॉल आ रही है, खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो असल में इश्क का ये बात सच है कि कोई रंग नहीं होता, इंसान अपनी भावनाओं के हिसाब से उसको रंग रूप दर्शा देते हैं। लाल रंग जो होता है वो जुनून, गहराई और समर्पण का है, और सफ़ेद रंग पवित्रता, विश्वास और निस्वार्थ प्यार का है। गुलाबी कोमलता, अपनेपन और नए प्रेम का है। पीला अगर देखें तो दोस्ती, खुशी, सकारात्मक ऊर्जा का है। नीला भरोसा, स्थिरता और गहराई का। बैगनी सम्मान, आकर्षण और आध्यात्मिक जुड़ाव का। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों, इश्क का रंग पूछते हो तो इतना जान लो, इश्क का रंग पूछते हो तो इतना जान लो, जिस दिल में उतर जाए उसी का रंग हो जाता है। यही है इश्क का रंग बेशक। तो बस इतना ही कहना था आप सभी से, और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड किसी और की नहीं, हमारे पास में आई हुई है गौरव चौकी से सुरेंद्र यादव जी की। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को 3 से 4 के सफर में। मैं आपकी होस्ट आरजे आकांक्षा, आप शो सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुंडा।

मस्ती है। हाँ जी, तो सुरेंद्र यादव जी ने बता दिया है कि भाई ये कोई और शो नहीं है, दिल वालों की बस्ती है, जहाँ पे दिल से जुड़े हुए नगमे बजाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र यादव जी, बहुत प्यारा सा नगमा था। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है प्रबल मिश्रा जी पंडित जी की, देन होंगी हमारी समरीन जी, और उसके बाद में होंगे हमारे कुमार टेलर साहब, फिर होंगी हमारी पूनम तिवारी जी, अब्दुल मुजीम साहब। अपनी अपनी बारी का सभी इंतजार करते रहे और एंजॉय करते रहे शो कॉलर ट्यून गोंडा को।

बहुत बहुत शुक्रिया जी पंडित जी, बहुत प्यारी सी डिमांड हमें अच्छी लगी और अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। दोस्तों आज बहुत सारी डिमांड आई है और वक्त पता नहीं क्यों हमारे हाथ से ऐसे फिसलता है जैसे हाथों से रेत। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं सबलू सावंत जी मुंबई बोरीवली से, आपको भी शुभ दोपहरिया। और साथ ही साथ में रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से हमारे साथ में बनी हुई है लगातार। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है समरीन जी की। देन आते हैं हम अपने प्यारे लसनर यानी के कुमार साहब गौरा चौकी वाले के डिमांड के साथ।

राजी और समरीन जी को ना जाने क्यों इस गाने से इतनी मोहब्बत है कि जब भी ये डिमांड करती हैं खास कर ये गाना इनके प्लेलिस्ट से जरूर आता है हमारे पास में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये है कुमार टेलर साहब की डिमांड। फिर होंगी हमारी पूनम तिवारी जी, देन होंगे अब्दुल मुजीम साहब, और उसके बाद में मनी शर्मा जी होंगे, फिर होंगे रीत लाल जी, धर्मेंद्र मोहन भारती जी, रईस साहब, सौरभ तिवारी जी, रविंद्र जी, और साथ ही साथ में राजेश मीना जी। इसके अलावा बहुत सारी डिमांड है, और देखते हैं आज कौन कौन की डिमांड हम पूर कर पाई थे, कौन कौन हमारे प्लेलिस्ट से बाहर होते। फिलहाल

की प्यार की दुनिया में पहला कदम ऐसा कहना है हमारे कुमार साहब का, जो हम सुनते हैं गौरा चौकी से। और सब लोग सावन जी कह रहे हैं भैया कि गर्मी के चलते चिलचिलाते मौसम में पसीना और बिजली कटौती से हुए लोग बेहाल, लेकिन आपको बता दें जनाब कि हमारे गोंडा में हुई है बारिश और मौसम बड़ा सुहाना है। मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है, उस गर्मी से थोड़ा सा निजात मिला जो कल थी। और नेहा जी भी आ गई हमारे साथ में बहराइच से, मतलब कि चंगू मंगू की जोड़ी हुई कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हम डेडिकेट करना चाहेंगे क्योंकि मैं मन कर रहा है कर देते हैं। हाँ, ये डिमांड हम डेडिकेट करते हैं अपनी चंगू मंगू की जोड़ी को। फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, जो होगी हमारी अब्दुल मुजीम जी की डिमांड, और फिर होंगे हमारे मनी शर्मा जी फ्रॉम खोरासा। एंजॉय करते रहिए लगातार अपने अपने नगमों को। वैसे ये हमारे फोन का कॉलर ट्यून हुआ करता था कभी, आज बदल गया है। खैर,

क्या बात है पूनम तिवारी जी, आपने हमारा दिल जीत लिया। ये हमारे फोन का कॉलर ट्यून हुआ करता था किसी जमाने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था और इसको डेडिकेशन हमने किया था हमारे चंगू मंगू जी की जोड़ी को। और हमारे पास में एक डेडिकेशन का सॉन्ग आया हुआ है भाई, आज किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो फिलहाल हमने दो अनाउंसमेंट कर दी तो उसको कंप्लीट करते हैं, देन आज पहली दफा उनका कॉल हम तक आया हुआ है, उनके सॉन्ग की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं अब्दुल मुजीम साहब के डिमांड के साथ में और फिर आते हैं मनी शर्मा जी की डिमांड को पूरा करते हैं, देन बताते हैं कि आज किसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और किसके लिए बहुत खास दिन है और हमारी पसंद का उन दोनों जोड़ियों के लिए प्यारा सा नगमा होगा।

और सूफी नगमे का आनंद अभी आपने लिया, और वक्त की कमी के कारण मैं इसको यहीं रोकना चाहूंगी। गाना बहुत प्यारा है, सूफी का कोई भी नगमा आप उठा लीजिए, दिल को एक अलग सा ही ठंडक और सुकून देके जाता है। फिलहाल अब्दुल मुजीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके नगमे काफी उम्दा होते हैं। और अभी हम चलते हैं मनीष शर्मा जी की डिमांड की ओर, और इन्होंने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया है नीना जी को। नीना जी, सुनिए, आपके लिए स्पेशली ये गाना है।

हाँ जी, और इस गाने को मैं यही रोकना चाहूंगी, माफ करिएगा मनीष शर्मा जी, वक्त बहुत कम है मेरे पास में, डिमांड आज ना जाने कितनी है और लगातार अभी कॉल्स आ रही है मेरे पास में। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और नागेश्वर जी का कहना, भाई आपके पिटारे में हमारे लिए कोई सॉन्ग है आज, एक सैड सॉन्ग है आपके नाम, बने रहिए और एंजॉय करिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं उस ओर जिस ओर हमने अनाउंसमेंट किया भाई कि आज है किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, और ये है हमारे अरविंद मौर्य जी, और ये हमें मन का पुर से सुनते हैं। पहली दफा इन्होंने हमें कॉल किया, और अनु मौर्य जी इनकी धर्मपत्नी जी हैं। पहले तो सबसे पहले आप दोनों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी पूरे 89.6 FM की ओर से। और हमारे श्रोतागण भी भाई कह रहे हैं, जैसे कि हमारे योगेश जी हैं पंजाब से, उनका भी कहना है कि आप सभी को आपके वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपने बोला कि हम अपनी पसंद का कोई नगमा बजा दें, तो भाई ये गाना हम स्पेशली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि देखिए रिश्ता तो चलता रहता है और ताउम्र चलता रहेगा, लेकिन उसमें एक घबराहट होनी चाहिए और वो घबराहट ये गाना आपको ज़रूर समझाएगा। और अगर ये घबराहट बनी हुई है रिश्ते में, यकीन मानिए रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। इस घबराहट को अगर अभी तक नहीं बना हुआ है तो बना लीजिएगा, बस इसीलिए स्पेशली ये सॉन्ग आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी पर आपकी अपनी आर्जी आकांक्षा अपनी ओर से प्ले करती है। एंजॉय करिए इस ट्रैक को। फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक लेकर के हम अपने प्यारे लिसनर रीत लाल जी का, और उसमें ऐड करेंगे हम नागेश्वर जी को।

जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः से मैं बधाई देना चाहूंगी अरविंद मौर्य जी को और साथ साथ में अनु मौर्य जी को उनके वेडिंग एनिवर्सरी पर। और बस यही हिदायत दूंगी कि ये डर अपनी जिंदगी में बनाए रखिएगा ताकि आपका प्यार जमा रहे, जिंदा रहे और ताउम्र यूं ही बना रहे। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाइल डिमांड की ओर और ये डिमांड हमारे रीतलाल जी की इलाहाबाद से जो हमें सुनते हैं। और इसी में हम ऐड करते हैं अपने नागेश्वर ढाकर जी को रतलाम की गलियों से। भाई हमें लगता है कि हमारे नागेश्वर जी को ये गाना पसंद आएगा।

बेशक एक सच्चे दिल को अगर ठुकरा के कोई जाता है तो ऊपर वाला फिर उसे दूसरा दिल नहीं देता है। किसी के दिल में घर करने को कितनी दफा कोई किसी का दिल तोड़ेगा। एक आह अगर निकली है तो फिर ऊपर वाला भी तो बैठा है ना कहीं ना कहीं। फिलहाल इट्स कुमार साहब आ गए एमपी रीवा से और इनका कहना तुम मेरे बाद गोलगप्पा खाने को तरस जाओगे। बिल्कुल, आप ही तो हमारे गोलगप्पे का खर्चा उठाते भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। और इनके जितने भी दोस्त यार हैं उनके नाम भी ये पैगाम है, मुझे ऐसा लग रहा है। माफ करिएगा, थोड़ा सा मजाक मुझसे हो जाता है। और अमित चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं दिल्ली से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी बढ़ते फटाक से नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है धर्मेंद्र मोहन भारती जी की आवास विकास कॉलोनी गोंडा से। फिर आते हैं रईस साहब की रईसियत से निकला हुआ रईस मूवी से ही एक सॉन्ग लेकर के। फिर नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे सौरभ तिवारी जी की। भाई सौरभ तिवारी जी, आपने बहुत ही अच्छी सी डिमांड की है, थैंक यू।

जी हाँ, और वीरू जी के साथ में हेमा मालिनी जी की जोड़ी पे फिल्माया गया ये गाना। अभी आपने एंजॉय किया धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड पे, और अभी हम बढ़ते हैं रई साहब की डिमांड के साथ में। 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय कर रहे हैं कॉलेज उनगोना को विथ योर आरजे आकांक्षा। नेक्स्ट डिमांड हम लेके आएंगे सौरभ तिवारी जी की। भाई बड़ी ही प्यारी सी मूवी है, और भाई पहले सुन लेते हैं।

ना, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी रही साहब, बड़े दिनों बाद इसको हमने अपने कानों में अनुभूति किया, इस नगमे का बहुत बहुत शुक्रिया, काफी सुकून सा महसूस हुआ मुझे गाना सुन के, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो है सौरभ तिवारी जी की डिमांड, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ जो कि मे भी होगी रविंद्र जी की लास्ट डिमांड होगी आज के शो की, और अगर वक्त रहा तो राजेश मीना जी मैं आपका सॉन्ग जरूर लूंगी।

बेहद उम्दा डिमांड थी, मजा आ गया सुन के। काफी दिनों बाद इसको भी हमने एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। और आज की लास्ट डिमांड लेंगे, माफ करिएगा राजेश मीना जी, हम वक्त की कमी के कारण आपका सॉन्ग नहीं ले पाएंगे और माफीनामा जारी करते हैं। राजेश मीना जी आपसे माफी। और लवली सिंह जी हैं, प्रिया तिवारी जी हैं, आदिल साहब हैं, रितेश जी हैं, रेणु तिवारी जी हैं, मोहिनी तिवारी जी हैं, मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हैं, काजल जी हैं, दुर्गा जी हैं, और इसी के साथ में राजू सलमानी जी उर्फ रॉबिन हुड जी के साथ में मोहम्मद रफीक साहब हैं, और कुछ कॉल्स आई जो मैं उठा भी नहीं पाई। इतनी सारी डिमांड्स आज रह जाएंगी। आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया, लेकिन एक घंटे में मैं क्या ही क्या कर सकती, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपकी डिमांड हम तक पहुंची, ये देख के मुझे काफी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रहे। और आज की लास्ट डिमांड हम लेते हैं जिनकी, उनका नाम भी बता देते हैं आप सभी को। तो आज की लास्ट डिमांड है हमारे रविंद्र जी की, और चलते हैं इसी के साथ में अब आप लोगों से बाय बाय बोलते हैं। शाम में मिलते हैं आज के, जी हाँ, बॉलीवुडिया शाम में हाजिरी जरूर लगाइएगा। सॉरी, भोजपुरिया शाम होगी, बॉलीवुडिया नहीं। तो अपनी अपनी फरमाइशें तैयार रखिएगा 7 बजे से, लेकिन बहुत ही डिसेंट सा प्यारा सा नगमा लाइएगा, अदरवाइज हम मुखड़ा भी नहीं प्ले कर पाएंगे, आप सभी जानते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं शाम के शो में आप सभी से, लेकिन उससे पहले खेत खलियान है, वहाँ भी हम ही हाजिर रहेंगे, मौजूद रहेंगे। अपने सवालों के साथ तैयार रहिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत इस शो से, सुनते रहिए रेडियो गाने से 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मैप है
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना, दिल्ली को पार कर दूं।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: और देशवा की माटी तो बिल्कुल से बहुत ही सुगंधित होती है और कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती है हमसे, आपसे और हम सभी के मन से। और जब बात आती है अपने देश की तो हम सब कुछ भूल के केवल और केवल एक देशभक्त नजर आते हैं। मतलब जात धर्म बाद में आता है और कई जगह पे आज भी विवाद चलते रहते जात धर्म को लेकर के, लेकिन जब देशभक्ति की बात आती है तो हम सब एकजुट हो जाया करते हैं। और देश की धरती को अगर नमन करना हो तो हमसे बढ़ के फिर कोई आगे नहीं देखता है और ना ही हमारे आगे कोई टिकता है। फिलहाल आपका वक्त हो गया आपके अपने शो का और मैं घड़ी देख रही हूँ, घड़ी में बज गए पूरे 5:11, यानी कि आज है दिन गुरुवार और शो है आपका खेत खलिहान। जी हाँ, गुरुवार स्पेशल खेत खलिहान लेके आपकी होस्ट एंड दोस्त हाजिर है, यानी कि आपकी अपनी आज आकांक्षा। और हमारे साथ में हमारे बतौर को होस्ट है इरफान शाह जी। चलिए फिलहाल इनका हम स्वागत कर लेते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या हाल चाल है इनके। इरफान जी,
1: सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे किसान भाई बहनों को, क्योंकि आज का जो दिन होता है वो खेत खलिहान प्रोग्राम होता है, किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है जिसमें किसान जुड़ते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ से सीधे अपने प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि शाम जो होता है 5 बजे वो स्पेशल होता है और विशेष अतिथि के रूप में हैं आज डॉक्टर करुणेश कुमार दुबे सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और विषय जो है वो हीट वेव है, यानी लू के दौरान दुधारू एवं गर्भावस्था में पशुओं का आवास प्रबंधन एवं सतत दूध उत्पादन हेतु वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कैसे करें।
0: जी हाँ, और पिछली दफ़ा भी हमारे साथ में सर मौजूद थे और काफ़ी मज़ा आया था इनसे बात करके। भाई बोलते हैं ना कि अगर आपको सागर से मोती चुनना है तो आपको सागर के अंदर उतरना पड़ेगा, उसी तरह से बहुत ही प्यारी शख्सियत रखते हैं सर अपने आप में। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना सब कुछ अचीवमेंट होने के बाद भी बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ सर रहते हैं, और जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था लास्ट टाइम भी, उस दफ़ा भी मैं बिना इनकी तारीफ़ किए रह नहीं पाई। और ये कहीं ना कहीं गोल्ड मेडलिस्ट हैं और साथ ही साथ में इन्हें राज्यपाल पुरस्कार भी प्राप्त है और यूपी में इन्होंने पहली श्रेणी प्राप्त की है। किस में सर, आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा इंट्रो दें हमारे श्रोताओं को।
2: हाँ, किसान भाइयों, जो एक परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश की कंबाइन एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट की, यूपी कैटेट के नाम से जिसे जानते हैं, तो उसमें मेरा जो है 2019 में पूरे प्रदेश में पहली रैंक थी।
0: जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप इसके लिए। और फिलहाल आज का जो विषय है वो हमारे बीच में हमारे बतौर एक्सपर्ट महोदय हैं डॉक्टर करुणेश कुमार दुबे जी, जैसा कि हमारे इरफान जी ने बताया, और LBS डिग्री कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात भी हैं। और हीट वेव, चूँकि आजकल लू चल रही है और कल ही अभी लू चल रही थी, आज तो फिलहाल दोपहर 12 बजे काफ़ी मतलब बारिश तगड़ी हो गई और इरफान जी का तो मानना था भाई इस तरह से बारिश हुई तो हम यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, क्यों जी इरफान जी?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय 3 बज रहा था घड़ी में, हमें लगा कि हम स्टूडियो कैसे पहुंचे, लेकिन उस समय फिर मौसम सफा हो गया, हम स्टूडियो पहुंच गए।
0: ओहो, मौसम हुआ सफा और हर रोग हुआ दफा, क्यों जी?
1: कभी कभी क्या होता है कि मौसम जब खराब होता है, देखिए बारिश जब आता है तो कहीं ना कहीं चुनौती भी लाता है अपने साथ में। देखिए जब बारिश की बात हो गई है तो आपको पता है जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो कहीं गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत भी होती है।
0: बेशक बेशक, फिलहाल चलते हैं आज हम अपने विषय की ओर, और ये बहुत ही जरूरी विषय भी है क्योंकि हीट वेव खाली हम लोगों के लिए नहीं होता, हीट वेव माने लू। लू खाली हम इंसानों को नहीं लगता, इस दौरान हमारे जानवर भी इससे, जो हमारे पशुधन होते हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। और दुधारू व गर्भावस्था पशुओं का आवास और प्रबंधन और साथ ही साथ में सतत दुग्ध उत्पादन हेतु वैज्ञानिक तकनीक का अनुप्रयोग के साथ में मौजूद है आज हमारे बीच में करुणेश कुमार दुबे जी। जी हाँ, तो चलते हैं इन्हीं की ओर और इनसे अपना पहला प्रश्न रखेंगे। उससे पहले हम कहेंगे कि इरफान जी, क्या लगता है ये जो लू है उसकी मार हम कितना खा रहे हैं आजकल, और क्या जानवर हमसे ज़्यादा खा रहे हैं या हमारे हिसाब से, मतलब तुलना अगर करें इंसान और जानवरों में तो ज़्यादा मार इसकी कौन खा रहा है?
1: देखिए अगर देखा जाए तो दोनों लोग मार खा रहे हैं। अभी ये जब गर्मी का सीजन चल रहा है इस समय अगर तनिक भर चूक होती है तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आने से लू लग जाता है, और जब लू लग जाता है तो चाहे मनुष्य हो चाहे हमारे पशु हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। देखिए कभी कभी इतना उनको भी बुखार हो जाता है या उनके भी जो पेट है ख़राब हो जाते हैं। आदमी भी जब गर्मी में जाता है तो उस समय क्या है कि टेम्परेचर जो है बहुत हाई ले, मतलब अभी इस समय देखिए टेम्परेचर जो था वो 40 से 42 डिग्री जा रहा था, 44 डिग्री तक भी गया है कुछ जगहों पर टेम्परेचर,
0: अरे 50 तक भी गया है। और आपको बता दें कि हमारे MP वाले जितने लिसनर्स और राजस्थान इनके सीमा पे जहाँ भी ये लोग रह रहे थे 55 तक का गया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, देखिए कितना मतलब वो चिंता का विषय है।
0: बहुत ज्यादा।
1: और कहीं ना कहीं देखिए आज जो है वो 4 जून है और आज क्योंकि ये टेम्परेचर की बात हो रही, गर्मी की बात हो रही है, तो हम लोग को एक सबक लेना चाहिए, एक सीख लेना चाहिए कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, लगातार हर चीज, मतलब हम कहीं ना कहीं विकास की ओर तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कल जो है वो है 5 जून। और एक निवेदन है सभी लोगों से हमारे कि जरूर एक पेड़ जरूर लगाएं, मतलब
0: 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और बहुत ही नेक बात की आपने, याद दिला दी हमें और चर्चा कर ली है। फिलहाल मेरे पास में एक कॉल आ रही है, तो देखते हैं हमारे साथ में कौन जुड़ गए हैं और इनका क्या समस्या है इनके पास में। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं सर।
3: कुशल पाल तिवारी, उसैना रुबई जी, गोंडा
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर आपके खेत खलिहान कार्यक्रम में। क्या आज आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट महोदय से?
3: सबसे पहले आपको और श्री दुबे जी को तथा भाई इरफान को मेरे तरफ से नमस्कार स्वीकार हो।
0: जी, सभी की ओर से नमस्कार आपको।
3: उसके बाद में दुबे जी से मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो अभी आज जो आपने गीत बजाया वो देश की माटी वाला, वो बहुत पसंद आया।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा आपने हमसे बोला भी था कि ये गाने में थोड़ी सी कमी थी और आज का आपका फीडबैक मिला तो हमें काफी अच्छा लगा, शुक्रिया सर।
3: मैंने वो गीत बहुत बढ़िया था।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: उसके बाद में दुबे जी से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई पशु है, जैसे गर्मियों का सीजन तो चल ही रहा है
0: जी,
3: इनको जैसे पशु गर्भावस्था में है 2-4 महीने की, तो वो तो हम लोग सब कर ही लेते हैं, जैसे ये देखते हैं कि कहाँ धूप है, कहाँ छाँव है, बांधने का तरीका, ये सब तो फिलहाल किसान जानते हैं। लेकिन दुबे जी से मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि गर्मियों में पशु की आहार व्यवस्था कैसी हो, और ये प्रश्न साथ में और पूछना चाहता हूँ दुबे जी से, जैसे थोड़ा विषय से हटकर है
0: जी जी
3: दुबे जी, लेकिन फिर भी दुबे जी जैसे प्रदेश में सन 2019 में नंबर 1 पे आए थे, तो कुछ अपना अनुभव साझा करेंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, प्रश्न रखे सर।
3: तो प्रश्न ये रखना चाहता हूँ कि जैसे कोई किसान अगर कोई पशु व्यवसाय जैसे 2-4 गाय पालना चाहता है, आर्थिक तंगी में है, तो कोई सरकारी योजना भी है जिससे कुछ उसकी मदद हो सकती है पशुपालन में?
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, यही दोनों सवाल थे। और कुछ है
3: और अगर हो सकती है तो इसके लिए क्या करे, कहाँ कहाँ आवेदन करे, कुछ इस प्रक्रिया के बारे में अगर दुबे जी जानते हो तो थोड़ा बहुत बताए। बाकी ये जो गर्मियों में खास करके गर्भिणी गाय की आहार व्यवस्था के बारे में दुबे जी जरा बढ़िया ढंग से बताओ तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रश्न ले लिया गया है, इंतजार करें आपको जवाब जरूर मिलेगा, शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे बीच में हमारे कुशल पाल तिवारी जी, और सर मैं चाहूंगी कि आप इनका जवाब दे दे पहले, फिर हम अपने विषय की ओर आएंगे वापस से।
2: देखिए जैसे तिवारी जी का, हमारे किसान भाई जो हमारे पहले कॉलर थे जुड़े, इनका पहला प्रश्न ये था कि जो गर्भस्थ पशु हैं तो उनका हम गर्मी के मौसम में कैसा प्रबंधन करें। तो इसमें जो है हम थोड़ा सा, चूँकि ऐसे ही बहुत सारे किसानों के मन में जुड़े हुए ऐसे ही सवाल होंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान, 1901 से पूरे ऑल ओवर इंडिया का, पूरे भारत का डेटा मौसम से संबंधित रख रहा है, उस मौसम के डेटा के हिसाब से जो इससे पहले जैसे 26 में हम लोग हैं, 2024 का जो वर्ष रहा है वो भारत का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष अभी तक घोषित किया गया था 2024 को। मतलब ये डाटा है 1901 से लेकर के अभी तक, मतलब आपको ये समझना है कि 2024 जब गर्म रहा, और अभी जो ये 2026 है, इसको जो IMD का फिर से जो मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान के जो रिकमेंडेशन है, जो सलाह है, वो ये कहती है कि ये इस बार भी जो है कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक जैसे मौसम विज्ञान की भाषा में एक टर्म होता है अलनीनो इफ़ेक्ट, तो इस बार अलनीनो ना करके सुपर अलनीनो इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो जो बारिश का पैटर्न होगा, यानी जहाँ से हमको गर्मी से राहत मिलती है, तो 92 जैसे 100% बारिश का, 100% बारिश की जगह इस बार सिर्फ 92% ही बारिश होनी है, यानी 8% बारिश की संभाव्यता कम अभी तक आंकी गई है। अभी हालांकि ये जो मौसम अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम थोड़ा ऐसे मतलब बिना मानसून के जो बारिश हो रही है, तो इससे थोड़ा सा राहत हमको ज़रूर मिली है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही 25 मई से लेकर के और ये 3 जून तक ये नौतपा का सीजन था जो भगवान ने हमको बारिश के दे करके और उससे हमको राहत मिल गई। अब क्वेश्चन, जैसे उनका जो मेन क्वेश्चन था कि हम प्रबंधन कैसे करें, मतलब मैंने डेटा आपको इसलिए बताया कि अब हम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे 1901 से लेकर के सबसे गर्म जो साल था वो 2024 था, 2026 उससे भी चैलेंजिंग है। तो अगर हमें किसी खतरे का अंदेशा पहले से हो जाए तो हम उसका प्रबंधन करके उससे निजात पा सकते हैं। तो हमें जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो इन प्रश्न था उस पर हम बात करें तो उसके प्रबंधन के लिए हम जैसे आवासीय प्रबंधन में किसान लगभग चीज़ें जानते ही हैं, लेकिन हमें मेन है उनके चारे में बदलाव कर देना है
0: जी।
2: और उस चारे में बदलाव जैसे ये है कि हम उन्हें धूप में चारा ना दें। चारा देने का समय हम उन्हें, आप ये समझिए कि सभी किसान भाइयों सलाह है कि 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में बिल्कुल कुछ खिलाएं ही नहीं, लेकिन बीच में पानी पिलाना है। ताज़ा पानी जो है वो जितना पशु पी पाए उसे जो है हम असीमित मात्रा में हमें उसे बार बार ऑफर करना है, बार बार देते रहना।

0: कि हरे चारे की मात्रा बढ़ा दें। हरे चारे की मात्रा जब बढ़ा देंगे तो चूंकि वो रसीला चारा होता है, जैसे मक्का हो गया, जई हो गई या लोबिया आ गई है, तो रसीले चारे को खिलाना है। दूसरी चीज़, हम जिन भी चारों को खिलाएं उनको उनकी चॉफिंग करके, उनकी जो है उनको काट करके खिलाएं, मतलब कुट्टी काटना या मशीन से काट करके खिलाएं। दूसरा, तीसरा चीज़ ये है कि हम उसमें दाने के मिश्रण को बढ़ाते हैं। जैसे अभी तिवारी जी का प्रश्न था कि जो है गर्भस्थ है, पशु गर्भस्थ है, तो गर्भस्थ के स्थिति में हम दाने की मात्रा बढ़ा देंगे। अब दाने की मात्रा बढ़ाने का फायदा ये होगा कि दाना जो होता है मात्रा में कम होता है, लेकिन ऊर्जा, उसकी एनर्जी वैल्यू जो ऊर्जामान होता है, ज़्यादा होता है। तो हम जैसे कुछ भी जानवर को खिलाते हैं तो वो उसके शरीर में पचने के दौरान गर्मी को पैदा करता है, हीट जनरेट होती है। तो जब हम हाई न्यूट्रिटिव, जो जो उच्च पोषकता वाले दाने हैं, अगर हम उनको खिलाते हैं तो उतनी गर्मी नहीं पैदा होगी। मतलब गर्मी तो पैदा होगी लेकिन थोड़ी सी ही चीज़ पच रही है और पशु को ऊर्जा ज़्यादा दे रही है। तो हमें गर्मी में दाने के मिश्रण की मात्रा को भी बढ़ा देना है। और एक मार्केट में आपको मिलेगा बाईपास फैट और ये मिनरल मिक्सचर, तो इन चीज़ों को ज़रूर पिलाएं। और अगला ध्यान ये रखना है कि जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं हमें उसे खिलाना है, जैसे जौ का दलिया। जैसे जब हम दलिया खिलाते हैं तो दलिया में और अनाजों के अपेक्षा हम जौ का दलिया उसको खिलाएं, चोकर खिलाएं। और किसानों में एक भ्रांति ये होती है कि जो खली होती है वो गर्म होती है। किसान ये मानते हैं कि अगर हम सरसों की खली खिलाएंगे, बिनौले की खली खिलाएंगे तो ये पशुओं को नुकसान करेगा, पोकनी रोग हो जाएगा, इस तरीके से।
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसानों की भ्रांति है। खली खिलाने से खली की तासीर ठंडी होती है, उसे गर्मियों में ज़रूर देना चाहिए। तो ये किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि खली की तासीर जो है, वो चाहे बिनौले की खली हो या सरसों की खली हो, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसको भी हम उसमें शामिल करें। और पानी और नमक का जो है ये विशेष प्रबंध रखें, मतलब हम पानी और पानी में थोड़ा सा नमक, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 24 घंटे में उसे हर कंडीशन में 50 ग्राम नमक किसी न किसी रूप में ज़रूर दे देना है। क्योंकि कारण ये होता है कि जब श्वेटिंग होती है, पशुओं की भी ग्रंथियों से पसीना निकलता है जब, या जब वो पैंटिंग करते हैं, हाँफते हैं, या जब सलाइवेशन होता है, उनकी लार टपकती है, तो हमें ये ध्यान देना है कि लार का, जैसे हम खुद महसूस करते हैं कभी ना कभी ऐसा होता है, लार नमकीन होती है। तो लार नमकीन होने का कारण कि हमारी जब पशु लार टपका आता है तो उसमें से सोडियम और पोटेशियम के रूप में शरीर के नमक का क्षरण हो जाता है, यानी शरीर से नमक बाहर निकल जाता है। लेकिन शरीर का जो फिजियोलॉजी है, जो शारीरिकी है, शारीरिकी का क्रम अच्छे से बना रहे, तो इसके लिए सोडियम और पोटेशियम की हमें बराबर उसकी हमें प्रतिपूर्ति करते रहना है। तो इसलिए अगर वो लार टपका रही है या हाँफ रही है बार बार, और चूंकि मौसम ऐसा है कि हाँफेगी जरूर, लार जरूर टपकाएगी, तो हमें नमक का भी प्रबंधन, यानी मिनिमम जो है 50 ग्राम नमक हमें जानवर को 24 घंटे में जरूर देना है।
1: जी, और इनका एक और सवाल था कि क्या सरकार की तरफ से कोई मतलब योगदान मिल रहा है हम किसान भाइयों को, ताकि हम अपना, जो नए लोग हैं पशुपालन करना चाहते हैं, वो उसके लिए आगे बढ़ सके।
0: हाँ, इसमें जो है एक NLM है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत भी पशुओं को पशु खरीदने के लिए जो है
1: सब्सिडी
0: मिलती है। और सब्सिडी की मात्रा आप समझिए कि 20 से लेकर के 50% है, वो उनकी कैटेगरी पर, वो किस कैटेगरी से, किस जाति से आते हैं उस पर। अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो आपको 35-45% तक की जो है सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सामान्य जाति के हैं तो आपको 16-22% तक है। और जो योजना का नाम जैसे कुशल तिवारी जी का था कि योजना सरकार की, तो एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारे यहाँ पूरे भारत में चल रहा है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में गायों के लिए और भैंसों के लिए, या इन दो पशुओं के लिए हमको जो है मतलब ये सब्सिडी मिलती है। और स्कीम का नाम है नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है
1: जी।
0: और इसमें आपको 10 पशुओं के लिए जो है अनुदान दिया जाता है। उसमें ये है कि आपके खाते में 10% मार्जिन मनी है होनी चाहिए। जैसे 25 लाख का लोन करवा रहे हैं आप
1: जी,
0: तो 25 लाख का 10% आपके खाते में पहले से होना चाहिए। यानी मार्जिन मनी होना चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए आप, आपका जो है अनुभव होना चाहिए, आपके पास पशुशाला होनी चाहिए और आपके पास गारंटी के लिए कोई चीज होनी चाहिए।
1: मतलब कि अगर आप योग्यता नहीं प्रमाणित करते हैं तो आपको अनुदान नहीं प्राप्त होगा। आप अपनी योग्यता दर्शाएंगे तभी आपको सरकार से उसके लिए अनुदान प्राप्त होगा।
0: जी, क्योंकि हम बैंक मैनेजर को लोन लेने जब जो है कर्ज के लिए आवेदन

0: करते हैं तो वहाँ पे हमें अपना प्रस्ताव दिखाना पड़ता है और उसमें एक एस्टिमेट दिखाना पड़ता है कि हम इतने पशुओं से आपका लोन इस विधा से वापस कर देंगे इतने दिनों में।
1: विषय काफी अच्छा था और सर ने बहुत ही डिटेल में आपको जवाब दिया। कुशल पाल जी, उम्मीद है आपके साथ में हमारे बाकी किसान भाइयों को भी उन तक ये जानकारी पहुंची होगी। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फिलहाल के लिए चैट बॉक्स में हमारे गोंडा के प्रेमी एक लोग हैं और उनका नाम ही है आई लव गोंडा। और इसके अलावा एक लोग और जुड़े हुए हैं हमारे प्यारे लिसनर जिनका नाम है सुशील यादव। ये हमें सुनते रहते हैं, बहुत कम दिखते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो अपना सवाल लाते हैं और आज भी इनका सवाल है सर आपसे। ये जानना चाहते हैं खड़िया खिलाने से क्या फ़ायदा होता है जानवरों को।
0: खड़िया खिलाना जो है, हम खड़िया का बहुत उपयोग नहीं है। खड़िया से बेहतर ये होता है कि जैसे जो मार्केट में कहीं भी अंडे की दुकान हो तो जो अंडे का सबसे ऊपरी सेल वाल होता है या उस अंडे की जो खोल होती है पर कवच बोल सकते हैं,
1: जी वाइट
0: तो,
1: वाली
0: हाँ वाइट वाली, तो वाइटिस जो परत है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। खड़िया भी किसानों के खिलाने का ये उद्देश्य होता है कि शरीर में कैल्शियम की, चूँकि जो शरीर की बनावट है हड्डियों का जो मेन फ्रेमिंग है तो वो कैल्शियम से और फास्फोरस से, इन दो तत्वों से मिल करके बनी होती है
1: जी।
0: तो कैल्शियम, चूंकि अगर कोई भी जानवर दूध दे रहा है
1: जी,
0: तो जो मिल्क का संगठन होता है उसमें कैल्शियम हर कंडीशन में 0.7% मिनरल्स जो है मिल्क में पाए जाते हैं। आप जानवर को मिनरल्स खिलाते हैं तब भी दूध का एस परसेंटेज वो 0.7 होगा। आप जानवर को मिनरल्स नहीं देते हैं तब भी दूध का जो मिनरल परसेंटेज होगा तब भी वो 0.7% होगा। अगर हमने जानवर को मिनरल्स नहीं खिलाया फिर भी दूध में तो मिनरल आ रहा है, तो दूध में वो मिनरल आ कहाँ से रहा है? तो वो ये माना जाता है कि जो शरीर, अब शरीर का क्षरण हो रहा है, हड्डियों का क्षरण हो रहा है, मतलब जो भी उसके बॉडी में पहले से जमा है जो मिनरल्स वो ख़त्म होते रहते हैं। तो लेकिन जब उसके शरीर में जमा हुए खनिज खत्म हो रहे हैं, मिनरल्स खत्म हो रहे हैं, तो उसके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। एक बीमारी होती है मिल्क फीवर की, दुग्ध ज्वर। तो दुग्ध ज्वर, अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो दुग्ध ज्वर हो जाता है। ये पार्चुरेशन मतलब पशुओं के बच्चा देने से एक हफ्ते बाद ये हो जाता है,
1: हर हाल में हो जाता है। सर हम तो हमारे यहाँ जब पशु थे मतलब वो 3 दिन या हफ्ते भर तो बीमार ही रहती थी, हमको लगता था कि बच्चा इन्होंने दिया, पालन पोषण हम कर रहे हैं। अभी एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे एक लिसनर है जिनका नाम है शिव कुमार मौर्य जी, तो आप प्लीज व्हाट्सएप कॉल ना करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, हम सर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और हो सके तो आप ऑडियो कॉल करें ताकि हम आपके कॉल को ले सकें और ऑन एयर कर सकें ताकि आपका सवाल सभी जान सकें। फिलहाल बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सवाल के साथ में और आज का विषय काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी डीप में जाके हमको नॉलेज मिल रही है, तो हम भाई ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सर से रखना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर में हीट वेव यानी कि लू क्या है और इसका दुधारू एवं गर्भावस्था पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लू क्या है
1: जी।
0: जैसे देखिए वही हवा जो है हमको कभी अच्छा महसूस होती है और वही हवा हम जो है हम उससे बचते हैं, हम गमछा डाल लेते हैं या दरवाज़ा बंद कर लेते हैं
1: जी।
0: तो मतलब क्या है कि हवा का ही, हवा में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि हम बच रहे हैं? तो हमको समझना है कि लू क्या है। अब लू में भी क्या है कि हमारा पूरा भारत जो है 3 भागों में बटा हुआ है। एक मैदानी क्षेत्र होता है, एक तटीय क्षेत्र होता है और एक पहाड़ी
1: क्षेत्र होता है।
0: हम जहाँ पे बैठे हैं हम मैदानी क्षेत्रों में बैठे हैं
1: जी।
0: मैदानी क्षेत्रों का अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, अगर मैदानी क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो हम मानेंगे कि अब ये लू की स्थिति बन रही है, या जिसको हम इंग्लिश में हीट वेव कहते हैं
1: जी।
0: यानी दूसरे वाक्य में हम अपनी बात को दोहराएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी जिस जगह का तापमान, जो सामान्य तापमान होता है, जैसे हमारे यहाँ का सामान्य ताप जो उत्तर प्रदेश का है वो मानते हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस है
1: जी।
0: अब किसी भी स्थान पर, किसी भी भौगोलिक स्थिति में जो उसके यहाँ का सामान्य तापमान होगा, अगर उस सामान्य तापमान से 5.5 डिग्री से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान का अगर वृद्धि होती है, सामान्य तापमान में, फिर से सुनिएगा, सामान्य तापमान में अगर सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये लू की स्थिति बन गई
1: जी
0: है।
1: सर हम कॉल लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास में कॉल्स आ रही हैं ढेर सारी। हेलो
0: जी, हाँ हाँ
2: हाँ नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें प्लीज सर।
2: मैं शिव कुमार मौर्य किसान वैज्ञानिक रायपुर वजीरगंज गोंडा से बोल रहा हूँ
1: जी। सर स्वागत है आपका गोधुली स्पेशल खेत खलिहान में, आपका क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हैं आप?
2: मैडम हमारे पास एक साहीवाल गाय है
1: जी,
2: तो इस समय गर्मियों का मौसम है और गाभिन भी है, 2 महीने बाद बच्चे देने वाले, तो क्या सावधानियां बरतें, थोड़ा ये जानकारी चाहते।
1: ओके, और कोई सवाल सर?
2: और बस यही है, क्यों एक ही क्वेश्चन।
1: ओके, कितने महीने की गाभिन है सर?
2: करीब 7 महीने हो गए
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इनके सवाल का जवाब दें। इनके पास में एक शाहीवाल गाय है जो बच्चा देने वाली है, 7 महीने की गाभिन है, और इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतें कि बच्चा उनका स्वस्थ पैदा हो।
0: देखिए, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके पास शाहीवाल गाय है। मेरी जो है अपना भी एक सुझाव है कि जो है अगर आप भारतीय देसी गायों को, जो भारतीय नस्ल की गाय है, अगर आप उसके दूध का सेवन कर रहे हैं तो आप, मेरा ये मानना है कि कभी भी उससे, दूध से जनित आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप भारतीय देशी गायों को पाल रहे हैं। ये गायें मेरे संतति के विकास के साथ साथ इनका भी विकास हुआ है
1: जी।
0: तो हमारे अंदर जो हवा माटी जल है वही, उसी से ये भी पली पोषित हुई हैं।
1: और सर अगर मैं देखती हूँ, अपना पर्सनल भी बताऊंगी जानवरों को लेके, तो जो हमारी देसी गाय होती हैं उनका दूध गाढ़ा होता है, पीने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप अगर बाकी फ्रिजियन या अगर दूध बाकी का यूज़ करते हैं तो आपको बाकायदा मालूम होगा कि कितना स्वाद होता है देसी गाय के दूधों में।
0: हाँ बिल्कुल मैडम, ये जो है बिल्कुल यही, और रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जितनी भी कुबड़ वाली गाय होती हैं, जैसे जो हमारे भारत में पाई जाती हैं, इनमें A2 मिल्क पाया जाता है, जो हर की पूरे विश्व में सबसे अच्छा दूध A2 मिल्क होता है, जो सिर्फ भारतीय गायों में यानी कि कुबड़ वाली गायों में पाया जाता है।
1: और इनके पास बुद्धि भी बहुत ज्यादा होती है, और माना जाता है कि बच्चों को खास करके ये दूध पिलाना चाहिए।
0: हाँ, हमारे पुराणों में ये कहा जाता है कि ये अपनी सिंहों द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके और खुर द्वारा ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है, ऐसा हमारे जो है पुराणों में कहा गया है।
1: क्या बात है भाई, अगर आध्यात्मिक रूप से जोड़ा जाए तो बहुत ही ज्यादा आपने गुण बता दिया हमारी गायों का।
0: जी, अब जैसे कि किसान सर का सवाल था
1: जी
0: कि हम जो है 7 साल की हमारी जो है वो शाहीवाल की गाय वो गाभिन है, इसकी देखभाल क्या करें। इसमें आप ये करिए कि जो है एक एंटी स्क्वायर वैक्सीन आती है, वो 7 महीने के बाद ही, मतलब आपका जिस स्टेज में जिस अवस्था में गाय है, एक एंटी स्क्वायर वैक्सीन आप किसी वेटनरियन को बुला करके एक लगवा देंगे। उससे क्या होगा कि जो बछड़ा देने के बाद बछड़े में एक जो है पेचिस की समस्या हो जाती है, तो वो समस्या जो है स्क्वायर की समस्या नहीं होगी, पहली चीज़ है। दूसरा चीज़, इन दौरान चूंकि ये जो सीजन चल रहा है, इसमें खुरपका मुंहपका का FMD का टीका लगता है
1: जी।
0: और एक है जो है लंगड़ा बुखार का, ब्लैक क्वार्टर का टीका लगता है, एक हेमरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोंटू का टीका भी इसी समय लगता है,
1: क्योंकि इसके बाद बरसात आने वाली है।
0: तो लेकिन आपको इसमें ये ध्यान देना है कि सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि उनको ये लेकर के टेंशन होती है कि हम अगर हमारा जानवर गाभिन है तो उसको टीका लगवाएं कि ना लगवाएं। तो हम ये इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके जानवर की गर्भावस्था शुरुआती 3 महीने की है तो हम उसमें किसी भी टीके लो वो लगवाने से बचें। यही चीज़ होता है कि वो अंतिम 4 सप्ताह जब पशु के ब्याने को रह गया है उस समय भी हम टीके लगवाने से बचें। लेकिन जो मैंने ये अभी बताया है कि एंटी स्क्वायर वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये टीका हम इसलिए लगवा रहे हैं कि बछड़े को पेचिस ना हो, बछड़े को जो है किसी भी तरीके की आगे प्रॉब्लम ना हो, तो इस टीके को हम लगवा सकते हैं। और एक जो है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि वैक्सीन 2 प्रकार की होती है, एक लाइव वैक्सीन करके मॉडिफाइड लाइव MLB के नाम से आता है, तो चूंकि हमारे क्षेत्र में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें एक पढ़े लिखे डॉक्टर से ही लगवाना है टीका। और किसी भी कंडीशन में गाभिन गाय को MLB वैक्सीन नहीं लगवाना है, जो लाइव वैक्सीन होती है उनको नहीं लगवाना है, मृत प्राय वाली वैक्सीन को, यानी ऐसी वैक्सीन जो डेड सेल्स से तैयार की गई है उन्हीं से लगवाना है। नहीं तो फिर भले ही वो 7 साल का बछड़ा फर्टस भ्रूण पेट में है उसका एबॉर्शन हो जाएगा। टीके लगवाने में ये सावधानी रखें। और दूसरी चीज़ है कि इस समय की वो जो स्टेज है उसमें हम एक टर्म बोला जाता है कि फ्लसिंग या स्टीम राशन, स्टीमिंग अप करना, तो इस समय उसकी देखभाल और ज़्यादा अच्छे से करनी है। और इस समय उसका मिनरल मिक्सचर और दाना जो है आपको बढ़ा देना है।
1: सर आपने अबॉर्शन की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि आजकल जैसे ये इंसानों में भी बहुत देखा जा रहा है कि बच्चे खराब हो जाते हैं, और जानवरों में भी ये देखने को मिल रहा है कि 6 महीने 7 महीने होने के बाद बच्चे खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए?
0: इसमें देखिए, एक जो है बैक्टीरिया होती है ब्रुसेला एवाल्टस, तो ब्रुशोला, जो ब्रुशोला है यानी उस रोग को हम बोलते हैं ब्रुशोलोसिस हो गया। ब्रुशोलोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जो जिसका जो रोग जनक है वो जो है होता तो फीमेल में है लेकिन इसके वाहक मेल भी हो सकते हैं, यानी वो मेल में भी कैरियर के तौर पे मेल हो सकता है, मेल को अफेक्ट तो नहीं करेगा लेकिन वाया जो है पुरुष, मतलब ये पुरुषों के द्वारा महिलाओं में जा सकता है। मेरा मतलब है कि अगर पशुओं की बात करें
1: जी जी।
0: तो जो उसका सांड है वो वाहक हो सकता है लेकिन उसको होगा नहीं। और ये एबॉर्शन से बचने के लिए हमेशा किसानों को जब उनके बछड़ियाँ 6 से 7 महीने की हो जाएं तो ब्रुशोलोसिस का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। लेकिन ब्रुशोलोसिस का टीका कभी भी गर्भावस्था में नहीं लगवाना चाहिए, उसमें 100% श्योरिटी रहती है कि एबॉर्शन हो जाएगा। अगर आपने गर्भावस्था के दौरान ब्रुशोलोसिस का टीका लगवाया तो ब्रुशोलोसिस का टीका जो एबॉर्शन को रोकता है, पशुओं में मिसकैरेज या एबॉर्शन नहीं होता है, गर्भस्राव जो है वो नहीं होता है, तो उसका टीका हमेशा उसके बछड़ी के समय ही यानी कि जब 6 से 7 महीने की उम्र है तभी उसे लगवा लेना चाहिए।
1: मतलब जब जो हमारे पास में बछड़ी है 5-6-7 महीने 6 से 7 महीने
0: हाँ,
1: की
0: जी, जी।
1: और वो गाय बनेगी आगे जा करके उसको हमें लगवाना है, ना कि गर्भावस्था के टाइम पे मतलब हमारी गाय को लगाना है।
0: जी जी
1: हाँ। जी तो यहाँ पे आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि इसका क्या निदान है। और सुशील यादव जी हमसे एक बार और सवाल रखते हैं, कहते हैं कि कुछ जानवर होते हैं जिनमें दूध में फैट नहीं बढ़ता है, इसके लिए क्या किया जाए?
0: दूध में फैट
1: सर एक सेकंड पहले हम कॉल ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना शुभ नाम बताएं सर।
3: राम गोपाल वर्मा श्रावस्ती से बोल रहे हैं
1: जी। सर अपना सवाल रखिए, क्या सवाल है आपका?
3: मेरा प्रश्न है कि मेरी साहिवाल गाय उसकी किलनी चट्टा बहुत ज्यादा हो रही है, किलनी चट्टा कैसे खत्म हो जाए? किलनी और चट्टी बहुत जल्दी लग रही है, उसके कोई निदान बताया जाए?
1: ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो
4: हेलो
1: हाँ जी, अपना शुभ नाम बताएं सर।
4: सर राम शब्द वर्मा
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
4: सर हमारा ब्लॉक उतरौला जिला बलरामपुर
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोधुली स्पेशल खेत खलियान में, कहें क्या सवाल है आपका?
4: सर सबसे पहले तो हम आपके ज्ञान स्थली टीम को और डॉक्टर साहब को और जो हमारे सभी सुनने वाले दर्शक हैं, जो हमारे पंच है, सबको हम सबसे पहले नमस्ते करते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुभ संध्या आपको, नमस्कार, कहें क्या सवाल?
4: सर सवाल हमारा सर ये है कि हमको नई वैरायटी के जो है गाय लेना है
1: जी।
4: कुछ वैरायटी हमने जो है कुमारगंज में देखा है
1: जी,
4: तो वो हमारे हम थे और हमारे गांव के करीब करीब 10-15 लोग थे, बड़ी टीम थी
1: जी।
4: तो लोग को पसंद आ गया, तो उसका कोई ये नियम बताओ कि जैसे लोग हमारे गांव के चाहते हैं कि वहां का जो बछिया है वो मिल जाए पालने के लिए
1: जी, तो कौन तो सी जाति की थी
4: जी,
1: किस वंश की थी आपको जो पसंद आई थी, उसका नाम पता?
4: वो 2-3 वैरायटी हैं, सभी वैरायटी जो वहाँ की पसंद है, वहाँ का कोई वैरायटी फेल नहीं निकला।
1: ओह, इसलिए आपको चाहिए कि कहाँ से मिलेंगी वो वैरायटी के जानवर, ये आप जानना चाहते हैं?
4: जी जी जी
1: जी जी जी। कुमारगंज आपने बताया सर
4: जी जी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहला प्रश्न तो हम लेंगे जहाँ हम बात कर रहे थे सुशील जी का, कि फैट में को कैसे बढ़ाया जाए, फिर आते हैं बाकी सवालों पर।
0: फैट को देखिए, फैट किसी भी पशु का उत्पादन उसके आहार पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि जो है हम आहार तो खिला रहे हैं लेकिन उसकी प्रजाति ही ऐसी है कि वो जो है उसमें फैट ही नहीं है। तो अगर हम ये भी देखें कि आपका जो है, चूँकि हमको किसान भाई ने अपना जानवर कौन सा है, किस नस्ल का है नहीं बताया, जैसे हम HF है होलिस्टीन फ्रीजियन को कितना भी कुछ भी खिला लें लेकिन उसका फैट नहीं बढ़ना है, वो 3 के आसपास ही रहेगा, 3 से 3.2% के ही आसपास रहेगा। लेकिन जर्सी है तो उसका थोड़ा सा फैट ज़्यादा रहेगा, हमारी देसी गायों का फैट ज़्यादा रहेगा
1: जी।
0: तो हम अगर आहार में जैसे फैट कम है तो हम उसका जो आदर्श राशन है, आइडियल राशन है, वो खिलाएं, यानी हम फैट लेना है तो फैट भी खिलाएं, यानी हम उसे खली की मात्रा दें, प्रोटीन की मात्रा दें, और आहार से ही हम उसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। अगर फैट आपके पशु में कम आ रहा है तो उसे बिनौले की खली और ये अलसी की भी खली जो है आप मार्केट में मिल जाएगी, या आप अलसी खरीद करके उसका सेवन, उसके तेल का उपयोग आप स्वयं करके उसकी खली खिलाएं, तो इसकी खल से जो है उसका फैट परसेंटेज ग्रो करेगा। और आप ये भी देखें कि हीट स्ट्रेस की वजह से अगर आपके आवासीय प्रबंधन भी अच्छा नहीं है तो भी उसके उत्पादन पे, उसके वसा के उत्पादन पे उसका असर पड़ता है
1: जी। और नेक्स्ट सवाल था हमारे पास में कि उनके पास में सहीवाल गाय थी और उनको बहुत ज़्यादा किल्ली लगी थी।
0: एक किल्ली जो वर्मा जी जुड़े थे
1: जी,
0: उन्होंने ये पूछा कि उसका ये तरीका है कि एक तो अगर आपका आयुर्वेद में विश्वास है जैसा मेरा तो है, लेकिन अगर तो उसमें एक जो है होता है हर्ब्स भटवास के नाम से
1: जी,
0: ये आयुर्वेदिक है। भटवास की पत्ती को आप लेकर के पूरे पेड़ को, मतलब उसके फूल पत्ती जो भी उसमें आपको मिल रहा है पूरा का पूरा किसी बड़े 40 से 50 लीटर के भगोने में डाल करके, और करीब 5 किलो भटवास आप काट लें और उसको छोटा छोटा काट के उसको उबाल लें, और उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे अपने जानवर को खूब अच्छे से कपड़े से नहला दें। कपड़े से मेरा मतलब बताने की यह है कि वो पानी वेस्ट ना हो, प्रयास ये करें कि वो पानी बार बार उसी को, मतलब उससे उसकी पूरी ऊपरी त्वचा जो है उसका वो खूब अच्छे से मतलब भीग जाए, और भीगने के बाद हम यह भी प्रयास करें कि उसे धूप में ना खड़ी होने दें, वो सूखे तो छाया में ही सूखे, मतलब उसमें जो है अवशोषित हो जाए भटवास का वो। उसमें हम नीम का भी यूज कर सकते हैं, ये तो हम आयुर्वेद में सदा से करते आ रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं होता है।
1: विदाउट साइड इफेक्ट।
0: हाँ, एक बूटाक्स पाउडर भी आता है तो उसको हम पशु के रीढ़ पर सिर्फ डाल देते हैं तो उससे भी सारी किलनी जो है चली जाती है। एक इंजेक्शन आता है आइबरमेक्टिन के नाम से, उसका कमर्शियल नेम बर्मी है, तो ये बर्मी का हम इंजेक्शन भी लगवा करके, जो प्रैक्टिशनर कोई भी है उसे हम लगवा करके एक 50 किलोग्राम की प्रति 50 किलोग्राम पर हम 1 ml का इंजेक्शन आइबरमेक्टिन का देते हैं। तो किसान भाई ये ज़रूर ध्यान दें कि किसानों ने का ये शिकायत रहता है कि हमने इंजेक्शन भी लगवाया और हमारे यहाँ की किलनी नहीं गई, पशु की किलनी नहीं गई, तो इसकी एक डोज लगवाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही बूस्टर डोज भी लगवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके स्पोर जो है उसके बीजाणु बचे रह जाते हैं और वही फिर जो है 15 दिन में फिर से किलनी हो जाती है। तो अगर आज आपने आइवरमेक्टिन का या जो मैंने इंजेक्शन बताया बर्मी का इंजेक्शन आप लगा रहे हैं तो आपको हर कंडीशन में 1 सप्ताह के बाद दोबारा लगवाना है। और मैं सभी किसान भाइयों को जागरूक कर देना चाहता हूं कि आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन होता है 700 ml की सीसी सिर्फ 200 रुपये में आती है, यानी कि 700 ml इंजेक्शन करीब 4 जानवरों को हम लगा सकते हैं, तो सिर्फ उस पर 200 रुपये की कास्ट है। तो कभी भी जो हमारे वेटनरियन हैं या जो गाँव में घूम रहे हैं इनको अधिक पैसा किसी भी कंडीशन में मतलब ना दें, उस इंजेक्शन की मात्र एक पशु को अगर वो लगाएंगे तो उसकी मैक्सिमम कीमत 25 से 30 रुपये होती है, उसकी कॉस्ट, वो दवा की कॉस्ट में बता रहा हूँ, बाकी उसके बाद जो लेता है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस का पैसा लेता है। तो आइवरमेक्टिन के कंडीशन में ये जो टीका लगा रहे हैं, ये जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, एक तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना, उसको बता देना है कि भैया 700 ml का जो है 200 रुपये में आता है, और दूसरी बात यह है कि हम 7वें दिन फिर उसी इंजेक्शन को लगवा लेंगे, ताकि फिर वो कभी 6-7 महीने बाद ही होगी फिर क्लिनिक।
1: तो काफ़ी डीप में जाके आपको पूरी जानकारी मिल गई है। और एक सवाल और था,
0: रामशोध वर्मा जी का था
1: जी, उत्तरौला से।
0: हाँ, कि हम गायों को कहाँ से लें। देखिए, कभी भी आप गायों को खरीदें, अगर आप जो है, चूंकि डेयरी पर्पज से ही हर आदमी इस समय व्यक्ति जो है गाय खरीदता है, तो हम एक तो एक प्रयास करें कि 100% प्योर गाय लें। तो उसके लिए जो है शुद्ध नस्ल की गाय लेने के लिए हम बरेली में जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम वहाँ से गायों का सिलेक्शन करते हैं, या NDRI है करनाल में, वहाँ से हम शुद्ध गिर की वहाँ से ले सकते हैं, साहिवाल की ले सकते हैं। एक सिंथेटिक, एक नई नस्ल जो है वृंदावनी के नाम से आई है, और मैं सभी किसान भाइयों से कहता हूँ कि IVRI बरेली बहुत दूर नहीं है, आप वहाँ से, वहाँ पे उसका टेंडर होता है, वहाँ से आप 2 बछिया लाइए और वो वहीं से आपको वृंदावनी गाय का सीमेन भी देंगे, और उस वृंदावनी गाय को आप पालिए, वो सबसे अच्छी गाय है, और वो हमारे ही वैज्ञानिकों द्वारा अपने ही देश में जो है वो विकसित की गई है क्रॉस ब्रीडिंग से। तो आप शाहीवाल के बाद गिरी के बाद अगर फिर साहीवाल, गिरी के बाद अगर दूसरी किसी गाय का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को बता रहा हूं कि वो वृंदावनी गाय को लाएं और वो आपको बरेली में मिल जाएगा। आप हमारा फ़ोन नंबर लेकर के, वहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे संपर्क में हैं, तो आपको मिल जाएगी।
1: जी, नंबर प्लीज़ बताएं।
0: हाँ, हमारा नंबर है 76070-67423। एक बार किसान भाई फिर से सुन लें, 76070 67423। इस पे संपर्क करेंगे। हमेशा शुद्ध नस्ल के पशु पालें ताकि आपका परिवार स्वस्थ हो उसका दुग्ध सेवन करने से।
1: जी सर, और एक सवाल आया हुआ हमारे पास में, एक क्या दो सवाल है। तो पहला तो ये जानना चाहेंगे कि हमारे सुशील जी का कहना है, जो मैं करनैलगंज गोंडा से सुन रहे हैं, कि हमें जानकारी मिली है हमारा जिला गोंडा खुरपका और मुंहपका मुक्त घोषित किया गया, क्या ये सही है या गलत?
0: अब इसका एग्जैक्ट जो है जानकारी हमको तो नहीं है, लेकिन अभी हम इससे पूरे तरीके से निजात नहीं पाए हुए हैं, क्योंकि पड़ोस का जिला हमारा भी, मैं भी अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है। और यही सीजन है किसान भाइयों की, ये मई और जून के सीजन में ही FMD का टीका लगता है। तो आपके क्षेत्र में जैसे थोड़ा सा भी ऐसा अनहाइजीनिक क्षेत्र है, यानी जल भराव का क्षेत्र है, या आपके पशु का आने जाने का जो मार्ग है वो पक्का नहीं है, तो आप FMD का टीका हर कंडीशन में लगवा लें। ये जो है क्योंकि खुरपका और मुंहपका ऐसी बीमारी है कि पशु ना तो ठीक से चल पाता है और ना खा पाता है। पशु खाएगा नहीं तो उत्पादन क्या देगा। तो हमेशा किसान जो है, और किसानों का प्रेम अपने पशुओं से ऐसा होता है कि उसके पशु भी बीमार हो जाते हैं तो किसान खुद तनाव में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है हमको। FMD का टीका इसी जून के अंत तक सारे किसान भाई डॉक्टरों को बुलवा के लगवा लें। और FMD का टीका जो है वो फ्री में लगता है, वो एक पैसा नहीं देना होता है।
1: जी, और एक हमारे लिसनर है, वो जानना चाहते हैं नंद बाबा दुग्ध मिशन कोई योजना है, तो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो।
0: हाँ, नंद बाबा दुग्ध मिशन है ये भी जो है। नंद बाबा दुग्ध मिशन में क्या है कि हमारे यहाँ ये हर पाँच वर्ष पे पशुगणना होती है। तो हमारे यहाँ पशुगणना अभी जो 2019 में 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट आई थी, उसमें देखा गया कि 2012 की जो पशुगणना थी, तो 2012 की पशुगणना में भारत की जो भारतीय मूल की गायें थीं वो 9% कम हो गई थी। आपको फिर से डेटा सुनना है कि 2012 में जितनी भी गायें थीं उसके आधार पे जब 2019 में पशुगणना की गई, तो वो हमारे यहाँ की भारतीय गायों की जो संख्या थी वो 9% कम हो गई थी। फिर जब दोबारा से किया गया पशुगणना की रिपोर्ट आई, जब 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट आई, तो उसमें देखा गया कि फिर से भारतीय गायों की संख्या 6% कम हो गई है। तो ये नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है, इसमें ये इन सरकार का ये उद्देश्य है कि हर कंडीशन में हम अपने यहाँ की जो देसी नस्ल की गायें हैं उनका जो है पालन पोषण करें। एक तो उससे हमारा जेनेटिक मेकअप बना रहेगा, हमारी नस्ल में हमारी नस्लों का सुधार तो होगा, यानी कि हमारे नस्ल की सस्टेनेबिलिटी अस्थायित्व बचा रहेगा। तो इसका उद्देश्य ये है, ये देसी नस्लों के लिए ये आपको लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी के सवालों को लगभग जवाब आपने दे दिया है। और अभी हम चलते भाई इरफान जी, बड़े देर से हमारे शांत बैठे हैं और हमें मालूम है इनके पास में सवालों की कमी नहीं होती है, तो अब इनके सवाल ले लेते हैं। और श्रोताओं, हमने ऑपरेटर साहब से कह के सर का नंबर चैटबॉक्स में भी मैंशन कर दिया, जिसे लेना हो वो ले सकता है वहाँ से। प्लीज़ इरफान जी अपना सवाल रखें,
5: क्योंकि समय तो बहुत कम है और सवाल बहुत है।
1: हाँ, लेकिन हमने बढ़ा दिया है, इसीलिए 6-10 तक का हमने टाइम ले लिया है।
5: जी बिल्कुल, चलिए मैम, तो हम जानना चाहेंगे सर, हमारा एक बहुत अच्छा सवाल है, और हम गर्भवती जो है पशुओं पर अत्यधिक गर्मी का जो है शिशु एवं उसके भविष्य के दुग्ध उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है सर?
0: देखिए, जो है इसका असर ये पड़ता है कि जैसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जैसे आपने पूछा कि गर्मी का क्या असर पड़ता है, तो हम पहले पहचान लें कि पशु को गर्मी लगी है कि नहीं, यानी कि उसका लक्षण हम देख लें। तो पशुओं में लक्षण आपको ये दिखेगा कि पशु आपका तेज़ सांस लेने लगेगा, यानी हाँफने लगेगा, और हाँफने के दौरान वो पूरा मुँह खोलता है, जीभ बाहर निकल गया, तो ये लक्षण हो गया। बार बार लार टपका रहा है। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में जो लार होती है वो थोड़ा सा स्लाइट पतली होती है, लेकिन जब हीट स्ट्रेस यानी लू लगा हुआ पशु है तो उसकी लार थोड़ा मोटी गिरती है। ये है कि जो है थोड़ा झागदार भी आपके पशु का जो लार है थोड़ा झाग वाला रहेगा, तो इस कंडीशन में वो देखोगे कि सुस्ती रहेगी, पशु बैठा रहेगा या हवा की तलाश में बेचैन होकर इधर उधर वो देखेगा। एक टर्म और होता है, हम बोलते हैं कि बहुमूत्रलता, बार बार जो है पशु पेशाब करेगा। पेशाब करने का भी उसका यही है कि उस अपने शरीर की गर्मी को कम करना चाह रहा है। तो ऐसे लक्षण अगर देख रहे हैं, एक और देखने को मिलता है कि पशु को लू लगा हुआ है तो वो झुंड में नहीं खड़ा होना चाहता, वो और झुंड से बाहर निकलना चाहता। तो ये तो ऐसे हम इसे देख के हम पहचान जाएंगे कि हमारे पशु को हीट से यानी कि गर्मी से समस्या है। जैसा आपने पूछा कि उत्पादन पे, तो उत्पादन पे इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जितने भी लक्षण हमने आपको बताएं इससे आपको लग गया होगा कि पशु की जो सामान्य शारीरिक शरीर की है, शरीर की होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो अव्यवस्थित हो गई हैं, तो अगर उसकी शरीर की में परिवर्तन आ गया है तो उसके उत्पादन में परिवर्तन आना बिल्कुल सरल बात है। तो इसमें जो है 10-30% तक जो है दूध की कमी देखी जाती है। अगर आपका पशु 10 लीटर दूध दे रहा है तो वो हीट स्ट्रोक के कंडीशन में अगर उसके अरेस्ट में आ गया, चपेट में आ गया, तो वो 7 लीटर दूध हो जाएगा, आप इतना समझिए।
5: जी, मतलब कहने का मतलब है कि गर्मी में
0: 10-30% दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
5: जी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो गर्मी में हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। अभी सर खुरपका और मुँह पका का बात हो रहा था, और इसी के बाद में अगस्त और सितंबर के महीने में लम्फी रोग का नामक बहुत जो कि गोंडा में अगली बार भी देखा गया था, तो सर ने बताया कि टीकाकरण जरूर कराएं। तो सभी किसान भाई बहन से एक आग्रह निवेदन है कि ज़रूर टीकाकरण लगवाएं और टीकाकरण करवा के और अपने पशु को सुरक्षित करें। अब आते हैं सर अगले सवाल पर, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों में दुधारू पशुओं के आहार एवं पोषण प्रबंधन के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो कभी कभी क्या होता है कि हरा चारा बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, या कभी कभी पानी जो है वो बासी पिला देते हैं, या कभी कभी जो हमारे पशु हैं धूप में ऐसे बांधे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं कैसे उसको बचाएँ और कैसे हम उसका फ़ायदा लें।
0: हाँ देखिए, हमने चारे के परिवर्तन में चारे का परिवर्तन का थोड़ा सामने पहले बता दिया था। हम थोड़ा एक बात को अपनी रिपीट न करते हुए सर ये बताना चाहेंगे कि हम पशुओं के दाना का प्रबंधन कैसे करना है। जैसे हम चारा का तो हमने बता दिया कि धूप में ना दें, ठंडे समय पे या ठंडे स्थान पर खिलाएं, 10-5 के बीच में नहीं खिलाना है, हरे चारे की मात्रा बढ़ा देना है क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है, दाना मिश्रण बढ़ा देना है क्योंकि वो कम मात्रा में ज़्यादा एनर्जी देता है, ठंडी तासीर की चीज़ें खिलानी है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी है। यानी एक जानवर है, अगर एक गाय है, एक वयस्क गाय है, तो 100 से 150 लीटर पानी उसके पीने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और ये हर कंडीशन में ताजे पानी का स्रोत से, वो ताजे पानी से मतलब हमें उसे ऑफर करना है पीने के लिए। हम जो है खुद अपने घर पे एक जो है उसका बाहर से, जैसे किसान भाई क्या करते हैं कि बाहर से वो कैटल फीड पशु आहार बाहर से खरीद लेते हैं, हम बाहर से पशु आहार किसी भी कंडीशन में ना लें, क्योंकि ये जो पशु आहार की कंपनियां होती हैं ये सिर्फ किसानों को मूर्ख बनाती हैं, क्योंकि ये अपनी मोटी कमाई के लिए किसानों को छलावा करती हैं। हमारा किसान साधारण उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं समझ पाता है, और इनकी लेबलिंग से परेशान होकर के, लेबलिंग के आकर्षण में आकर के महंगे दामों का पशु आहार खरीद लेता है, उसके जेब की मोटी कमाई भी कंपनियों के हाथ में चली जाती है, जेब में चली जाती है, और उसे उसके पशु को अच्छा दाना भी नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई अपने यहाँ 100 किलोग्राम चार अगर वो पशु आहार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो मक्का ले लें, आपके जिले गोंडा के आसपास या हर जगह लगभग मिल ही जाता है, तो 100 किलोग्राम आहार बनाने के लिए 30 किलोग्राम आप मक्का ले लीजिए, 35 किलोग्राम चोकर ले लीजिए, और खली जो है, खली बिनौले की हो सकती है, सरसों की हो सकती है, अलसी की हो सकती है, कोई भी जो है तैलीय चीज़ों से निकली हुई खली, 30 किलोग्राम खली ले लें, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम ले लें, और 2 किलोग्राम नमक ले लें, और 1 किलोग्राम चूंकि गर्मी का सीज़न है तो मीठा सोडा ले लें, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें। तो ये सारा जो है हम ले करके और उसको मिक्सअप कर लें। किसान भाई जैसे हमने कहा कि मिनरल मिक्सचर ले लें, तो मिनरल मिक्सचर के कंडीशन में वो आपको किसी कंपनी का ही खरीदना है, वो मिनरल मिक्सचर घर पे बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये एक थोड़ी सी भी मात्रा अगर वेरी कर गई, डिराइव कर गई, थोड़ा सा भी विचलन हो गया कम ज़्यादा लेने में, तो थोड़ी सी मात्रा पशुओं के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मिनरल मिक्सचर जरूर और सीधे आप पशुओं वो बाज़ार से ही खरीदें, लेकिन और सारी चीज़ें आप जो है खरीद करके और उसकी दलिया बनवा करके, मतलब उसको दलवा करके चक्की से, और उसे अच्छे तरीके से अपने घर ही चारा बना लें, और वो चारा एक प्रति पशु को 3-5 किलोग्राम जैसा वो अगर गर्भस्थ है या उत्पादन में है कैसा है, तो मान लीजिए कि आपकी गाय दूध दे रही है तो 3 लीटर दूध पे 1 किलो चारा, सॉरी दाना, 1 किलो दाना आपको देना है प्रति 3 लीटर पे। अगर आपकी वो भैंस है तो 2-2.5 लीटर दूध के उत्पादन पे 1 किलो दाना देना है। दूसरी चीज़, उसका एक वाहक, एक मेंटेनेंस राशन होता है, तो 1 किलोग्राम जो है उसको 1 किलोग्राम उसके शरीर के रखरखाव के लिए देना है, और प्रति 2.5 लीटर दूध उत्पादन पे भैंस के 1 किलो दाना, और अगर वो गाय है तो प्रति 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पे 1 किलोग्राम दाना, मतलब उत्पादन और उसके साथ साथ 1 किलोग्राम दाना उसके शरीर के रखरखाव के लिए, यानी उसको मेंटेनेंस राशन बोलते हैं और प्रोडक्शन राशन, तो प्रोडक्शन राशन प्लस मेंटेनेंस राशन दोनों देना है। और ये जो चार जो आहार या दाना ये जो हम खिला रहे हैं, ये दाना हम 4 से 5 घंटे खिलाने से पहले इसको हम भिगो दें। भिगोने से क्या होता है कि उस दाने की सुपाच्यता बढ़ जाती है और उस पानी उस दाने में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और इस मौसम में ये दोनों चीज़ें किसान के लिए फ़ायदेमंद होगी। किसानों को अगर समस्या है मिक्सचर बनाने में, पशु आहार बनाने में, तो हमको कांटेक्ट कर लें, लेकिन किसी भी कंडीशन में किसी भी कंपनी का पशु आहार न खरीदें, वो सिर्फ भ्रामक है, सिर्फ आप किसानों के साथ एक धोखा है।
5: मतलब ये चीज़ें हैं, यानी कहीं सलाह या कहीं जानकारी करके ही कोई सामान खरीदना चाहिए। अब सर आते हैं अगले सवाल पर, गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए आदर्श आवास कैसा होना चाहिए?
0: हाँ, ये जो है गर्मी के लिए आवासीय प्रबंधन बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊँ तो आपका जो पशुशाला है उसकी लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य है। लेकिन अब आपका घर ही ऐसा है कि हम ऐसी व्यवस्था में नहीं रखना है, तो हमें ये बचाना है कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे पशुशाला में 8 बजे के बाद किसी भी कंडीशन में ना आए। हम धूप को आने देंगे पशुशाला में, लेकिन 8 बजे से पहले और शाम में 5 बजे के बाद, तो हमारा पशुशाला ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम जो मान लीजिए कि उसे हम जो छप्पर में है या हम टिन शेड हैं, तो उसका जो बीच का पोल हो, जो रिज हो, यानी जो बीच का पोल होता है, उससे हम मिनिमम 12 फीट रखें। 12 फीट वो होना चाहिए जो दोनों तरफ जो लटक रहा है, यानी जिसको हम ओरोनी बोलते हैं, ओवर हैंगिंग पोजिशन बोलते हैं, वो 8 से 9 फीट उसका होना चाहिए। ये ऊँचाई एक तो ये निर्भर करती है कि जो हमारा रूफ टॉप है, छत का ऊपरी सतह है, वो गर्म हो जाता है तो उस गर्मी का विकिरण नीचे की तरफ आता है तो पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो वो जब दूर होगा, जब वो 12 फीट पर होगा, तो उसकी ऊपर की हीट नीचे पशु को नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि उसके जो है वातन के लिए, मतलब वेंटिलेशन या हवा का आना जाना अच्छा होता है जब अंदर में स्पेस अच्छा होता है। यहाँ पे आपको किसानों को एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जो है मीथेन का प्रोडक्शन, एक वयस्क गाय जो है आप ये समझिए कि 250 लीटर मीथेन का प्रोडक्शन 24 घंटे में करती है, और 150 लीटर प्रोडक्शन अमोनिया गैस का करती है। अमोनिया और मीथेन गैसें ऐसी होती हैं कि अगर पशुशाला बंद है, आपने बंद पशुशाला में आप खड़े हो जाइए, तो आपके आँखों में जलन होने लगेगी, मतलब एक बेचैनी सी महसूस होगी। और उसका कारण ये होता है कि जब देखिए गाय, अगर उसको थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए, गाय के गोबर में एक जो है यूरिएज करके एक एंजाइम पाया जाता है, और गाय के मूत्र में यूरिया पाई जाती है। वो चूंकि हम प्रोटीन किसी भी तरीके से खिला रहे हैं, तो प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन है उसमें, और वही नाइट्रोजन यूरिया के फार्म में मूत्र में आ जाता है। तो ये जो गायों का मूत्र है, किसी भी पशु का मूत्र है, अगर उसके गोबर से मिल गया, यानी यूरिया अगर यूरिएज एंजाइम से मिल जाता है, यानी कि मूत्र अगर गोबर में मिल गया, तो फिर वो अमोनिया गैस का प्रोडक्शन करेगा, और अमोनिया गैस किसी भी कंडीशन में ना तो पशुपालक के लिए अच्छी होगी और ना जो है ये जानवर के लिए आपकी अच्छी होगी। और गर्भस्थ पशु अगर हैं तो वहाँ हमें बार बार पशुशाला की सफाई करते रहना है, किसी भी कंडीशन में वहाँ पे गोबर और मूत्र को इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि फिर अमोनिया का प्रोडक्शन होगा, मीथेन का प्रोडक्शन होगा। हालाँकि ये भी जो है अगर हम उसका प्रबंधन अच्छे से करते हैं तो बायोगैस के रूप में, आप समझिए कि सिर्फ आपके यहाँ सिर्फ अगर 10 गायें हैं, यानी 10 गायों का गोबर अगर आपको मिल रहा है, तो एक अच्छे खासे परिवार की ऊर्जा ज़रूरत, उससे लाइट जलाना और भोजन व्यवस्था, जैसे इस समय गैस की क्राइसिस चल रही हैं, तो इस गोबर को आप बायोगैस में कन्वर्ट करके, ये जो मीथेन है उसका टोटल जो गोबर होता है, उस गोबर का 55% मीथेन होता है, जिसको हम यूज करके भोजन बना सकते हैं, वो प्रकाश के लिए यूज कर सकते हैं, और भी मशीनरी डेवलप करके हम इस ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, जो जिसका प्रयास जो है संस्थानों में चल रहा है। तो ये मैं आवासीय प्रबंधन की बात थी।
5: अब हम चाहेंगे कि अगला सवाल मैम करें, क्योंकि काफी समय से आवाज नहीं आ रही
1: है। अरे बाप रे,
5: बहुत शांत है।
1: चलिए भाई, अब हमें लगता है कि आपसे हम प्रश्न रखते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी रखते हैं क्योंकि वक्त मेरे पास में केवल और केवल 9 मिनट शेष है। 6:01 हो चुका है और हमने वक्त थोड़ा बढ़ा लिया, फिर भी हमें मालूम है कि हम पूरा प्रश्न तो नहीं समेट पाएंगे, लेकिन कुछ जो ज़रूरी प्रश्न है उसकी ओर हम ज़रूर रुख करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अत्यधिक गर्मी का दूध उत्पादन और दूध की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, गर्मी हमें गर्मी से ही लड़ना है, तो गर्मी का जैसे हम उसका प्रबंधन करके हम ये जानते हैं, जैसे हमने बताया कि 10 से 30% जो है दूध का उत्पादन कम हो जाता है
1: जी।
0: तो हम गर्मी पशुओं को एहसास ही ना होने दें, ऐसा प्रबंधन करें। तो उसमें तो एक तो है कि अगर हम किसान समृद्धि है उसके पास, तो वो कूलर लगा सकता है या वो जो है फॉगर लगा सकता है। फॉगर का ये ट्रेंड आया है, फॉगर जो है चल रहा है, क्योंकि जब हमने उद्देश्य ही बना लिया है पशुपालन करने का, तो पूरे अच्छे तरीके से पशु स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, तो पशु तनाव में नहीं रहेगा, हम तनाव में नहीं, हमारा उत्पादन अच्छा आएगा, हम कभी तनाव में नहीं जाएंगे। हम फॉगर की व्यवस्था कर लेते हैं। फॉगर जो है एक नॉजल के तरीके से, मतलब उसमें पानी स्प्रिंकलर भी बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कूलर का जो टर्म है कि कूलर में क्या है कि पानी हवा में पानी मिक्स होकर के आ रहा है, फागर का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें नोजल लगा होता है। तो ये फागर जरूर लगाएं, 10 गायों पे 5 से 6 फागर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक फागर कम से कम 4 से 5 फीट का अर्धव्यास वो जो है बना लेता है
1: जी।
0: तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप फागर का यूज करें, कूलर का यूज करें, क्योंकि फागर क्या करेगा कि वो वहाँ मौजूद हवा में जो गर्मी होती है उसको सोख लेता है, और वो ऐसा भी नहीं है कि वो उसके इनहेलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो भारी होता है और वो बैठ जाता है। तो एक तो डस्ट बैठ जाती है, पशुशाला की धूल बैठ जाएगी, तो उससे पशुओं का जो रिस्पायरेशन है, श्वसन है, श्वसन अच्छा होता है, उनका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है फागर से। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य टेम्परेचर के आसपास बना रहता है। तो फागर का यूज करें, कूलर का यूज करें, तो इससे दुग्ध उत्पादन पर जो है कोई इफेक्ट नहीं आएगा
1: जी। सर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमें प्लीज ऐसे जवाब दीजिएगा जैसे कि हम क्विज खेल रहे होते हैं, ताकि हम 3-4 सवाल और आपसे कवर कर पाएं। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, पशुओं के दुहने का जो गर्मियों में वक्त है वो कौन सा निर्धारित करना चाहिए?
0: देखिए, पशुओं का जो है अगर वो 2 महीने ब्याय हुआ है, तो उसे हम प्रयास करें कि 3 बार दुहे। 3 बार दुहने से जो है, अगर हम जैसे 2 बार पशुओं को दूह रहे थे, अगर हम उनके मिल्किंग जो पैटर्न है 3 बार कर देते हैं, तो उससे 10% दुग्ध का उत्पादन और मिलता है। पशुओं को दूहने से पहले 1 घंटे पहले पशुओं को नहला दें। नहलाने से क्या होगा कि वो मेंटली फिट हो जाएंगी, मानसिक तौर पर उनको शांति मिल जाएगी, और ऐसी स्थिति में प्राप्त दूध की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा जो मिल्किंग का हाइजीन है, यानी शुद्ध दूध भी प्राप्त होगा और अच्छा दूध भी प्राप्त होगा, और वो पशु के लिए भी अच्छा होता है। तो दोनों टाइम नहीं, लेकिन शाम के समय दूध दुहने से 1 घंटे पहले पशु को जरूर नहला के, और लेकिन मिल्किंग से दूध दुहने से 1 घंटे पहले उसे नहला के और छांव में बांध दें, जब वो सूख जाए तो फिर हम उसे दुह लें
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि छोटे एवं सीमांत पशुपालक कम लागत में हीट स्ट्रेस प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं?
0: देखिए, जिनके पास संसाधन नहीं है वो क्या करते हैं कि अपने, जैसे मान लीजिए कि उनका टीन सेट का है, टीन सेट है, तो उस पे करीब 5 से 6 इंच की मोटी जो है कवर बना लें। 5 से 6 इंच का ये जो पुआल होता है, भूसा या जो सरसों की तिलेठी होती है, इसको हम करीब जो है कम से कम 5 फीट का एक लेयर बना लें, और उस पे जैसे 11 बजे के बाद एक बार हम पानी का छींटा मार दें, तो क्या होगा कि जो गर्मी होगी वो सोख करके वहीं ऊपर से ही वाष्पित हो जाती है, तो नीचे का तापमान बना रहता है। तो ऐसे किसान जिनके पास कूलर लगाने की, फागर लगाने की व्यवस्था, पंखे लगाने की नहीं है, तो वो अपने जो है पशुओं के शेड के ऊपर वो छप्पर है तो उस पे या पानी का छिड़काव कर देंगे, तो वाष्पन क्या होता है कि गर्मी को सोख करके वाष्पित हो जाता है, तो फिर से वहाँ की सतह फिर से ठंडी हो जाती है, आपको करीब 2.5 से 3 घंटे का वो आराम दे देगी। तो हम जो दोपहर का 11 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में 2 बार भी अगर पानी का छींटा, इस 6 जो पुआल हम बिछाए हुए हैं 6 इंच का, इसी पे पानी का छींटा मार देंगे तो ये आराम से हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये लू के जो थ्रेफ्ट आते हैं उससे डायरेक्ट उसकी हवाएं जो है पशुओं को ना लगें, उसके लिए हम कोई पर्दा या हम जो गांव में कहते कहते हैं तिलेठी का टटिया, ये सब चीजें व्यवस्थित कर सकते हैं।
1: जी बहुत अच्छी जानकारी रही। और एक सवाल और चलते चलते मैं लेना चाहूंगी, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए भविष्य में पशुपालन क्षेत्र के लिए कौन सी अनुकूलन जो रणनीतियाँ हैं वो जो आवश्यक है वो हम अपना सकते हैं?
0: देखिए, जो भविष्य का जलवायु परिवर्तन पे हमने अभी बात किया था कि हमारा 2024 का जो वर्ष था वो 1901 से लेकर के अभी तक के सभी वर्षों में सन 2024 का वर्ष सबसे गर्म रहा। और जो सुपर अलनीनो का, जो मौसम विज्ञान की भाषा में हम कहें कि सुपर अलनीनो इफेक्ट की वजह से इस बार भी जो 2026 भी ये हॉटेस्ट ईयर हो सकता है।
1: जी।
0: और अगर ये शुरू हो गया है 24 के बाद 25 छोड़ के फिर से 26 में वही कंडीशन देखने को मिल रही है। अभी 10 दिन पहले पूरे एशिया में हमारा उत्तर प्रदेश का बांदा 48 डिग्री सेल्सियस इसी मई के मौसम में चला गया था। हालांकि पूरे देश का तापमान अभी जो है चुरू में, राजस्थान की जैसे अभी मैम आपने बात की कि 55%, राजस्थान के चुरू में 50% के आसपास ही तापमान बना रहा। दिल्ली में तापमान 49% रहा। हमारा सर्वाइव 40 डिग्री के नीचे है और ये तापमान हम 50 डिग्री सेल्सियस कैसे झेलेंगे? तो किसानों का जागरूक होना और उनका प्रबंधन करना, पशुशाला के विकास से पहले हम इन बातों का ध्यान रखना कि हमें ऐसे हीट स्ट्रोक का सामना कभी भी किसी भी वर्ष में करना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखना होगा।
1: जी बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपको। अभी तो मैं कहूँ हमारे पास वक्त कम पड़ गया है, आपने हमारे सभी लिसनर्स के सवालों का एकदम डीप में जाकर के जवाब दिया, काफ़ी अच्छे से आपने हर एक पॉइंट पर डिटेल स्टडी की हुई है और वो आपके जवाब में दिख भी रहा था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम मतलब हमको जानकारी भी नहीं थी, हमने जो भी प्रश्न रखा, हमारे लिसनर्स ने जो भी प्रश्न रखा बहुत अच्छे तरीके से आपने उसका जवाब दिया, उसके लिए आपको बहुत बड़ा वाला शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैम आपका भी।
1: जी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बोलूँ अगर पर्सनल अपना व्यू रखूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक दफा फिर से आपको इनवाइट करना चाहिए।
0: जी,
1: जी मौका लगेगा और अगर आपके पास वक्त रहा तो प्लीज आप आमंत्रित हैं हमारे नेक्स्ट शो के लिए, अगर आपके पास में वक्त हुआ तो, जब भी आप खाली रहें, क्योंकि हमारे कुछ सवाल हैं जो रह गए लेकिन हमने कोशिश की पूरी तरह से हम कवर कर पाए। फिलहाल आज का शो आपके लिए काफी लाभप्रद रहा हो यही उम्मीद के साथ में अभी मैं चलती हूँ आप सभी के बीच से और आते हैं जी हाँ गोंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाले की जगह पे आप फिर से रूबरू होंगे अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में। फिलहाल मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी और सर को अलविदा करके आते हैं, तब तक के लिए आप बने रहे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो गाना 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन के साथ में। हाँ, शो चल रहा था आपका गौधुली स्पेशल खेत खलिहान, हमारे साथ में मौजूद थे बतौर को होस्ट की भूमिका पर इरफान शाह जी, एक्सपर्ट महोदय थे हमारे डॉक्टर करुणेश कुमार दुबे जी और हमको तो आप सभी जानते ही हैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कुछ क्षणों में।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस

0: निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: नमस्कार हो, प्रणाम हो, राम राम हो, सभी सुने वाले लोगन के हमार। जी हाँ, हम हैं आपके आरजे आकांक्षा और लेके आ गए बानी आपके भोजपुरिया नाइट्स यानी कि गोंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला में आज हैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। और आज दिन है गुरुवार, तो गुरुवार को होता है भाई आपका भोजपुरिया नाइट्स, वो हमको अच्छे से पता है। आप लोग पूरी बेसब्री से आज के दिन का इंतजार भी करते हैं, हमें अच्छे से इस बात की भी जानकारी है। फिलहाल सूरज के किरण जैसन उजियार हो जाओ, सूरज के किरण जैसन उजियार हो जाओ, मन के हर कोना खुशियन से भर जाओ। जेकरा लगे प्यार बा उ प्यार बाटत चलस, जेकरा लगे दुख बा उ मुस्कान में बदल जाओ। बात के मिठास गीतन के संग लेके आ गइल बानी हम राउर सभे के आंगन। दिल से दिल के तार जोड़ेल वाला आपका रेडियो शो ई संसार रेडियो के, और साथ ही साथ में हन तो फिर तैयार हो जाओ का करे खातिर। शुरू होके जा रहे बाने आपके आपन शो यानी के वही वाला गोंडा मैशन मसाला विथ आरजे बीना वाला, लेकिन आज आरजे आकांक्षा के साथ में हैं और शाम भाई भैया गुरुवार, गुरुवार यानी के मतलब भोजपुरिया नाइट्स। तो इस शाम को बनाएंगे हम खास, और राउर संगे, राउर साथी, राउर अपना आरजे आकांक्षा आयल बानी। और आप सुनत बानी रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पहन आपन शो, जहां बात होई आज दिल के एहसास के और साथ ही साथ में जिंदगी के और ओकरे अलावा ओ गीतन के जे राउर चेहरा पर मुस्कान ले आवेला। हाँ जी, 7 बजे से लेंगे हम आपकी फरमाइशें भोजपुरी वाली, उससे पहले नहीं लेंगे। हमने चैट बॉक्स में देख लिया है कुछ फरमाइशें हमारे पास में आ गई हैं, लेकिन उससे पहले भाई राउर लोगन से हमें बात करक बाटे, और बात करक बाटे वो तारीख के बारे में ही। भाई देखा, हम 1 जून के बात कर ली हैं, वह दिन हम 1 जून के रोटी खाल बानी। फिर 2 जून के बात कर ली हैं, तब वह दिन हम 2 जून के रोटी खा ले रहनी। और जब 3 जून के बात आई तो हम 3 जून के रोटी खा ले बनी। अब आज बात बात 4 जून के, तो हम ही जानल चाहत बानी आप सबसे कि के है जे 4 जून के रोटी अभी तक ले खा ले ले बा, और अगर ना ही खाई ले बा तो हमें बताए दिए, काहे कि हम तो अभी तक एक टाइम के रोटियां खाइल बानी। मतलब ये है कि हम सुबह खाली एक टाइम का ही खाना खा के आए हैं, और हमारा 3 टाइम तो हुर्र हो गया। हुर्र होने का मतलब है कि हम यही रह गए हैं, आज तो हम लगातार शोज पे शोज कर रहे हैं, और आज ये 3रा शो है पूरे दिन भर का हमारा। चलिए बढ़ते हैं उस ओर और कुछ आपसे बात करते हैं, क्योंकि हो गई है शाम। अब जब शाम हो ही गई बा तो आप लोग से फिर गुफ्तगू करे के भी वक्त आ गई बा, तो चाय के प्याली तैयार रखी, मुस्कान के संग बैठी, और काहे कि अब कुछ घंटा हमनी के साथ आपका बितावक बा खास अंदाज में। दिल से निकले बात मन तक पहुंचे एहसास, ई बा राउर अपना कार्यक्रम, बिल्कुल वही खास वाला गोंडा मैसेज मसाला। हाँ जी, और मसाले की बात करते हैं तो भैया मसाला बहुत जबरदस्त होएला और हर एक चीज के स्वाद बढ़ा देवेला, और स्वाद बढ़ावे खातिर मसाला लागेला। लेकिन जब बात होती है रेडियो शो की यानी कि आपके रेडियो शो के जब बात होएला, तब वहाँ पहन हमें बस खाली एक चीज याद आवेला, वो है गाना। और जब गाना की बात होती तो फिर हम अपने पसंद का एक गाना काहे ना बजा दी। हाँ जी, तो चलते हैं पवन सिंह जी की आवाज में, सुन ले जाए एक गीत, फिर आए के बताए थी हम आप सभी से कि आज आज 4 जून का खास है। और फिर 7 बजे से आप लोग की फरमाइश हमारे पास में नोटेड है भाई। 2 फरमाइशें आ चुकी हैं, उसके बाद देखते हैं किस किस की फरमाइश हम तक आती है। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने प्यारे लिसनर्स का, यानी कि मनी शर्मा जी हमारे साथ में बने हुए, प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ में बने हुए हैं, उद्दालक शर्मा जी भी हाजिर हैं, और इन सभियों ने रेटिंग भी कर दी है भाई। फरमाइश बाद की बात थी, इन लोगों को गाना काफी पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच में आ गई हमारी बबीता जी गोंडा से, आपका भी नमस्कार हमारी ओर से और राम राम। और इकरे अलावा अगर हम बात करी तो हमारे पास में है अनुष्का जी के श्रावस्ती से मैसेज और लिखन है, ये लिखे बारी हमने के कि शुभ संध्या आकांक्षा मैम जी, रउआ कैसन बानी। हम तो एकदम करत हो फिर से वैसे ही अपने अंदाज में बानी, मतलब बहुत मुस्कुरात बहुत ही खुश बानी, बस थोड़ा सा मौसम के तगादा बा हमारे साथ है मैं, थोड़ा सा जुकाम बा, लेकिन तब वो सब कम हो जाते जब आप लोग से मिलने के बारी आवत है। और उद्दालक शर्मा जी चाहते हैं भैया हम भोजपुरी में ना बोले बल्कि अवधी में बोलें, तो चलिए आपकी भी मान लेंगे, लेकिन अवधी से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे भोजपुरी बोले, और भोजपुरी में बीच बीच में अवधी आती रहेगी। वैसे भी अड़ोसी पड़ोसी हैं हम, यूपी बिहार वाले हैं, और यूपी बिहार की जब बारी आती है, क्षेत्रीय भाषाओं की बारी आती है, तो फिर वो कोई भी इस देश के, आपने भारत देश की बात मैं कर रही हूँ, इस देश के किसी भी क्षेत्रीय भाषा को आप ले लीजिए, उठा लीजिए, हर एक भाषा में मिठास होती है। और मुझे तो अगर मैं कहूँ तो मुझे हमारी MP की जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको क्या कहते हैं, फिलहाल मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ, मेरी आदत है, अभी याद आ जाएगा, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, बुंदेली बोलते हैं मे भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद अगर किसी को याद है तो प्लीज़ मेरे को याद दिलाएं आप लोग। और हमारे साथ में रीना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, उत्तरी नहीं भैया, रुड़की उत्तराखंड से। हाँ जी, तो आपके भी बहुत बहुत स्वागत बा आज के भोजपुरी नाइट्स में। और हम चाहत बानी कि अगर आपके लगे भी कोनो फरमाइश हुई रीना शर्मा जी, तो 7 बजे ज़रूर हम तक पहुँचा दिया जाए, ताकि हम आपके वो गाना कहीं बजा सकी। फिलहाल चले ली हम सभी एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, करे बाद में आई थे आप सभी से आज के 4 तारीख के डे स्पेशल साझा करे खातिर, बना रहा जाए अपने फेवरेट शो यानी के गोंडा मैसेज मसाला में, गोंडा मैसेज मसाला में आपके गुरुवार नाइट्स यानी कि भोजपुरी शाम के साथ में। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त यानी कि आपकी अपनी RJ आकांक्षा। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: हाँ जी श्रोतागण, आप सबन के फिर से एक बार दोबारा से आपके अपने शो यानी कि गोंडा मैसेज मसाला में बहुत बहुत स्वागत बाय। चला जाए आज के डे के बारे में आप सभी से हम का तनिक भर बात करे बा। तो बतिया ही बा के 4 जून आज के तारीख बा। वैसे हम पूछे रहे ना आप लोगन से कि 4 जून के रोटी अभी तक के खाए से। ओके, इतना महापुरुष है जे यह जून तक ले 4 जून के रोटी कंप्लीट कर ली से। वैसे तो हम 1 जून के खाए के घर से निकले रहन और हमार जब हम घर पहुँचब तब हमार 2 जून के रोटी पूर हुई। और हमें लागत है कि 2 जून रोटी खातिर सभे जद्दोजहद करत बातें अपने अपनी जिंदगी में हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो ना 4 तारीख के डे विशेष है, चलो आप तक आप लोगन का हम हुआ तक ले चले बानी। तो आज है नेशनल हग योर कैट डे, यानी कि आज है गले मिलावन दिवस और राष्ट्रीय बिल्ली को गले लगाने वाला दिन है, यानी कि बिल्लियों को गले लगाने का दिन है। तो आज जो दिन है वो है नेशनल हग योर कैट डे। ठीक है, इस दिन हमनी के अपना बिलैया यानी कि बिल्ली, हाँ भोजपुरी में बिलैया बोलते हैं बिल्ली को, बिलैया यानी कि बिल्ली के प्यार अपनापन महसूस करावे खातिर मनावा जाल वाले। और एकरा फायदा अगर हम बात करी एकरा फायदा के तो बाय की तनाव कम होला, एकरा से हम सभी के तनाव कम होला। जब रउआ अपना बिलैया के गोदी में लेके प्यार से सहलावे ले तब मन शांत हो जाला, तनाव कम होखेला। हमें लागत है कि आप लोगन का पूरा से कहूँ ना कहूँ आप ये बात का महसूस भी कर रहल पानी। एकरे अलावा जो होखेला एकरा फायदा उ ई बा कि अकेलापन दूर हो जाला। बिल्ली खाली पालतू जानवर ना, परिवार के सदस्य जैसन हो जाले, ओकर साथ मन के सहारा देले। यानी कि अगर आपका कोई जानवर है तो वो आपके दिल के करीब हो जाता है, और किसी भी जानवर को हम पालते हैं तो हमारे दिल से जुड़ाव रखता है। एकरे अलावा जो तीसर फायदा होता है एक वो ये बात कि खुशी बढ़ावेला, मतलब जब हम किसी भी जानवर से जुड़ाव रखते हैं तो हमारे खुशी में वो इंक्रीजमेंट लाता है। रिसर्च बतावेला दोस्त लोग के मित्र लोग हमारे के रिसर्च बतावेला कि पालतू जानवर के साथ समय बितावे से खुशी वाला हार्मोन बढ़ेला जे मन के प्रसन्न राखेला। तो कितना नीक बात बा ना, कितना नीमन लागेला जब हम कोनो जानवर का अपने गोदी में लिख ले और बाद में ही हम जब पुचकारे ली, बड़ा अच्छा लागेला। फिलहाल एकर और एक फायदा बाटे वो हम राउर लोगन से साझा करल बानी के दया आ जिम्मेदारी सिखावेला। जब हम कोनो भी जानवर का पाले ली तब हमरे अंदर एक जेन्युइन फैक्टर आ जावेला और कहलावल बाने कि दया और जिम्मेदारी। तो बिल्ली के देखभाल करे से इंसान में प्रेम करुणा आ जिम्मेदारी के भावना मजबूत खोले। एकरे अलावा भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेला, एक छोटा प्यार भरा आलिंगन यानी कि हग। राउरा के पालतू साथी के बीच, राउर और राउरा पालतू साथी के बीच में रिश्ता औरी मजबूत कर देला। बोलल जाला कि प्यार के भाषा हर जीव समझेला। आज नेशनल हग योर कैट डे पर अगर रौरा के घरे एगो नन्ही बिलैया यानी के बिल्ली बाटे त ओकरा खातिर थोड़ा समय निकालल जावेला और प्यार से सहलावल जालेला। और एकरे अलावा ई एहसास के महसूस भी करल जावे सभीन के। चूंकि ये सब होते हैं मूक जानवर यानी कि मूक जीवों के दिल होला जे स्नेह अपनापन के भाषा बखूबी समझेला। कुछ भी हो देखिए जो इमोशन की बात होती है जब जहाँ पे हमारे भावनाएं आ जाती हैं, जब अपनेपन की बात आती है तो ये भाषा जो है वो हमारे जानवर भी बहुत अच्छे से समझते हैं। प्यार बाटे से घटेला ना बढ़ेला ये तो आप सभी जानत बाने बहुत अच्छे से। और चाहे इंसान होखे चाहे नन्हका जीव होखेला, एगो प्यार भरा आलिंगन दुनिया के थोड़ा औरी खूबसूरत बना देला। अगर आप लोगन का लागत बाय कि बिल्कुल से तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और हमारे पास में प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। फिलहाल उस ओर ना बढ़ के हम चलेंगे एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर और फिर थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे आप लोगों की बातों को। फिर नेक्स्ट लिंक में हम देखेंगे कि आप लोगों ने हमें क्या क्या मैसेज भेजा है। फिलहाल आप एंजॉय करिए आज की शाम यानी कि भोजपुरिया नाइट्स में ये वाला सॉन्ग। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना काफ़ी पसंद आने वाला है। एंजॉय द ट्रैक जस्ट यू गई और यू आई। आप सभी के बीच में आपका शो चल रहा है जी हाँ गुंडा मैसेज मसाला, वो भी भोजपुरिया नाइट्स स्पेशल। और साथ ही साथ में आपकी फरमाइशें 7 बजे से ली जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये जानकारी अब तक पहुंचानी थी। और एक और जानकारी मेरे पास में है वो भी मैं लेके आती हूँ। आप आनंद लीजिए फिलहाल इस भोजपुरी सॉन्ग का।

0: बताऊंगी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
1: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
8: जी हाँ, एक बार फिर से आप सबन के हम स्वागत करत बानी आपके अपने शो यानी के गोंडा मैसेज मसाला में। और आज फिर से आपके साथ में आपके होस्ट और दोस्त और आपके साथ ही बाने आज के शाम के आपके अपने आरजी आकांक्षा और साथ ही माँ ये हम आप लोगन से बताए के जा गई ले बानी लास्ट लिंक में के भैया आज दिन कौन बा। तो आज दिन बा 4 जून वाला 4 तारीख, और 4 जून का मनावल जा रहे बाने राष्ट्रीय बिल्ली को गले लगाने का दिवस, यानी कि नेशनल हग योर कैट डे। और कैट कही हन, बिल्ली कही हन, भोजपुरी में बोला जाए तो बोला जात है बिलैया। और बड़े प्यार से बड़ा नीक लागेला जब एका सुना जात बातें। देखा जाए कैट बोला गया तो तनी उतना नहीं अपनापन लग, बिल्ली बोला गया तो जान परत है कि हाँ, हमारे घर के कहूँ से कोनो बिल्ली आए के दूध चुराए गए, ऐसा कहा एक बात हमार नहीं बा। ई कहल बाने हमारे प्यारे लिसनर यानी कि उद्दालक शर्मा जी। और जब बिलैया बोला जात बाय तो ऐसा लागत बा कि गोद में कोनो प्यारे से पशु का लेके हम बैठ गए बाने। हाँ, और एक अलावा एक और दिन बा आज के खास, तो चलिए वह और हम आपका ले चल ले बानी। और ओके, और बात इतनी बाय के आज के जो दिन बाय तो उन बाय 4 जून, और 4 जून का एक और दिन मनाया जाता है, वो है नेशनल चीज डे यानी कि राष्ट्रीय पनीर दिवस। ई दिन दुनिया भर में चीज यानी कि पनीर के स्वाद, पोषण ओकरा से बनल लजीज व्यंजन के सम्मान में मनावल जाला। चीज दूध से बनल एगो स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, जे प्रोटीन, कैल्शियम आ कई जरूरी पोषक तत्व से भरपूर होला। पिज्जा से लय के सैंडविच, पास्ता से लय के सलाद तक हर चीज पकवान में अपना खास स्वाद के रंग भर देला पनीर। हर खाए के कुछ फ़ायदा होखेला, मतलब पनीर का खाए के कुछ फ़ायदा होखेला, चलिए आप लोगन से वो साझा करवानी हम। हड्डियन और दांत के मजबूत बनावे में मददगार होखेला पनीर। एकरे अलावा शरीर के प्रोटीन देके ताकत बढ़ावेला पनीर। कैल्शियम के बढ़िया स्रोत माना जाल बने पनीर के का, और साथ ही साथ में सीमित मात्रा में खाइला पर ऊर्जा देला स्वादो बढ़ावेला पनीर। तो दोस्तों बस आपसे इतना कहल बाने हम कि जिंदगी में कुछ चीज ऐसन होला जे हर चीज के खास बना देला। ठीक ओइसहिन जैसे खाना में चीज, और चीज माने पनीर। आज नेशनल चीज डे पर याद रखी कि स्वाद के मजा तब जरूर बा जब हम चीज ओमहन डाल देली। मतलब कोनो भी चीज हम लोग अगर भोजपुरी छोड़ दें या फिर चीज का चीज का छोड़ दें, मतलब अंग्रेजी भाषा में चीज छोड़ दें और पनीर का शुद्ध कहा जाए कि अगर कोनो भी चीज में यहाँ पनीर डाल दिया जाए तो उसका स्वाद बढ़ जावेला। और हम बता दें आपको, अगर हम अपना पर्सनल व्यू बता रहे हैं दोस्तों आप सभी से, तो हमको पनीर पसंद तो नहीं था, हाँ, लेकिन कच्चा पनीर खाना बड़ा हमें पसंद है और उसमें खाली काला नमक छिड़क के। और पर कुछ दिनों से हमें पनीर काफ़ी पसंद आ रहा है तो हम भी पनीर खाने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग को पनीर नहीं पसंद है, आपका मुँह बन जाता है दूध के किसी भी प्रोडक्ट को खाते हुए, तो पनीर एक दफ़ा अपने फ्लेवर में ट्राई करिएगा, आपको जो फ्लेवर पसंद है, क्योंकि हर रंग में ढल जावे वाला एक खाद्य पदार्थ होखेला पनीर। एकरे अलावा अगर रउरा पसंद बा चीज वाला पिज्जा सैंडविच या पराठा, तो आज ओकरा स्वाद के जरूर सेलिब्रेट करी, कहे कि आज दिन बाय नेशनल चीज डे यानी कि राष्ट्रीय पनीर दिवस। रोटी होखे पराठा होखे चाहे पिज्जा के बाद, चीज पड़ जावे तो बढ़ जाला सभन के स्वाद। आज के दिन मुस्कुराई के ई बात मान ली, थोड़ा सा चीज डाल के जिंदगी में स्वाद बढ़ा ली, बस इतना हमारा कहावा मान ली। और एकरे अलावा स्वाद के हर रंग के सलामबा, और साथ ही साथ में खाते रहिए और मुस्कुराते रहीं, खुशियन के स्वाद बढ़ाते रहीं। और सुनल जाला चली एक और प्यारा सा भोजपुरी नगमा, और तब तक आप लोग आ रहल बानी और साथ ही साथ में आप लोगन के भोजपुरी फरमाइश के वक्त भी हो रहल बा, तो हमें लागत है कि चली हम अपने पसंद का एक गाना आप लोगन का फिलहाल के लिए सुनाई दी, तब फिर हम आप लोग के फरमाइश की ओर आगे बढ़ी। गाना भेजे समय बहुत ही ध्यान रखा जाए कि नीमन गाना भेजा जाए ताकि हम उसका प्ले कर पाए। अगर कॉल के माध्यम से भी आप अपन फरमाइश पहुँचावा जा चाहते तो प्लीज़ आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर वह बा आपके 6393316429 यानी कि आपके स्टूडियो के नंबर 6393316429। शो चल रहा है आपका गोंडा मैसेज मसाला विथ योर आरजे आकांक्षा। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा एंजॉय करें, हम यू गैन और यू आयन।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: हाँ जी श्रोतागण, और अब वक्त हो गई बाने आप सभी के फरमाइशी ले के, और हमारे साथ जुड़ गई बाने अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से। ओके, और इनकी भी फरमाइश हमने ले पहुँच गई बानी, और साथ ही साथ में धर्मेंद्र मोहन भारती जी ने भी कॉल कर दिया है, और साथ ही साथ में एक और प्यारे लिसनर ने हमारे कॉल कर दिया, और उसके अलावा चैटबॉक्स में भी काफ़ी सारी डिमांड्स आ गई हैं। तो चलिए बनाते हैं भोजपुरी नाइट्स को आपके मूड वाला भोजपुरिया, और पूरी तरह से आपको डुबा देते हैं, बोर कर देते हैं भोजपुरी सॉन्ग के साथ में। फिलहाल आज की सबसे पहली डिमांड हम लेना चाहेंगे अपने प्यारे पंडित जी की, और पंडित जी को सुनना है क्या, आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं हमारे फेवरेट सिंगर यानी कि पवन सिंह की आवाज में ये गाना।

हाँ जी, तो अभी आपने एंजॉय किया पंडित जी की डिमांड पे ये प्यारा सा भोजपुरी नाइट्स वाला सॉन्ग। और अभी हम बढ़ते हैं उद्दालक शर्मा जी की एक प्यारी सी डिमांड की ओर, और ये डिमांड थोड़ा सा आर्मी लवर को पसंद आएगा। चलते हैं एक देशभक्ति नगमे की ओर भोजपुरी नाइट्स में। आप बने रहें आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला के साथ।

हाँ जी, तो अब लग रहा है कि माता रानी के दरबार में हम बैठे हैं और अरदास लग चुकी है। भाई भोजपुरी शाम में मजा आ गया। जब देश की बारी आती है तो हम बड़े गदगद हो जाते हैं। फिलहाल बहुत प्यारी सी डिमांड थी उदालक शर्मा जी आपकी, और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये है हमारी बबीता जी की डिमांड गोंडा से।

भाई, हमको लगता है कि हम अकेले पवन सिंह जी की आवाज के कायल नहीं, आप सभी कहीं ना कहीं पवन सिंह के भक्त हैं और काफी अच्छे अच्छे नगमे मुझे बड़ा एंजॉयमेंट मिल रहा है। मैं एक ही दफा आप लोगों के साथ में आज पहली दफा मे बी भोजपुरिया नाइट्स कर रही हूँ, लेकिन बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे नगमों को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके बाद मनी जी का सॉन्ग, और मनी जी के बाद होंगी अनुष्का जी। अनुष्का जी, व्हाट अ सॉन्ग, थैंक यू।

तन्वी शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं और साथ ही साथ में जुगल किशोर वर्मा जी भी एमपी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभ संध्या आप दोनों को, एंजॉय करते रहिए आपके गुंडा मैसेज मसाला में आपका भोजपुरी नाइट्स। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं घड़ी की सुइयों की तो 7:11 हो गया है, शेष जो वक्त है वो कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और उसके बाद में आपके फरमाइशी का टाइम हो जाएगा। लेकिन जब भोजपुरी की बात आती है एक अलग ही फ्लो होता है, हमेशा भोजपुरी खराब नहीं होता, अवधि भोजपुरी या कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो काफी मिठास रखते हैं अपने आप में, जैसे ये पवन जी की आवाज में ये प्यारा सा नगमा।

हाँ जी, और बबीता जी के सॉन्ग के बाद अब चलते हैं हम अपने मनी शर्मा जी के सॉन्ग की तरफ, जो हमें सुनते हैं खोरासा से, और उसके बाद में आएंगे बहुत ही दमदार सॉन्ग लेकर के, जिसकी डिमांड की गई है अनुष्का जी के द्वारा श्रावस्ती से। भाई सब के सब ठुमकेंगे अगर वो गाना बज गया।

और हाँ जी, अब इस रौबदारी वाले सॉन्ग के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की तरफ। और यह डिमांड किसी और की नहीं, अनुष्का जी की है श्रावस्ती से। आप सभी झूमने पर मजबूर होंगे और जब कुछ कहने से बेहतर आप खुद ही सुन लीजिए। पर आते हैं अनिल शास्त्री जी के डिमांड के साथ में, उस पुराने दौर में आपको लेके जाएंगे जहाँ जाके आप खुद को काफी अच्छा फील करेंगे। फिलहाल ये गाना नाचने का मन करेगा भाई इस गाने पर।

0: बात है भाई। और बनारस की बात करें यूपी में, तो भाई इससे बेहतर कोई शहर हो ही नहीं सकता है। और बनारस की गलियां, वहां की कचौड़ियां, वहां का टमाटर चाट, वहां का पान, वहां की साड़ी, ओ माय गॉड, क्या याद दिला दिया आपने बबीता जी इस नगमे से, मजा ही आ गया। और हमारे बीच में जी हाँ, काफी देर से पहुंचे लेकिन कोई बात नहीं, आ गए हैं लेट लतीफ है सही, हमारे लेट कमर्स यानी कि प्रमुख कुमार जी श्रावस्ती से। आपकी भी कोई डिमांड हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में, और ये डिमांड है हमारे अनिल जी की, जो हमें सुनते हैं गोरखपुर से। और बड़े दिनों बाद आप इस गाने को एंजॉय करेंगे। वैसे तो मैंने बचपन में इसे एंजॉय किया था, जब शादी में गाड़ियां जाया करती थी ना, शादी के लिए जब रोड लाइट्स वगैरह निकलती थी उस पे रास्ते में लोग गाते हुए जाते थे, वो दौर याद आएगा आपको ये गाना सुन के। फिलहाल आइए सुनते हैं इस गाने को और एंजॉय करते हैं आपके शो गोंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला, लेकिन आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में। और आज का शाम है भोजपुरिया नाइट्स, लेकिन ये हिंदी वर्जन सॉन्ग आपको बड़ा ही प्यारा सा फील दे जाएगा। आइए एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।
1: होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार, ओ बैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कतक होई बे।

भाई अगर ओल्ड समय की बात करें तो ये है द किंग ऑफ रोमांस, यानी कि हमारे दिलीप कुमार जी। और दिलीप कुमार के फैन कौन नहीं है, क्या अदाएं थी, क्या बात थी। और कहीं ना कहीं SRK भी इन्हीं से प्रेरित होकर के किंग ऑफ रोमांस बने। और ये आवाज हमारे मोहम्मद रफी साहब की, यानी कि आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की। अगर मोहब्बत की बात की जाए म्यूजिक इंडस्ट्री से तो मोहम्मद रफी साहब ही है।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: भोजपुरी मूवी से ये देवरानी जिठानी वाला प्यारा सा नोकझोंक वाला सॉन्ग। आइए देखते हैं प्यार है या फिर नोकझोंक, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा।
1: जितानी जितानी

चल तो कैसे खाना खाए जाई, बहुते बड़ा दुख बा। देवरान जिठान एक आपन दुख एक दूसरा से बयान कह रहल बानी और आप ही गाना सुनन जा रहल बाने धर्मेंद्र मोहन भारती जी के डिमांड पर। बड़ा ही बढ़िया गाना हमका लाग, तनी एक पूर हो जाए दिया जाए। तब तक हम स्वागत कर ले थे अपने इम्तियाज अहमद जी के और साथ ही साथ में शैलेंद्र रिझारिया जी के, खजुराहो एमपी से। फिलहाल गाना सुना जाए, बहुते गंभीर डिस्कशन चलल बा।

हाँ जी, और चलिए फिर अब इस गाने के बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और प्रमुख जी ने भाई बहुते गजब का एक गाना हम तक पहुंचाया हुआ है, और चलिए आप भी सुन लीजिए, हम भी सुनते हैं और इनकी वो भी सुन रही है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं अपने उनसे इस गाने के माध्यम से।

गाने को सुन के बबीता जी और तन्वी शुक्ला जी ने भी भाई रेटिंग कर दी है, इसका मतलब आप भी हमारी बातों से सहमत हैं। भाई भोजपुरी शाम हो या फिर कोई भी शाम हो, जब बात रोटी बेलने की आती है, हम कितने भी पढ़े लिखे हो, रोटी हमें किचन तक ले ही जाती है। एंजॉय करिए।

जी भाई, ये तो बहुत बड़ी वाली सत्यता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड है हमारी सृष्टि जी की पटेल नगर गोंडा से। आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से नगमे को।

हमसे क्या इम्तियाज जी, आपसे किसी आपकी ये जो डिमांड है वो किसी से नहीं हो पाएगी। हमने कहा एक डिसेंट सा सॉन्ग अगर आप चेंज करके भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। अब आप अपनी जिद पे अड़े हैं तो हम भी अपनी जिद पे अड़े हैं भाई, क्या कर सकते हैं, हम गुंडा वाले ऐसे ही हैं।

श्रोताओं, वैसे एक टाइम पे एक ही फरमाइश होती है, इसलिए अनिल शास्त्री जी आपका एक गाना हो चुका है, माफ करिएगा। हमारे पास में और काफी सारी डिमांड्स आई हुई हैं, और शैलेंद्र जी अपने गाने की मूवी का नाम अगर बता देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा वाला कंफर्मेशन हो जाएगा। इम्तियाज जी अपना जिद छोड़ के अगर आप गाना चेंज कर देंगे तो हम जरूर बजाएंगे। सृष्टि जी की डिमांड थी, और अभी हम बढ़ते हैं अमित कुमार जी की डिमांड के साथ में, देखते हैं क्या सुनना चाहते हैं फिर से एक बार पवन सिंह जी की आवाज। एंजॉय करिए, और उसके बाद आएंगे नेक्स्ट सॉन्ग लेके हम मोहिनी तिवारी जी की, वो भी पवन जी की आवाज में होगा। उसके बाद देखते हैं शैलेंद्र जी ने क्या भेजा है।

0: हाँ जी, लाल घगरा ये कंप्लीट होता है डिमांड हमारे अमित कुमार जी का। और अभी वक्त अगर मैं देख रही हूँ तो 7:34 हो रहे हैं आपके स्टूडियो की क्लॉक में। शो चल रहा है आपका गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला और आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। फिलहाल आज की शाम है भोजपुरी नाइट्स, इसलिए आप सभी की डिमांड्स प्ले हो रही है। और इसी प्लेलिस्ट में एक और सॉन्ग हम तक पहुंचा हुआ है, वो है हमारी मोहिनी तिवारी जी का। आइए इसको कंप्लीट करते हैं, देन लेते हैं नेक्स्ट डिमांड हम शैलेंद्र रिझारिया जी की। और तब तक हमारे जाने का भी वक्त हो जाएगा। चलिए फिलहाल एंजॉय करते हैं एक और प्यारे से नगमे को।
1: मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
2: लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं।

ये डिमांड थी हमारी प्यारी लिसनर मोहिनी तिवारी जी की। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो की है हमारी शैलेंद्र रिझारिया जी की। शैलेंद्र जी, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको भोजपुरी ही सुनना है, आप सुन सकते हैं आपकी पसंद का गाना। फिलहाल चलते हैं हम अपने शैलेंद्र जी के सॉन्ग के साथ में, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड देख ही लेते हैं भाई। तब तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इम्तियाज जी ने हमें क्या भेजा है। और नीना जी, आपका भी हार्दिक वाला स्वागत और अभिनंदन है। जस्ट वक्त दीजिए, अगर इम्तियाज जी आप तक हमारी आवाज जा रही है तो हम एक बार चेक करना चाहेंगे आपके सॉन्ग को। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, काफी खूबसूरत सा सॉन्ग है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

और शैलेंद्र झारिया जी की इस डिमांड के बाद अब हम बढ़ेंगे अपनी शाम नाम की पगली जी की डिमांड के साथ में, और उसके बाद में आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम रीना शर्मा जी की रुड़की उत्तराखंड से जो डिमांड हम तक आई हुई है। फिलहाल सुनते हैं इस प्यारी से डिमांड को जो हम तक आई हुई है श्याम नाम की पगली जी की ओर से।

हाँ जी, तो आखिरी पलों में श्याम नाम की पगली जी भी हमारे बीच में जुड़ गई हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, आपको चरण स्पर्श और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और यह है रीना शर्मा जी की। उसके बाद में नेक्स्ट डिमांड होगी हमारी नीना जी की, और हमारे जाने का वक्त हो गया है। लगातार आप इन नगमों को एंजॉय करिए, फिलहाल तब तक हम बने हैं जब तक इस गाने को हम कंप्लीट नहीं कर देते हैं। और उसके बाद में संतोष जी की भी डिमांड हम तक आ गई है, और जब तक आपकी अपनी आरजे सिंपल नहीं आती है तब तक हम कमान संभाले हुए हैं। एंजॉय द ट्रैक।

हाजी श्रोताओं, तो आज की शाम कैसी रही जरूर बताइएगा। अब मेरे चलने का वक्त हो गया है, मैं लेती हूँ आपसे विदा और आपकी अपनी प्यारी आरजू सिंपल आप के बीच में हाजिर होने वाली कुछ ही क्षणों में फिलहाल, जो कि नॉट सो सिंपल है, आप सभी को अच्छे से पता है बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है और आप सभी की प्यारी है। फिलहाल अब मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा और ये डिमांड चली है हमारी रीना शर्मा जी की, उसके बाद में होंगी हमारी नीना जी और नीना जी के बाद में संतोष जी और देन चैटबॉक्स से आप लोगों की डिमांड्स कंप्लीट की जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल है वीक ऑफ और कल के बाद मैं मिलूंगी आप सभी से सैटरडे को आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ में। अपना ख्याल रखिए, राम राम जी, बस इतना ही कहूंगी, राम राम जी।

जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और विजय पाल यादव जी का ललोवा लखीमपुर खीरी से कहना है कि नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, हाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। विजय पाल यादव जी ललोवा लखीमपुर खीरी से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, नीना श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी, प्रमुख कुमार श्रावस्ती से, मुस्तफा उदालक शर्मा मनकापुर से, अनुष्का श्रावस्ती से, बबीता गोंडा से, आहा बहुत दिनों बाद आप दिखे, कैसे हो आप, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से आपका भी स्वागत है, निब्बल जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, शैलेंद्र आपका भी स्वागत है, मोहम्मद मुशीर जी बाराबंकी से स्टे ट्यून्ड, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने गोंडा मैसेज मसाला शो में अपने फरमाइशी गीतों को इंजॉय किया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है, घड़ी आ चुकी है, उस लम्हे का इंतजार जिसको रहता था आपको सुबह शाम, वो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, वो लम्हा आ चुका है और आपकी फरमाइशी की महफिल सज चुकी है। सो अपनी फरमाइशी की महफिल में आ जाइए, बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपकी, गीत आपके नाम से भी रहेंगे और आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सौरभ मौर्य गोड़वा घाट से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल है। विष्णु प्रमिला जी स्टे ट्यून्ड और एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली वाली फरमाइश, और पहली वाली फरमाइशी वाली फरमाइश है दोस्तों, हनीमून मूवी की तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। सो एंजॉय करेंगे जग्गू दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। और दोस्तों ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कैफ मोबाइल वाले गोंडा से एंजॉय करते हैं ये वाला गाना तू नींदों की रानी।

कभी जुदा हो नहीं सकता नींदों से सपना, हमने एंजॉय किया है तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है, जानते हैं किसकी? पहली फरमाइश तो थी जग्गू दादा की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों विजयपाल यादव जी की, ललहुआ लखीमपुर खीरी से। ललहुआ लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव जी को सुनना है गाना, दर भी छोड़ा घर भी छोड़ा। सो एंजॉय करते हैं शिरडी के साईं बाबा मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा हमारे विजयपाल यादव जी की फरमाइश पर, जो की है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, दिल से स्वागत है आपका के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। स्टे ट्यून्ड और आपकी फरमाइश। ओहो आहा

हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, किसकी फरमाइश पर? विजयपाल यादव जी की फरमाइश पर, जो की है लल्हुआ लखीमपुर खीरी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है दोस्तों गाना। नहीं ना। अगली फरमाइश है मुस्तफा जी की। मुस्तफा जी के बाद में है दोस्तों हमारी प्यारी सी अनुष्का की फरमाइश, और मुस्तफा जी को सुनना है गाना अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की। हाँ, कमाल की लड़की पहले अखियों से गोली ही मारती है, फिर जुबान से जहर कब उगलने लगती है लोगों को पता ही नहीं चलता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

भाई के ही ये वाला गाना मुस्तफा जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो दोस्तों, एनर्जी दुगनी तिगुनी चौ और चार गुनी ज्यादा हुई ना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। काव्यांश पुलवारी से आपका स्वागत है और सभी स्टे ट्यून, वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। तो ऐसे ही फरमाइशों का सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही एंटरटेनमेंट की बौछार होती रहेगी और ऐसे ही आपकी फरमाइशी गीतों के जज्बात ऐसे बिखरते रहेंगे और ये सैलाब ऐसे ही उमड़ता रहेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे होगा ही होगा, क्योंकि ये है फरमाइशी की महफिल और फरमाइशी की महफिल में तो सब दिल फेक आते हैं भाई। जो भी बोलना होता है सब एकदम बोल देते हैं, अपने जज्बात को ऐसे खुली किताब की तरह खोल देते हैं। यही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना। ये दिल वालों की बस्ती है और ऑब्वियसली ये दिल वालों की ही बस्ती है। सो एंजॉय करते हैं हमारे दिल वालों की बस्ती के लिए ये दिल वालों की बस्ती गाना, शेरा मूवी का, सिर्फ और सिर्फ हमारी दिलवाली अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि है दिल वालों की जगह श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फ्रॉम एमपी रीवा, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश हमारे पास में थी दोस्तों, किसकी? अनुष्का की श्रावस्ती से। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की फ्रेंड बबीता की गोंडा से, और बबीता को गोंडा से सुनना है गाना ओ फिरकी वाली, तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, क्यों? क्योंकि तेरे नैना है जरा बेईमान से। इसका रिप्राइज वाला वर्जन एंजॉय करेंगे बबीता की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

इसी वक्त सो एंजॉय करते हैं आज अभी इसी वक्त धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर आज अभी इसी वक्त गाना। बहुत लेम जोक था आई नो, लेकिन थोड़ा सा हंस देना प्लीज। सो एंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

आज अभी इसी वक्त पता चला है भैया कि इनको हो गया है प्यार, तो धर्मेंद्र मोहन जी को आवास विकास गोंडा से हो गया है लव डब, और इनका कहना है, इनके दिल का कहना है, जिससे भी इनको प्यार हुआ है उससे, कि तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका मौज, ओहो क्या भूल गई मैं, तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज, आई वांट यू माय बेबी, मुझे दे दे लव डोज, आहा लग दिए मैनू जीवे अंबरा दी क्वीना, मिठिया गल्ला कर कुड़ी नमकीना। फिलहाल मैं अपने बातों को करती हूँ नॉन स्टॉप, फुल स्टॉप, और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली पर।

फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और राजेश सिंह जी को सुनना है गाना मेरे यार। सो एंजॉय करते हैं मेरा यार बना है दूल्हा। तो एंजॉय करेंगे मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनिल शास्त्री फ्रॉम गोरखपुर। स्टे ट्यून्ड। क्या हो जाता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे से बोलूंगी ना, लाओ थोड़ा सा अच्छे से बोलती हूँ, है ना, अपनी आवाज को थोड़ा सा अच्छे से निकालती हूँ ना, टोन अच्छी करती हूँ, सब चौपट हो जाता है। इसीलिए जो है वही वही यूज करना चाहिए ना दोस्तों।

शादी हो जाए, दुआ करो सभी मिलके, ये कहना है मालवे नगर से राजेश सिंह जी का मोहम्मद रफी जी की आवाज में इस गाने के थ्रू। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब जी की, और मोहम्मद मुशीब जी के बाद में हम इंजॉय करेंगे शिवम दुबे की फरमाइश, जो की है लखनऊ से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है दोस्तों गाना, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, मेरे दिल में बसने वाला गाना, इनफैक्ट हम सभी के दिल में बसने वाला गाना, हमारे दिलफे काशिक मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर, जो की है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग, आई रियली लव दिस।

इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर, जो कि है बाराबंकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शिवम दुबे की लखनऊ से, और शिवम दुबे को सुनना है लखनऊ से गाना आखिरी पल। सो एंजॉय करते हैं वो आखिरी पल गाना सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजन सिंह की। राजन सिंह को सुनना है गाना सतिंदर सरताज का। सो एंजॉय करते हैं ये पंजाबी सुपर डुपर हिट सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ राजन सिंह की फरमाइश पर। इस गाने को एंजॉय करने के पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा आपके अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे, लेकिन उसके पहले ये जो देश दुनिया की खबरें हम एकत्रित करेंगे उस टाइम पे ना पेट पूजा भी करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं किए, पेट पूजा करने के बाद में सीधे 9 बजे मिलेंगे और फिर से एंटरटेनमेंट की लड़ियां लगाएंगे, खुशबू बिखेरेंगे और सिर्फ सुकून ही सुकून रहेगा हमारी महफिल में। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना और मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
8: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तुम्हें मैंने देखा सनम, हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सौरभ मौर्य की फरमाइश पर जो की है गुड़वाड़ा घाट से, गुड़वाघाट गोंडा से। और एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी का आपके अपनी फरमाइशी शो में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे खट्टी मीठी और कड़वी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है विष्णु प्रमिला जी की, उनको सुनना है गाना हम आपके दिल में रहते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी विष्णु प्रमिला जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

और हम भी आपके दिल में रहते हैं। आई नो हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है कैफ मोबाइल वाले की गोंडा से, और कैफ मोबाइल वाले को गोंडा से सुनना है गाना तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। आई लव दिस सॉन्ग। तो इंजॉय करते हैं अल्ताफ रजा की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनम बात।

गाड़ी से तुम तो चले जाओगे। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। दीपांशी तिवारी आपका स्वागत है, तन्वीर शुक्ला और नागेश्वर धाकड़ और इन्हीं के साथ में मनी शर्मा फ्रॉम खोरासा गोंडा। स्टे ट्यून्ड और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की, और सबीहा को सुनना है गाना शेकी। सो इंजॉय करते हैं आहा वाला गाना, आई मीन शेकी गाना, एक नंबर गाना सिर्फ और सिर्फ सबीहा की फरमाइश पर। आहा

ये गाना सबीहा की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निबर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और निबर जी को रानी बाजार सुनार गली गोंडा से सुनना है गाना प्यार कर लिया तो कर लिया। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा निबर जी की फरमाइश पर, रानी बाजार सुनार गली गोंडा से।

सो दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की, और उनको सुनना है गाना मैं तेरे इश्क में 2.0। सो एंजॉय करते हैं ये गाना कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर जो की है दुखरनाथ गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

0: तेरे इश्क में मर न जाऊं, कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। हमने एंजॉय किया है कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। सो अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है काव्यांश की फुलवारी से, और काव्यांश को फुलवारी से सुनना है गाना बैरन। सो एंजॉय करेंगे ये तड़कता भड़कता सा दिल को छूने वाला हरियाणवी गाना सिर्फ और सिर्फ काव्यांश की फरमाइश पर। और इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में ही। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों। क्यों? क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना क्योंकि फरमाइश इज ओनली फॉर जस्ट, बजना चाहिए गाना, मिलते हैं कल, स्टे ट्यून।
1: जोड़े मेरी गेल रो रोए बिछोरी बोल से हो।

0: हमारे शहर में लग न जाए आग नफरत की, हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेश लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहार ए गज़ल और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। थोड़ी सी देर के लिए माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कहीं एग्ज़ाम था तो आने में थोड़ा सा विलंब हो गया और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भाई आपसे। हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से हैं, सविता शास्त्री जी हैं। शुभ संध्या सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है। और उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी। और दीपांशी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, अनिल शास्त्री जी, दादा प्रणाम करते।

तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मैं जानता हूँ, मगर थोड़ी दूर साथ चलो। ये आपका थोड़ी दूर का साथ हमको मंजिल पर लेकर पहुँचेगा, हम भी पहुँचेंगे और आप भी पहुँचेंगे। और कहा जाता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ ना मिले तो इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर हमको उससे बेहतर देना चाहता है। समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, खुदा अपने चहेते को कभी दुनिया नहीं देता। तो ऊपर वाले को जो देना होता है उसने पहले से तय कर रखा होता है। अच्छा, और ये भी बात है कि कभी कभी देने वाला बहुत देता है लेकिन हमारे आंचल में समाता ही नहीं है। तस्वीर का एक दुख ये भी है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे संभव है। चलिए आपको सुनाते हैं एक नगमा, और नगमे को सुनने के बाद बताइएगा क्या जो हमने कहा वो सच है। जी हाँ, मुकेश कुमार की प्यारी सी आवाज़ है, और एक पंक्ति को महसूस कीजिएगा, प्रत्येक पंक्ति को, और महसूस करने के बाद बताइएगा क्या हमारी बात सही थी या नहीं। फिलहाल इस नगमे को सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया अवश्य जानेंगे।

जी हाँ, ओहरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से, कोई जाने ना। कुछ प्रश्न आज की दुनिया में भी अनुत्तरित हैं, जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जी हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवाज विकास से। कल के लिए शो सजिए। अरे नहीं नहीं, आपने कहा था गाइए और हम गा नहीं पाते, इसलिए नहीं गाया। रवि जी गोंडा से हैं, गुड इवनिंग सर जी। जी शुभ संध्या आपको भी, और जब तक जिंदगी है तब तक परीक्षा ऊपर वाला ले चाहे नीचे वाला। देखिए परीक्षा का मतलब, पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब इच्छा। जब हम किसी काम को दूसरे की इच्छा से करते हैं तो वही परीक्षा है। इस दुनिया में हम परीक्षा ही देने आए हैं, हमारे अनुसार कहाँ सब कुछ होता है, कोई और बैठा है जिसके अनुसार होता है। हमारे साथ इम्तियाज अहमद जी हैं, गुड इवनिंग शुभ संध्या आपको भी। इम्तियाज जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और नेहा जी बहराइच से हैं, आदाब करते हैं आपको। नमस्कार सर, गुड इवनिंग आपको भी आदाब। कैसी हैं आप भाई? कल लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, गजब जाया आपने। और जी, और मनीष शर्मा जी हैं भाई हमारे साथ, नेहा जी बहराइच से हैं। और सर जी आपको शुभ हो यह नगमा, क्या बात है भाई, नगमा तो शानदार है भाई। निसंदेह मुकेश की आवाज़ में अभी अलग हूँ बहराइच जाते समय, अरे अच्छा अच्छा ये बात है। और भाई मेरी समझ ने बहुत सारे दिल इमोजीज भेज दिए, प्यार से भरा ये गीत जो अर्थ समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इस गीत में, इस नगमे में गहराई भी है और रहस्य है। कि सरिता जी कहती हैं बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल क्या बात है। और जिंदगी है, और इस जिंदगी में जीना बहुत आसान नहीं है। वो हुस्नो इश्क की रंगीन वारदात न थी, वो हुस्नो इश्क की रंगीन वारदात न थी, सियाह बख्श थी, सियाह बख्श समावस थी, चांद रात न थी। यहां गुजारी तो ये मसलहत खुली हम पर, जमी पे रहना फरिश्तों के बस की बात थी। इन जमीन पर अगर फरिश्ते चले आएंगे तो उनको लगेगा भाई कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, लगता है गलत जगह चले आए। और हम इंसान होकर, वसीम बरेली ने कभी कहा था कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। और इंसान एक जगह पर सुकून पाना चाहता है। वो कहता है कि अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया। अब तन्हाई से डर नहीं लगता। अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, अरे अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पर मरना छोड़ दिया। अरे तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। जी हाँ, और अगर हम आपको नहीं याद कर रहे हैं तो एक कर्म कीजिए, कृपा कीजिए, आप भी हमको भूल जाइए, आवाज मत दीजिए। कभी कभी मन करता है कि आवाज दी जाए, और कभी कभी मन करता है कि आवाज न दी जाए। चलिए, आवाज देने पर बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे, आवाज न देने पर ऐसा कौन सा नगमा है जो कहता है कि आवाज नहीं देंगे? चलिए आपको उस नगमे को सुनाते हैं जो ये कहता है, आवाज मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। कौन सा नगमा? सुनिए और सुनकर बताइए। हाँ,
न्याज लिखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी जी जजाक अल्लाह खैर। और नीना जी नमस्कार सर, आदाब है नीना जी आपको। और चलिए, आवाज़ ये कहा जा रहा है कि आवाज़ देना चाहिए, हम कह रहे हैं नहीं आवाज़ मत दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है ये नगमा।

जी हाँ, क्या बिठाला है। हमारे एक श्रोता हैं जो गीत पर अगर कोई गीत बैठ जाता है तो कहते हैं क्या बिठाला है आपने। तो क्या बिठाला है भाई कि मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। और फिर मुकेश जी गाते हैं मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, रफी जी कहते हैं आवाज मैं न दूंगा। क्या बात है भाई, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, क्या बात है। जी हाँ बिल्कुल, ये गीत भी अच्छा है, ये सुनाते हैं आपको। और वासा जी क्या बात है, आप तो दिल की इच्छा ही पूर्ण कर देते हैं, क्या बात है, दिल खुश कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई। आहा मनु जी, आपने ये गाना बजा के मेरा दिल जीत लिया, थैंक यू, क्या बात है भाई। दादा प्रणाम करते हैं आपको। और कायनात जी आश्चर्य में है, दर्द भी तू। जी बिल्कुल, यह आवाज़ मैं दूंगा। आहो इट्स कुमार, सो चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। कम से कम आ जाए साहब, कभी कभी दर्शन दे दिया कीजिए। और अगले साल मिलते हैं, मतलब क्या हो गया भाई कि मितवा वाली कुल्फी, क्या बात है भाई, कौन सी कुल्फी है। और हर दर्द वाले के पास एक ऐसा सिख होता है जो दूसरों को सीख ले जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि वापसन मत लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी के होंठों पर सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल गोंडा मिस्टर मसाला में हम आपसे मिलेंगे। जी हाँ, अगर आसमान वाले ने चाहा तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं तनु, आज हूं आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, तुमसा नहीं देखा। उस दिन उस कच्ची सड़कों वाले गांव के हर इंसान के अंदर एक अलग ही उमंग थी। रोज तो इस वक्त वहां कुछ निश्चित आवाजें ही सुनाई पड़ती थी, आम के बौर वाले पेड़ों पर कोयल के कूकने की, खेतों में चलते ट्रैक्टर और ट्यूबवेल की, और घरों के पिछवाड़े में कटते चारे की। पर आज वहां कुछ अलग ही हलचल थी। सब लोग एक एक करके उस गांव के पश्चिम छोर के एक छोटे से मकान के सामने इकट्ठे हो रहे थे। किसी के हाथ में घर के बने पेड़े थे और किसी के हाथ में बोतल में मट्ठा। रमेश चाचा तो गांव के बाहर वाले मंदिर के पास जो माली बैठता था ना, उनसे एक बहुत सुंदर फूलों की माला बनवा कर लाए थे। एक घंटा वहां बैठकर खुद गुथवाया था। इस गांव में सिर्फ एक जगह पर ही तो माला मिलती थी और यही एक मालिका का थे, इसीलिए गांव में कुछ भी खास होता तो उन्हें जरूर पता चल जाता, क्योंकि फूल और मालाएं तो यहीं से आते थे। वो भी अपना सामान समेट कर रमेश काका के साथ हो लिए। आखिर आज गांव के लिए इतना बड़ा दिन जो था। उस गांव के बेटे अशोक ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी, इसी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा, गांव में ही रहकर पास के शहर के कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। आज वो पहली बार इतने लंबे वक्त के लिए यहां से जा रहा था, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई वहां पर था नहीं, बस उन्हें इतना पता था कि उनका बुआ बहुत बड़ा साहब बन गया है। उसकी अम्मा ने आज अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी। अब हम बड़े साहब की अम्मा हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। वो तो आज अपने बेटे की बलैया लेते नहीं थकती थी। बउआ अपना सामान संभाल कर रख लिया है ना, सारे कागज पत्तर, ये ले देसी घी और बेसन के लड्डू भी रख ले। अम्मा तुम अपना ख्याल रखना, अब तो मैं 6 महीने बाद ही आ पाऊंगा। बाबूजी कहाँ है? वो बाहर है ना, सबके बीच मूछों में ताव दे के खड़े हैं। जुग जुग जिए मेरा लाल। सारे गांव के सामने अपने बाबूजी की नाक ऊंची कर दी। चलो अम्मा, ट्रेन का समय हो रहा है। सारा गांव अशोक को छोड़ने बाहर वाली सड़क तक आया था।

आप ट्यून है 89.6 FM पर। मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुमसा नहीं देखा। अब तक आपने सुना, अशोक ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी और वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। अब आगे, सबसे पास का रेलवे स्टेशन उसके घर से 27 किलोमीटर दूर था। वो रास्ता उसने पहले भी कई बार तय किया था, पर आज से पहले शायद इतनी सुकून से कभी आसपास देखने की कोशिश नहीं की थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे के गले मिल रहे थे और पूरी सड़क पर ठंडी छाया कर रखी थी। दूर दूर तक खेतों में फसलें खड़ी हुई थी। सारे नजारे आंखों में बसा लेने को मन करता था। वो समय पर स्टेशन पहुंच गया। पहले सोचा कि चलो सफर का समय काटने के लिए कोई किताब खरीद लूं, पर फिर खुद को ही मना कर दिया। आज से पहले तो जब भी सफर में होता था तो पढ़ाई की कोई ना कोई किताब उसके साथ ही होती थी। आज गाने सुनूंगा। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। सामने की सीट पर एक महिला बैठी थी जिनका एक 2 साल का छोटा सा बच्चा था। साइड वाली दोनों सीटों पर 2 लड़कियां थीं, शायद सहेलियां। हो सकता है अभी यही मुलाकात हुई हो। लड़कियां आपस में बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेती हैं। सामने उस छोटे से बच्चे ने उधम मचा रखा था। एक मिनट भी एक जगह पर नहीं ठहरता। अभी ट्रेन चले आधे ही घंटे हुए थे, वो सब के पास थोड़ी थोड़ी देर घूम आया। कभी आकर अशोक के शर्ट की बटन छूने लगता, कभी पास में रखा बैग। थोड़ी देर लड़कियों के पास जाकर उनकी खिड़की से भी बाहर देखता रहा, फिर वापस अपनी माँ के पास आ गया। आज उसके साथ सफर अच्छा बीतने वाला था। वो छोटा बच्चा और उसकी मम्मी कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे। जब अशोक ने बताया कि उसने सीएससी की परीक्षा पास की है और वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो सब ने उसे खूब बधाई दी। वो दोनों लड़कियां भी उससे एग्जाम्स के बारे में जानकारी लेने लगी। एक का नाम था शालिनी और दूसरी का उषा। उन्होंने बताया कि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं। उषा कोचिंग करने जा रही थी और शालिनी कोई इंटरव्यू देकर अपने घर वापस जा रही थी। एग्जाम्स और पढ़ाई की बातें करते करते उनमें थोड़ी ही देर में अच्छी दोस्ती हो गई। एक भाई साहब वहां ऐसे भी थे जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। ट्रेन में चढ़ते ही सामान सीट के नीचे डाला और ऊपर की सीट पर चढ़ गए। अपने छोटे से बैग से निकालकर खा लिया और सो गए। सब अपने अपने तरीके से सफर का वक्त गुजार रहे थे। अच्छा सा दिन था वो।

आप ट्यून है 89.6 FM पर। मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुमसा नहीं देखा। अब तक आपने सुना अशोक सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। ट्रेन में पास बैठे लोगों से बातचीत करते वक्त अच्छा गुजर रहा था। सामने एक भाई साहब थे जो ट्रेन में आते ही ऊपर वाली बर्थ में जाकर सो गए। सामने एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ सफर कर रही थी। बगल की सीट पर उषा और शालिनी। अब आगे दोपहर का वक्त हो गया था। खाना खाकर सब लोग थोड़ा सुस्ताने के मूड में आ गए। अपने बैग पर सिर टिकाकर अशोक भी लेट गया और उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। कुछ ही वक्त बीता होगा तभी उस छोटे बच्चे की माँ की तेज आवाज से अशोक की नींद टूटी। उनको झपकी लग जाने पर पता नहीं कैसे छोटे बच्चे ने खेलते खेलते बैग में से उनका पर्स निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरे सारे पैसे उसी पर्स में हैं। फंक्शन में जा रही थी इसलिए उसमें ज्वेलरी भी है। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अशोक उठा और बिना एक भी पल गवाए उसने ट्रेन रोकने के लिए चेन खींच दी और शालिनी से बोला, ट्रेन चलने मत दीजिएगा, मैं अभी इनका बैग ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर वो ट्रेन से उतर गया। पर ट्रेन रुकते रुकते भी तो काफी आगे निकल जाती है। काफी देर हो गई, वो वापस नहीं आ पाया। तभी वहां जीआरपी और टीटी आ गए। थोड़ी देर में ट्रेन फिर से चलने लगी। शालिनी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर, एक आदमी दूसरे की मदद करने के लिए नीचे उतरा है, प्लीज दोबारा चेन खींच दीजिए। पर वो नहीं माने, बोले ट्रेन बहुत आगे आ गई होगी, उनको आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, हम एक आदमी के लिए इतनी देर ट्रेन नहीं रोक सकते। कहा सुनी भी हो गई पर वो नहीं माने। बोले आप उनका सामान स्टेशन पर ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, उन्हें मिल जाएगा, और इनका सामान भी अगर मिल जाए तो वहीं पर इंतजार करके ले लीजिएगा। वो इतना कहकर चले गए। ऊपर की बर्थ वाले भाई साहब भी उतर आए थे। वो लड़कियों से बोले कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं उनका सामान स्टेशन पर जमा करवा दूंगा। पर शालिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको स्टाफ का ये लापरवाह रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर अशोक जी ट्रेनिंग ज्वाइन करने जा रहे थे, उनके पास उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो किसी भी तरह मिस नहीं होने चाहिए। बाकी सारा सामान तो शालिनी ने दे दिया, पर एक छोटा सा बैग जिसमें उसने अशोक जी को कुछ सामान निकालते रखते वक्त देखा था कि फाइल उसी में रखी है, वो उसने अपने पास अपना कह के रख लिया। इसमें उनका एड्रेस, फोन नंबर कुछ तो मिलेगा, मैं खुद मिलकर उन्हें ये वापस कर दूंगी, कम से कम उनकी ट्रेनिंग में तो कोई अड़चन नहीं आएगी। कितने भले इंसान हैं वो, दूसरे का नुकसान बचाने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेन से उतर गए। उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आजकल की दुनिया में जहां इंसान बिना स्वार्थ के रिश्तों को भी नहीं निभाता, वहां अशोक जैसे इंसान को देखकर शालिनी के मन में उनके लिए एक खास जगह बन गई थी। CSC क्वालिफाई करने के बाद भी इतना पोलाइट, इतना फ्रेंडली, इतना हेल्पिंग, देखने में, बात करने में हर तरह से परफेक्ट।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 FM पर। मैं हूं तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम सा नहीं देखा। अब तक आपने सुना अशोक ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी और वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। ट्रेन में एक छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी का पर्स खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिसमें उनके सारे पैसे और ज्वेलरी रखी थी। अशोक चेन खींचकर ट्रेन से उतर गया और उनका पर्स लाने के लिए चला गया। ट्रेन स्पीड में थी, इसलिए रुकते रुकते काफी आगे पहुंच गई। अशोक को लौटने में वक्त लग रहा था। वहां की जीआरपी और टीटी आ गए। ट्रेन चल दी। शालिनी ने टीटी से बहुत रिक्वेस्ट की कि ट्रेन को अशोक के आने तक रोक दें, पर वो नहीं माने। बोले कि उनका सामान स्टेशन के ऑफिस में जमा कर देना, उनको मिल जाएगा। शालिनी को लगा कि कहीं अशोक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना खो जाएं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स वाले बैग को उसने अपने पास रख लिया। अब आगे घर पहुंचते ही शालिनी ने एक चाय भी बनाने वाले को बुलाकर अशोक का बैग खुलवाया। सच में उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। उसी में उसका एक बायोडाटा भी रखा था, जिसमें उसका एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ था। शालिनी ने उस नंबर पर डायल किया। हेलो अशोक जी, उधर से कुछ परेशान आवाज आई। हाँ कौन? मैं शालिनी, हम ट्रेन में मिले थे ना। आई एम सॉरी अशोक जी, मैंने टीटी से बहुत रिक्वेस्ट की ट्रेन रोकने की, पर वो दोबारा चेन खींचने के लिए माने ही नहीं।

इसीलिए वो मैंने अपने पास रख लिया। आप प्लीज मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए और आकर अपना बैग ले लीजिए। एक घंटे में अशोक शालिनी के घर पर था। थैंक यू शालिनी, अगर ये खो जाता तो मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करता या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भाग दौड़ करता, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती। शालिनी कह रही थी, आई एम सॉरी, आपको ये बैग लेने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। पता नहीं क्यों उन लोगों का रवैया देखकर मुझे लगा कि कहीं वो सामान के साथ भी लापरवाही ना करें। बस इसीलिए मैंने इसे ज़रूरी समझकर अपने पास रख लिया। तुमने बिल्कुल सही किया शालिनी, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। कुछ ही घंटों पहले मिले थे वो, और अब लग रहा था कि ये दोस्ती अब जिंदगी भर चलेगी।

आप ट्यून है 89.6 FM पर। मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुमसा नहीं देखा। अब तक आपने सुना, अशोक सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग ज्वाइन करने जा रहा था। ट्रेन में उसके सामने एक महिला

अपने 2 साल के छोटे से बेटे के साथ सफर कर रही थी। उस बच्चे ने खेल खेल में अपनी मम्मी का पर्स खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे लाने के लिए अशोक ट्रेन की चेन खींचकर उतर गया। वो वापस नहीं आ पाया और ट्रेन चल दी। टीटी ने कहा कि उसका सामान अगले स्टेशन पर जमा करा दें, उसे मिल जाएगा। पर शालिनी को लगा कि डॉक्यूमेंट्स वाला बैग मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया। उसकी फाइल में से अशोक का नंबर ढूंढा, उसे अपने घर बुलाया और उसका बैग उसे वापस कर दिया। इस पूरे वाकये ने उन दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा कर दिया था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब आगे। उसके बाद वो अक्सर मिलने लगे। जब कभी अशोक को ट्रेनिंग से ऑफ मिलता, शालिनी से मिलने के लिए कहता, और शालिनी भी हमेशा किसी भी तरह मिलने पहुंच ही जाती। बातों मुलाकातों ने उन दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। अशोक की ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। इस बार की मुलाकात में उसने शालिनी को बताया, ट्रेनिंग के बाद 15 दिन का ब्रेक मिलेगा, फिर पोस्टिंग वाली जगह पर रिपोर्ट करनी होगी। शालिनी ने तो उसके आगे जैसे कुछ सोचा ही नहीं था। लग रहा था हम यूं ही मिलते रहेंगे और वक्त यूं ही गुजरता रहेगा, बस ये सिलसिला यहीं तक का था। न जाने कितनी दूर होगी पोस्टिंग, न जाने हम कभी फिर मिल पाएंगे या नहीं, पर कर भी क्या सकते हैं। शालिनी का तो जैसे दिल बैठने लगा था। उस दिन फिर अशोक का फोन आया, शालिनी मंडे की मेरी वापस जाने की टिकट हो गई है, क्या हम संडे को मिल सकते हैं? शालिनी बस इतना ही कह पाई। ज्यादा बोलने की कोशिश करती तो शायद रो पड़ती। ठीक है, शाम को 5 बजे उसी रेस्टोरेंट में, कहकर अशोक ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद शालिनी फूट फूट कर रोई और पता नहीं कब तक रोती रही। संडे को उसने अशोक के लिए एक शर्ट खरीदी और उससे आखिरी बार मिलने के लिए तय जगह पर पहुंच गई। 5 मिनट बाद अशोक भी आ गया, आकर बिना शालिनी से पूछे वेटर को ऑर्डर भी दे दिया। अब तक वो दोनों एक दूसरे की इतनी पसंद नापसंद तो जान ही चुके थे। शालिनी ने उसे शर्ट देते हुए कहा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। विल यू नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर? अशोक हसरत भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा फ्यूचर तो तभी बेस्ट होगा जब वो तुम्हारे साथ होगा। शालिनी ने होठों पे मुस्कुराहट और झुकी नजरों से अपनी मंजूरी दे दी। एक सफर में मिले लोग एक दूसरे के हमसफर बनने का फैसला कर चुके थे।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 एफएम पर। मैं हूं तनु और ये थी मेरी आज की कहानी तुमसा नहीं देखा। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे रिव्यूज भेज सकते हैं 9453254315 पर। और अगर आप भी पहुंचाना चाहते हैं अपने अपनों तक अपने दिल की बात तो हमें लिख भेजिए अपनी कहानी, हम लाएंगे उन्हें गीतों में पिरोकर आपके लिए। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी एक गायक या संगीतकार की नहीं, खुद जिंदगी की कैसेट चलाने जा रहे हैं। वो कैसेट जो कभी रिवाइंड हो जाती है, कभी अटक जाती है और कभी बिना बताए खामोश हो जाती है। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज का ये जो सफरनामा है वो वाकई अनोखा होने वाला है। हम आज उस प्रकरण पर बात करने वाले हैं जो हमारी, आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी

बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें, तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी, उसे तब लगता था हाँ जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोर दा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाले नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।
1: जिंदगी

खड़ी। इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती। तो टूटने से पहले इस जिंदगी को क्यों ना समेट लें, प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसासात इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

गया। इसके बाद की जो लाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था।

धुएं में उड़ा। जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए। अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं। ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है, और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है, और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की, तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, जिसके बोल हैं जिन

ये रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता, और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस गाने।

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं, मैं

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा बेशक। आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है

ये गीत आईना दिखाता है, भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को एक संतुलन में लाइए और उसके बाद फिर से हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश को लगातार जारी रखिए। फिलहाल ये गाना।

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में

बना नहीं। जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजी अनोखी को इजाजत, बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेती है ना, हर कदम पे हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपनी लाइफ में बखूबी कुछ अच्छा कर रहा है। और यही अंतिम सच है कि जिंदगी सवाल नहीं, जिंदगी जवाब भी नहीं, जिंदगी बस एक तजुर्बा है जो हम रोज नए इम्तिहान से लेते हैं। फिर मिलेगी आपकी आरजी अनोखी किसी नए सफरनामे के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।